मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है अब हमारे केंद्र से प्रातःकालीन प्रसारण सभा। इस सभा में आज आपके साथ हैं आपके रेडियो मित्र अरुणा वर्मा। सभी श्रोता साथियों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थलसेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्र मौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को

0: और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव साथ ही मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए समूह स्वर में देशगान।

कार्यक्रम वंदना में अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण और साथियों के स्वरों में शिव भजन। आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए अब सुनिए प्रीति सागर के स्वर में ये भक्ति रचना।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चिंतन में तुलिका शर्मा के विचार। विषय है रुदन भी जरूरी है।
1: आमतौर पर हम रोने को एक नकारात्मक प्रक्रिया मानने लगते हैं। रोना कमजोरी की निशानी मानी जाती है, मजबूती की नहीं। लेकिन ये रोना मानव स्वभाव है। जिस तरह हम क्रोधित होते हैं, खुश होते हैं, ठहाके लगाते हैं, वैसे ही रोना भी एक स्वाभाविक क्रिया है जो मनुष्य की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आता है। जब हम दुखी होते हैं, किसी बात से आहत हो जाते हैं या फिर किसी तरह का स्ट्रेस होता है तो अक्सर हम रोने लगते हैं, और जब हम रोते हैं तो हमारे आंसू भी बहते हैं। रोने का और आंसुओं का अन्योन्याश्रित संबंध है। बहुत से लोग हंसते हंसते भी रोने लगते हैं, यानी हंसते हंसते भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन रोने से जो आंसू बहते हैं उनका हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत बड़ा योगदान होता है। रोना एक सामान्य ह्यूमन एक्शन है जो हमारे अलग अलग इमोशंस की वजह से ट्रिगर हो जाता है। जब हम दुखी होते हैं, उदास होते हैं, किसी बात को लेकर स्ट्रेस में होते हैं या टेंशन में होते हैं तो इन्हीं भावनाओं के कारण हमें रोना आ जाता है। यहाँ तक कि बच्चा पैदा होते ही रोता है, और यदि बच्चा नहीं रोता तो उसके एबनॉर्मल होने की संभावना बढ़ जाती है। जब बच्चा रोता है, ज़ोर से सांस खींचता है और उतनी ही ज़ोर से चीखता है। इससे उसके फेफड़े खुल जाते हैं और उसकी सामान्य सांस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन क्या हो यदि वो ना रोए तो? बिल्कुल सही सोचा आपने, उसमें किसी तरह का शारीरिक विकार उत्पन्न हो जाएगा। यदि बड़े होने पर हम ना रोएं तो हमारे अंदर शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक विकार उत्पन्न हो जाएगा। अनुसंधानकर्ता भी ये मानते हैं कि रोना हमारे शरीर के साथ साथ मन के लिए भी फायदेमंद है। एक स्टडी कहती है कि जिस तरह से पसीना और यूरिन जब शरीर से बाहर निकलते हैं तो विषाक्त पदार्थ भी शरीर से बाहर उनके साथ ही निकल जाते हैं, ठीक वैसे ही आंसू आने पर भी आंखों की सफाई होती है। और आंसू तो ज़्यादातर रोने पर ही आते हैं। जानते हैं ये आंसू भी तीन तरह के होते हैं। रिफ्लेक्स यानी बिना इच्छा के आने वाले वो आंसू जो तब निकलते हैं जब आंखों में कोई कचरा, धूल का कण या धुआं चला जाए। ऐसे में रिफ्लेक्स एक्शन में आंखों से आंसू आते हैं जिससे वो कचरा आंखों से बाहर निकल जाए। बेसल टीयर्स यानी बुनियादी आंसू जिसमें 98% पानी होता है, ये आंखों को लुब्रिकेट करने का काम करते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं। ये आंसू जब हम पलक झपकाते हैं ना तो हमारी आंखों की पुतलियों को नम रखते हैं। और तीसरे तरह का जो आंसू है वो इमोशनल टीयर्स हैं यानी भावनात्मक आंसू। इसी में होते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स जो हमारे भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। टॉक्सिन्स की मात्रा भी सबसे ज़्यादा इन्हीं में होती है, इसलिए इनका बह जाना हमारे शरीर और मन के लिए फायदेमंद होता है। खुद को सांत्वना देने और शांत करने का बेस्ट तरीका है रोना। रोने से हमारे शरीर में पैरासिम्थेटिक नर्वस सिस्टम उत्तेजित हो जाता है, और इसी पैरासिम्थेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से शरीर को आराम करने में और डाइजेशन में मदद मिलती है। इस रोने के फायदे आपको तुरंत नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आप कुछ देर यदि आंसू बहा लेते हैं तो आपको खुद ही अपने आप में ये असर महसूस होने लगेगा, आपका मन हल्का हो जाएगा। गीत चतुर्वेदी की कविता की एक पंक्ति है, जो लोग रोना रोकते हैं, बेहिसाब रोकते हैं, उनके आसपास मजबूत कंधों का अभाव होता है। कितनी सही बात कही गई है इस कविता की पंक्तियों में। यदि आपके पास एक भरोसेमंद मित्र नहीं है, एक खूबसूरत सा रिश्ता नहीं है,

0: जिसके पास बैठकर आप अपना दिल हल्का कर सकें तो आप बहुत गरीब हैं। यदि आप किसी से बातें करके उसके सामने रोने में सहज महसूस करते हैं, आपको कभी ये नहीं लगता कि आपके रोने का सामने वाला व्यक्ति मजाक उड़ाएगा, तो समझिए आप रिश्तों के मामले में इतने अमीर हैं कि इसकी तुलना किसी और चीज़ से की ही नहीं जा सकती। रोने से ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये गुड हार्मोन्स हैं जिससे शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के दर्द को कम करने में मदद मिलती है। कभी कभी कोई सैड सॉन्ग सुनकर भी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर हम इधर उधर देखकर उन आंसुओं को छुपा लेते हैं कि कहीं कोई देख न ले। कोई इमोशनल मूवी देखते समय हम रोने लगते हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो पिक्चर हॉल में रोते हैं। रोने से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो हमारा शरीर ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जिससे हमें राहत मिलती है, मन शांत हो जाता है।
1: चिंतन में अभी श्रोता सुन रहे थे रुदन भी जरूरी है विषय पर तुलिका शर्मा के विचार। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव। साथ ही श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR से भी। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

पूरी अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास छाया है। माता के आग्रह पर जगत के स्वामी ने बाल रूप के रुदन से जननी की शंकाएं दूर कर दी हैं। शिशु के रोने की अत्यंत प्रिय ध्वनि सुनकर अन्य रानियां तथा दास दासियां हर्षित हो दौड़ पड़ी। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर महाराज दशरथ को परम आनंद हुआ। राजप्रसाद वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि से गूंजने लगे। जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को सोना, गऊएं, मणिमाणिक आदि दान स्वरूप भेंट किए गए। जगह जगह तोरण द्वार आदि बने हैं। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। स्त्रियां सोने के कलश तथा थाल में मंगल द्रव्य लेकर राजमहल में प्रवेश कर रही हैं। घर घर बधावे बज रहे हैं। कैकेयी तथा सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। पूरी नगरी इस प्रकार सजी धजी है जैसे सारे श्रृंगार करके रात्रि स्वामी से मिलने आई हो, किंतु सूर्य का प्रकाश देखकर लजा गई हो। राजमहल वेद पाठ की कोमल ध्वनि से गूंज रहा है।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कृषि चर्चा में सामयिक चर्चा। बायोगैस की उपयोगिता जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 2/3 से अधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जिनका जीवन यापन कृषि, पशुपालन, फलोत्पादन, मछली पालन और कुटीर उद्योगों पर आधारित है। देश में ऊर्जा आपूर्ति और मांग में बहुत बड़ा अंतर रहता है। सिंचाई और उद्योगों में बिजली की हमेशा कमी बनी रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुतायत से मिलने वाले गोबर, कृषि अवशेषों का उपयोग यदि बायोगैस उत्पन्न करने में किया जाए तो संपूर्ण ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर खाना बनाने का कार्य पशु द्वारा परित्याग किए गए गोबर या जंगलों से लकड़ी चुनकर ही पूरा किया जाता है। लकड़ी काटने से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है और गोबर से उपले बनाकर प्रयोग करने से खेतों में खाद की मात्रा में कमी आ रही है। साथ ही खाना बनाते समय निकले धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड और हानिकारक कण मकानों में कालिख फैलाने के साथ साथ आँखों और फेफड़ों को भी प्रभावित करते हैं। बायोगैस संयंत्र ऐसी जगह बनाएं जहां पर पानी एकत्रित न होता हो, जल निकास का उचित प्रबंध हो, खुली जगह हो जहां पर हर समय धूप आती जाती रहती हो। संयंत्र आकार का चयन उपलब्ध पशुओं के आधार पर करना चाहिए। यदि 50 किलोग्राम गोबर प्राप्त हो रहा है तो 2 घन मीटर का संयंत्र तैयार करना चाहिए और अधिक गोबर प्राप्त हो रहा है तो उसी के आधार पर संयंत्र का आकार बढ़ाना चाहिए। बायोगैस से खाना बनाने के साथ साथ प्रकाश व्यवस्था भी की जा सकती है। बायोगैस संयंत्र उत्तम गुणवत्ता वाला जैविक खाद तैयार करता है जिसे तुरंत निकालकर प्रयोग में लाया जा सकता है। बायोगैस से तैयार खाद खेतों में प्रयोग करने से खरपतवारों की मात्रा में कमी आती है। जैविक खादों के प्रयोग करने से फसलों में कीट और बीमारियों का प्रकोप कम होता है। साथ ही बायोगैस संयंत्र में पाचन के बाद जो खाद बाहर निकलती है उसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं, जैसे अनाज, फल, सब्जियां पौष्टिक दृष्टि से अधिक समृद्ध होती हैं। बायो खाद के उपयोग से मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं की संतुलित रूप से बढ़ोतरी होती है, जिससे मिट्टी में भुरभुरापन रहता है। भूमि की जलधारण क्षमता विकसित होती है जिससे भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है। अल्प वर्षा और अतिवर्षा की स्थिति में फसलों को लाभ पहुंचता है। बायो खाद के उपयोग से फसल उत्पादन में 15-20% की वृद्धि होती है। कंपोस्ट खाद बनाने में 3-6 माह लग जाते हैं, जबकि बायो खाद तुरंत तैयार होती है। बायो खाद से फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। खाद तैयार होने का इंतजार नहीं करना पड़ता है। गोबर की खाद सीधे खेत में खाद के रूप में प्रयोग करने पर दीमक लगने की संभावना रहती है, जबकि बायो खाद के प्रयोग से दीमक जैसी समस्याएं नहीं आती हैं। फसलें स्वस्थ रहती हैं, अधिकतर कीटनाशक प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बायोगैस संयंत्र में मलमूत्र खाद पदार्थ डालते रहने से घर के आसपास साफ सफाई वातावरण भी स्वच्छ रहता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां भी नहीं फैल पाती हैं।

0: बायोगैस संयंत्र स्थापित करें, जिससे वनों पर बढ़ता हुआ अनावश्यक दबाव घटेगा। भूमि क्षरण जैसी समस्याओं को रोक सकते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति संतुलित रहेगी। उर्वरकों द्वारा होने वाले भूमि और जल प्रदूषण कम करने और स्वच्छ वातावरण के लिए बायोगैस की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। बायोगैस बनवाएं और उपयोग करें। पर्यावरण संरक्षण में बायोगैस की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ साथ फसलों से उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे कृषि चर्चा में सामयिक चर्चा, विषय था बायोगैस की उपयोगिता। जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव। साथी श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। लीजिए अब सुनिए सूचना परक कार्यक्रम दर्पण में कुछ संदेश।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।
2: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़ो ही नोनो गीत गा रही हो। और जो तो बई गीत है, जाकी हम फरमाइश की चिट्ठी लिखकर भेजा था थे, और हमारी पसंद को लोक गीत हमारी जिज्जी हमें लोक माधुरी में भी सुनवाउ थी।
3: हाँ, खूब ही सही चीज ना तुमने, जो बई लोक गीत है और आज हम जी को जासे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही उल्लास में है।
2: काय ऐसो का होगा जिज्जी?
3: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सभी सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 7:21 से 8 बजे के बीच।
2: जिज्जी जाके लाने अपने को चिट्ठी कैसे भेजनी होगी?
3: अरे चिट्ठी विट्ठी छोड़ो, अब हम हो गए डिजिटल, सो अब हम लिख के भेजेंगे अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पे।
2: तो जीजी जाको व्हाट्सएप नंबर का है?
3: डायरी तनक खोलो और जल्दी से लिख लो 9425702768। तो याद भाव कि नहीं, तनक बताओ तो जल्दी से
2: 9425702768।
3: तो आप अपनी पसंद को लोकगीत के बोल और कलाकार को नाम हमें जा नंबर पे व्हाट्सएप करो, को आपकी पसंद को लोकगीत लोक माधुरी कार्यक्रम में जरूर ही सुनवाएं।
2: तो सुनना न भूले हर सोमवार शाम को 7:21 से 8 बजे के बीच लोक माधुरी।
4: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
5: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
4: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
5: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
4: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
5: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
4: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
5: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
4: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
5: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
4: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
5: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
4: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
5: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
6: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
5: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
4: समय है पानी बचाने का,
5: पानी का मोल समझने और समझाने का।
4: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
1: धरती माँ की यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
7: अभी आप सुन रहे थे सूचना पर कार्यक्रम दर्पण।

0: में कुछ संदेश। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर से भी आप हमसे जुड़े हुए हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत और हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवदत् यत् यथा भारतं विकसित भारत दिशि अग्रेसरति तथा देशस्य युवानः शारीरिक रूपेण सुदृढाः, मानसिक रूपेण सबलाः, आत्मविश्वासेन च परिपूर्णाः भवितुमर्हन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य दृश्य श्रव्य अन्तर्जालीय माध्यमेन शुभारम्भावसरे भाषमाणः प्रधानमन्त्री अवदत् यत् युवानः सर्वदा मादकद्रव्येभ्यः दूरं तिष्ठेयुः, अथ स्वस्थजीवनचर्यां च अङ्गीकुर्युः। असौ एतदपि अवदत् यत् अस्य अभियानस्य शुभारम्भेण मादकद्रव्यदुरुपयोगस्य विरुद्धं शतसप्ताहकात्मकस्य राष्ट्रव्यापिनः जनभागीदारी इत्यस्य अभियानस्य आरम्भः जातः।
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: अस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य 28,000 स्थानेभ्यः 1 कोट्यधिकाः युवानः भागं गृहीतवन्तः। अत्र माय भारत इत्येतस्य राष्ट्रिय सेवा योजनायाः च स्वयंसेवकाः, महाविद्यालय विद्यालय विश्वविद्यालयानां प्रतिनिधयः, युवकमण्डलानाम् अशासकीय सङ्घटनानां च तथा आध्यात्मिक संस्थानां सदस्याश्च भागं गृहीतवन्तः। केन्द्रीय युव कार्य क्रीडा मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया अवदत् यत् मादक द्रव्य मुक्त भारतस्य स्वप्नं केवलं जनसहभागितया यूनां नेतृत्वेन च पूर्णा भवितुमर्हति। विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य राष्ट्रीय शुभारम्भानन्तरं असौ फरीदाबाद स्थिते अमृत चिकित्सालये आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे एतदवदत्। डॉक्टर मांडविया एतत् शतसप्ताहकात्मकम् अभियानं यूनः राष्ट्रनिर्माणे प्रवर्तयितुं राष्ट्रव्यापी जनान्दोलनम् इति वर्णितवान्। बिहार गुजरात मध्यप्रदेशानां च त्रयाणां विधानसभाक्षेत्राणाम् उपनिर्वाचनानां कृते अद्य मतगणनायै सर्वाः व्यवस्थाः कृताः सन्ति। बिहारस्य बांकीपुरे, गुजरातस्य मंजलपुरे, मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च मतदानं गतमासस्य 30 दिनांके जातम्। अद्य प्रातः 8 वादने मतानां गणना आरभ्यते। प्रथमं पोस्टलिति मतपत्राणां गणना भविष्यति। तदनन्तरं प्रातः 8:30 वादने मतदानयन्त्रेषु अभिलेखितानां मतानां गणना भविष्यति। निर्वाचनायोगेन त्रिषु राज्येषु सुगम गणनां सुनिश्चेतुं दृढ सुरक्षाव्यवस्था कृतास्ति। मध्यप्रदेशे दतिया विधानसभाक्षेत्रस्य गणना प्रशासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालये भविष्यति, यत्र 20 गणनापट्टिकाः स्थापिताः सन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य ओडिशाराज्यस्य 3-दिवसीयायां यात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ राष्ट्रपतिः गंजम जनपदस्य कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर तप्तापानी स्थलेषु शैक्षणिक सांस्कृतिक आधिकारिक कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। अद्य राष्ट्रपतिः कटकनगरे जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालयस्य उद्घाटनं करिष्यति। 11 दिनात्मकानां स्पर्धानां समापनानन्तरं ह्यः ग्लास्गो नगरे भव्यसमारोहेण राष्ट्रमण्डल क्रीडा सम्पन्ना। भारतम् एकोनचत्वारिंशत् पदकैः सह पदकतालिकायां चतुर्थ स्थानम् अधिगतवत्। एतेषु 13 स्वर्णपदकानि, 17 रजतपदकानि, 9 कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्तपानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों समेत 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 39 पदक जीते हैं और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा है। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

प्रातः 7:20 पर श्रोता आनंद लेंगे डॉक्टर जगदीश सलिल के कविता पाठ का। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता लेंगे 7:30 पर।

प्रातः 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार होंगी साक्षी कुलश्रेष्ठ। आप सुनेंगी इनकी कुछ भक्ति रचनाएं। सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर प्रस्तुत करेंगे प्रातः 9:00।

शास्त्रीय संगीत के एक कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कलाकार सुदीप भदौरिया का राग अहीर भैरव में धमार गायन। प्रसारण समय रहेगा 9:30। श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेशों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुनेंगे 10:05 पर।

दिन के 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक आप सुनते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का अनुप्रसारण। अपराह्न 1 बजे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता लेंगे दोपहर 2 बजे और चित्रपट संगीत दोपहर 2:30 पर। शाम 5:02 पर युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण होगा। आज आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति।

फिल्म संगीत का आनंद श्रोता लेंगे शाम 5:33 पर और 6:23 पर। NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग श्रोता सुनेंगे शाम 6 बजे। हमारे ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण होता है शाम 7:20 पर। इसमें आज चर्चा होगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और खेती में आधुनिक तकनीक की उपयोगिता। साथ ही सुनेगा आज सोमवार होने पर कार्यक्रम लोक माधुरी बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम। रात 8 बजे श्रोता सुनेंगे संसद समीक्षा और 8:15 पर कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 पर आपकी फरमाइश और रात 10 बजे संसद के मानसून सत्र 2026 के अंतर्गत संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाहियों का प्रसारण। रात 10:30 पर कार्यक्रम राग रचनी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, नशा मुक्त युवा से ही बनेगा विकसित भारत। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में उपस्थित नागरिकों को नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त मध्य प्रदेश का संकल्प दिलाया। दतिया विधानसभा उपचुनाव की आज मतगणना, नतीजों से ठीक पहले कांग्रेस ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी से किया बाहर। और उज्जैन में आज निकलेगी बाबा महाकाल की पहली सवारी, चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में भक्तों को देंगे दर्शन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ पर देश भर के युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए युवाओं का तन मन से स्वस्थ रहना और नशे से दूर रहना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस अभियान का पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल काशी से शुरू हुआ था और अब ये राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि ये संकल्प अगले 100 दिन तक लगातार चलेगा और हर रविवार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के बैरट में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और उपस्थित युवाओं तथा नागरिकों को नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त मध्य प्रदेश का संकल्प दिलाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अगले दिन वे दक्षिणी ओडिशा के तप्त पानी स्थित मां कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बैरसिया में सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण शिक्षा के नए युग की शुरुआत है। मुख्यमंत्री कल बैरसिया में इस विद्यालय के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। 35 एकड़ में बना ये विद्यालय करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सांदीपनी विद्यालय गरीब और अमीर के बीच शिक्षा की असमानता खत्म करने की दिशा में सरकार का बड़ा प्रयास है। उन्होंने बैरसिया क्षेत्र के विकास के लिए भोपाल बैरसिया मार्ग को 4 लेन बनाने की भी घोषणा की। श्री यादव ने कहा,
2: इस विद्यालय का लोकार्पण ये नए इतिहास का गणना प्रारंभ हुआ, एक बहुत बड़ा नया संकल्प का सूत्रपात। आज देश बदल रहा, अन्यथा नौकरी की बात करो, अकेले इस मध्य प्रदेश के अंदर सारी नौकरी जोड़ लो तो वो केवल 10 लाख के अंदर नौकरियां। जिनको नौकरी की इच्छा वो जरूर करे, लेकिन अब भारत और मध्य प्रदेश नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाले नई पीढ़ी तैयार कर रहा। आपके माध्यम से स्वरोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
0: दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। मतगणना सुबह 8 बजे तक डाक पत्रों से शुरू होगी, जबकि 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। इसके लिए 20 काउंटिंग टेबल लगाए गए हैं और करीब 350 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव के नतीजों से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह लगातार राजेंद्र भारती पर चुनावों में बितरघात करने का आरोप लगा रहे थे। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की श्रावण भाद्रपद सवारी के तहत आज पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान बाबा महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे। सवारी दोपहर 3:30 बजे पूजन के बाद 4:00 बजे मंदिर से शुरू होगी और रामघाट पहुंचकर शिप्रा नदी से जलाभिषेक के बाद 7:00 बजे तक मंदिर वापस लौटेगी। मंदिर प्रशासन प्रथम कौशिक ने बताया है कि श्रद्धालुओं के लिए चलित आरती दर्शन की व्यवस्था की गई है और 15 जगहों पर मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब बात अच्छी खबर की। खरगोन जिले की प्रसिद्ध निमाड़ी लाल मिर्च को GI टैग मिल गया है। ऐसे मिर्च को कानूनी संरक्षण, वैश्विक पहचान और किसानों को बेहतर दाम और निर्यात के नए अवसर मिलेंगे। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता आशुतोष पुरोहित।
4: कि जिले की प्रसिद्ध निमाड़ी लाल मिर्च को GI टैग मिल गया है। वर्षों से अपने तीखे स्वाद, गहरे लाल रंग, उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए पहचान रखने वाली निमाड़ी लाल मिर्च अब राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाएगी। GI टैग मिलने से खरगोन की लाल मिर्च को कानूनी संरक्षण मिलेगा, नकली उत्पादों पर रोक लगेगी और किसानों को बेहतर नाम के साथ ही निर्यात के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।
5: हमारे साथ प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री, खरगोन के विधायक बालकृष्ण पाटीदार मौजूद है।
6: एक जिला उत्पाद के तहत मिर्च को ही खरगोन के लिए रखा है, तो इसको GI टैग मिलने से और इसको निर्यात के बहुत इसके लिए रास्ते खुलेंगे। पूरे विश्व के अनेक देशों में इसका निर्यात भी होगा और इससे किसानों को भी बहुत लाभ होगा और साथ ही इसके लिए उद्योग भी लगेंगे।
4: इधर उद्यानिकी विभाग के उपसंचालक KK गिरवाल का भी मानना है,
7: हमारे जिले की मिर्च, लाल मिर्च को एक नई पहचान मिली है। इसकी पहचान बढ़ने से इसका मूल्य जरूर बढ़ेगा और यहाँ पर बाहर से भी खरीदार आएंगे।
4: GI टैग खरगोन की लाल मिर्च की पहचान का नया अध्याय है। यह सम्मान न केवल खरगोन की पहचान को नई ऊंचाई देगा बल्कि हजारों किसानों की मेहनत को उसका वास्तविक मूल दिलाने की दिशा में भी अहम साबित होगा। मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित।
0: प्रदेश में विभिन्न जिलों की पुलिस ने पिछले 3 हफ्तों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 116 चोरी की मोटरसाइकिलें, 4 ट्रैक्टर, 1 पिकअप और 1 कार जब्त की है। सिंगरौली, गुना, मंदसौर और ग्वालियर सहित कई जिलों में भी पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई कर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने एक बड़ी अंतर्राज्यीय तेंदुआ शिकार और वन्यजीव तस्करी गिरोह का भी पर्दाफाश किया है। श्योपुर मुरैना क्षेत्र से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ग्लासगो में कल रात राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो गया। इसके साथ ही 2030 में अहमदाबाद में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की उल्टी गिनती भी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। समापन समारोह में भारत ने दुनिया को अहमदाबाद आने का न्योता दिया। भारतीय एथलीटों ने इन खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4था स्थान हासिल किया। और अब बात मौसम की। प्रदेश में अब तक औसतन 15.5 इंच बारिश हो चुकी है जो तय कोटे की आधी भी नहीं है। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर सहित 42 जिलों में सामान्य से कम पानी गिरा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 15% कम बारिश दर्ज हुई है। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। आपको समाचार संक्षेप में। धार जिले में आज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दिन के 11 बजे रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। खंडवा में हरफनमौला कलाकार किशोर कुमार के जन्मदिन के अवसर पर 4 अगस्त तक 3 दिवसीय खंडवा गौरव दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विकसित भारत के लिए युवा संकल्प अभियान के तहत आगरमालवा जिले में कल आयोजित कार्यक्रम में शासकीय विद्यालयों के 300 से अधिक युवाओं ने सहभागिता की। नर्मदापुरम में भिलाड़िया घाट से कांवरिये नर्मदा जल लेकर सिवनी मालवा होते हुए आज तिलक सिंदूर पहुंचेंगे। अशोकनगर में कल श्री शिवटोरिया और ट्रेंचिंग ग्राउंड परिसर में 2100 पौधे लगाए गए। जिला रोजगार कार्यालय इंदौर में आज IIT में 1 दिवसीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। माय भारत द्वारा संचालित नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत कल ग्वालियर के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान में कार्यक्रम आयोजित किया। जबलपुर में नशा मुक्त

भारत विकसित अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डिंडौरी में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जिले के विभिन्न विकास खंडों में शिविर आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय 7:20 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए डॉक्टर जगदीश सलल से कविता पाठ।
1: ये कविता पढ़ रहा हूँ, ये कविता है वर्तमान। वर्तमान वो जिसमें हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं उस ज़िंदगी के बारे में कुछ बात इसमें मैंने अपनी तरह से कही है। वर्तमान इस तरह की ज़िंदगी को किस तरह से जिया जाए, इस तरह की ज़िंदगी को किस तरह से जिया जाए, आंसुओं का ये समंदर किस तरह से पिया जाए, इस तरह की ज़िंदगी को किस तरह से जिया जाए, आंसुओं का ये समंदर किस तरह से पिया जाए। सोचता हूँ मैं कि जीवन भार क्यों है, सोचता हूँ मैं कि जीवन भार क्यों है, और आग में झुलसा हुआ सा प्यार क्यों है। सोचता हूँ मैं कि जीवन भार क्यों है, आग में झुलसा हुआ सा प्यार क्यों है, क्यों बुझे से हो गए हैं स्वप्न सारे, क्यों बुझे से हो गए हैं स्वप्न सारे, हर दिशा का बदलता आकार क्यों है। सोचता हूँ मैं कि जीवन भार क्यों है, आग में झुलसा हुआ सा प्यार क्यों है, क्यों बुझे से हो गए हैं स्वप्न सारे, हर दिशा का बदलता आकार क्यों है। ये धरा धुंधली नहीं हो आंधियों से, ये धरा धुंधली नहीं हो आंधियों से, सोचता हूँ मैं बताओ क्या किया जाए, इस तरह की ज़िंदगी को किस तरह से जिया जाए, आंसुओं का ये समंदर किस तरह से पिया जाए। रूप क्यों बदरूप होता जा रहा है, रूप क्यों बदरूप होता जा रहा है, आसमां पर क्यों अंधेरा छा रहा है, रूप क्यों बदरूप होता जा रहा है, आसमां पर क्यों अंधेरा छा रहा है, बदलियों को छांटना मुश्किल नहीं है, बदलियों को छांटना मुश्किल नहीं है, क्यों अंधेरा और घिरता रहा है, रूप क्यों बदरूप होता जा रहा है, आसमां पर क्यों अंधेरा छा रहा है, बदलियों को छांटना मुश्किल नहीं है, क्यों अंधेरा और घिरता आ रहा है। मिटा दो काली लकीरों की स्याही, मिटा दो काली लकीरों की स्याही, सोचता हूँ इन्हें बढ़ने क्यों दिया जाए, इस तरह की ज़िंदगी को किस तरह से जिया जाए, आंसुओं का ये समंदर किस तरह से पिया जाए। जानता हूँ मैं कि बादल घिर रहे हैं, जानता हूँ मैं कि बादल घिर रहे हैं।

वक्त बदला, स्वप्न कल के लुट रहे हैं। जानता हूँ मैं कि बादल उठ रहे हैं, वक्त बदला, स्वप्न कल के लुट रहे हैं। और

0: बदली गई है हर कहानी, इस तरह बदली गई है हर कहानी, किस तरह अब फटे कागज को सिया जाए, किस तरह अब फटे कागज को सिया जाए, इस तरह की जिंदगी को किस तरह से जिया जाए, आंसुओं का ये समंदर किस तरह से पिया जाए। आखिरी है इस कविता का कि चाहता हूँ वक्त की रफ्तार बदलूं, चाहता हूँ वक्त की रफ्तार बदलूं, चाहता हूँ मैं क्षितिज की ओर चल दूं, चाहता हूँ वक्त की रफ्तार बदलूं, चाहता हूँ मैं क्षितिज की ओर चल दूं, लड़खड़ाने लग गए हैं पांव फिर भी, लड़खड़ाने लग गए हैं पांव फिर भी, आज थक कर बैठ जाऊं या निकल दूं, चाहता हूँ वक्त की रफ्तार बदलूं, चाहता हूँ मैं क्षितिज की ओर चल दूं, लड़खड़ाने लग गए हैं पांव फिर भी, आज थक कर बैठ जाऊं या निकल दूं, सिर झुकाकर बैठना बिल्कुल गलत है, सिर झुकाकर बैठना बिल्कुल गलत है, हार के काले जहर को क्यों पिया जाए, सिर झुकाकर बैठना बिल्कुल गलत है, हार के काले जहर को क्यों पिया जाए, इस तरह की जिंदगी को किस तरह से जिया जाए, आंसुओं का ये समंदर किस तरह से पिया जाए, सोचता हूँ मैं कि जीवन भार क्यों है, आग में झुलसा हुआ सा प्यार क्यों है। ये एक कविता पढ़ रहा हूँ, दूसरी कुछ इसी तरह से है, कुछ अलग लेकिन आज के संदर्भ में है कि आज कुछ नई बात तुम कहो, आज कुछ नई बात तुम कहो, धार से अलग दिशा को बहो, आज कुछ नई बात तुम कहो, धार से अलग दिशा को बहो, तभी कुछ बात नई होगी, तभी कुछ रात नई होगी, आज कुछ नई बात तुम कहो, धार से अलग दिशा को बहो, तभी कुछ बात नई होगी, तभी कुछ रात नई होगी, सुबह का हल्दी मला शरीर, सुबह का हल्दी मला शरीर, नाज नखरों में पला शरीर, सुबह का हल्दी मला शरीर, नाज नखरों में पला शरीर, कंवारे गुल मेहंदी से अधर, कहीं पर बिकी हुई सी नजर, सुबह का हल्दी मला शरीर, नाज नखरों में पला शरीर, कंवारे गुल मेहंदी से अधर, कहीं पर बिकी हुई सी नजर, लाजवंती अनब्याही उषा, पहनकर किरणों की चोली, लगाती है मेरी बोली, लाजवंती अनब्याही उषा, पहनकर किरणों की चोली, लगाती है मेरी बोली, अगर मैं बिका रूप के हाथ, सुहानी रात नहीं होगी, सृजन की बात नहीं होगी, आज कुछ नई बात तुम कहो, धार से अलग दिशा को बहो। आखिरी है इसका कि बादलों ने मिल माया रची, रात भर काफ़ी हलचल मची, बादलों ने मिल माया रची, रात भर काफ़ी हलचल मची, चांद के तन को काला किया, बुझाया घर घर जलता दिया, अंधेरे को सब शासन सौंप, चला दिन बनने सन्यासी, अंधेरे को सब शासन सौंप, चला दिन बनने सन्यासी, जगाने अलख चला काशी, अगर मैं भी मलवाख चलूं, अगर मैं भी मलवाख चलूं, चांदनी रात नहीं होगी, सुबह की बात नहीं होगी, आज कुछ नई बात तुम कहो, धार से अलग दिशा को बहो।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे डॉक्टर जगदीश सलिल से कविता पाठ। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव साथी श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR से भी। इस समय प्रातः

कि 7:30 और 7:30 और 40 सेकंड्स हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर को फिल्म दाग में, बोल थे साहिर लुधियानवी के, संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। लीजिए अब सुनिए फिल्म दस्तक का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीत से सवारा है मदन।

फिल्म संगीत में अभी आपने सुना किशोर कुमार को फिल्म किनारा में, बोल गुलजार के थे, धुन तैयार की थी राहुल देव बर्मन ने। आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और महालक्ष्मी को फिल्म दिल से में। गीतकार थे गुलजार, संगीत निर्देशन था एआर रहमान का। लीजिए अब सुनिए फिल्म आशिकी 2 का ये गीत श्रेया घोषाल की आवाज में, बोल है संदीप नाथ के, संगीत निर्देशन जीत गांगुली का।

फिल्म संगीत की अंतिम प्रस्तुति के रूप में अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की आवाज में फिल्म अग्निपथ का ये गीत। बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के, संगीत से सवारा है अजय अतुल ने।

0: सोनू निगम के गाय फिल्म अग्निपथ के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और उसके बाद मॉर्निंग न्यूज।
1: सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए

0: रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंधा स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की संख्या, संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और एक्सेट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में AI की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
3: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7:00 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नभर टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week-long Nasha Mukt Yuva for

0: मीडियम वेव साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर पर आप सुन रहे हैं।
1: घड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए हम।
0: जी, अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम के कलाकार हैं साक्षी कुलश्रेष्ठ। आप सुनेंगे इनकी गायी कुछ भक्ति रचनाएं। कार्यक्रम में आपको सबसे पहले सुनवाते हैं ये पहली प्रस्तुति।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार साक्षी कुलश्रेष्ठ की कुछ भक्ति रचनाएं। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगली प्रस्तुति।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार साक्षी कुलश्रेष्ठ की कुछ भक्ति रचनाएं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की ये अगली प्रस्तुति।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार साक्षी कुलश्रेष्ठ की गायी कुछ भक्ति रचनाएं। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ पर देश भर के युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह संकल्प अगले 100 दिनों तक लगातार चलेगा और हर रविवार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बैरसिया में सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण शिक्षा के नए युग की शुरूआत है। मुख्यमंत्री कल बैरसिया में इस विद्यालय के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है। इसके लिए 20 काउंटिंग टेबल बनाए गए हैं और करीब 350 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की श्रावण भाद्रपद सवारी के तहत आज पहली सवारी निकलेगी। सवारी पूजन के बाद शाम 4 बजे मंदिर से शुरू होगी और रामघाट पहुंचकर शिप्रा नदी से जलाभिषेक के बाद शाम 7 बजे तक वापस मंदिर लौटेगी। अनूपपुर जिले के अमरकंटक वन क्षेत्र में साल बोरर कीटों के संक्रमण से वन विभाग चिंतित है। यहां करीब 60,000 पेड़ इस संक्रमण से प्रभावित पाए गए हैं। प्रदेश में अब तक औसतन 15.5 इंच बारिश हो चुकी है, जो तय कोटे की आधी भी नहीं है। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर सहित 42 जिलों में सामान्य से कम पानी गिरा है और ग्लासगो में कल रात राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो गया। इसके साथ ही 2030 में अहमदाबाद में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की उल्टी गिनती आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। समापन समारोह में भारत ने दुनिया को अहमदाबाद आने का न्योता दिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम वेव साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रातः के 9 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर सुन रहे सभी श्रोता साथियों को अरुणा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता मित्रों, आज का दिन श्रद्धा, विश्वास और आराधना से शुरू हो रहा है। आज श्रावण का पहला सोमवार है।

हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष महत्व है। भगवान शिव का प्रिय महीना। समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तब भगवान शिव ने उसे पीकर संसार की रक्षा की थी। यह घटना सावन माह में हुई। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया ताकि विष का प्रभाव शांत हो सके। तभी से इस मास में जलाभिषेक और पूजा का विशेष महत्व है। सावन के सोमवार का व्रत और प्रकृति के सौंदर्य का सबसे पवित्र और प्रिय काल माना जाता है। सावन के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल दूध और बेलपत्र चढ़ाने से विशेष फल मिलता है, ऐसा मान्यता है। आइए श्रद्धा और विश्वास से भरे इस मास का, इस सोमवार के व्रत का आरंभ शुभारंभ करें।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वाली में श्रोता साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोता साथियों, पिछले कई दिनों से हम आपसे नशा के बारे में, नशा मुक्ति अभियान से जुड़ी हुई कई बातें कर चुके हैं, लेकिन कल के दिन माननीय प्रधानमंत्री ने भी हमारे युवाओं को संबोधित करते हुए विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का शुभारम्भ किया। माननीय प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प एक विशाल राष्ट्रव्यापी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान का शुभारंभ किया। इस क्षण के सामूहिक महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने एक गहन राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के रूप में इसे प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार आज हम सभी देशवासी एक महान और महत्वपूर्ण संकल्प के लिए एकजुट हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवारों, समाज और पूरे राष्ट्र के व्यापक हितों की भी पूर्ति करता है। नशा मुक्त भारत संकल्प अभियान के मूल उद्देश्य को रेखांकित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत को प्राप्त करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सशक्त और आत्मविश्वास से भरपूर युवा पीढ़ी का होना जरूरी है, जो आत्मविनाशकारी आदतों से पूरी तरह मुक्त हो। उन्होंने कहा कि आज जब राष्ट्र ने विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो यह जरूरी है कि देश के युवा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो और नशीले पदार्थों जैसी विनाशकारी आदतों से हमेशा के लिए दूर रहे। उन्होंने इस बात पर भी संतुष्टि व्यक्त की कि यह पहल पिछले वर्ष काशी की पवित्र भूमि से एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू हुई थी। इस आंदोलन को संचालित करने वाले वैज्ञानिक स्पष्टता, आध्यात्मिक ऊर्जा और गहन सांस्कृतिक समर्पण के अनूठे मिश्रण पर जोर देते हुए उन्होंने इसके व्यापक विस्तार का उल्लेख भी किया है।

ने कहा कि आध्यात्मिक संगठनों और कई गैर सरकारी संगठनों के समर्थन से कल्याणकारी यह विचार अब सफलतापूर्वक एक राष्ट्रीय परियोजना बन गया है। नशा विरोधी शपथ लेने वाले लाखों युवाओं की सराहना करते हुए उन्होंने व्यक्तिगत संयम बनाए रखने, स्कूल, कॉलेजों और समुदायों में नशा मुक्त जीवन का संदेश सक्रिय रूप से फैलाने के उनके दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की। अभियान के महत्वाकांक्षी 100 सप्ताह के रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे प्रत्येक आगामी रविवार को कला, संस्कृति, खेल और ध्यान से संबंधित विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इससे नए प्रतिभागियों को लगातार जोड़ा जा सके। आगामी 100 रविवार पूरी तरह से नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम साबित होंगे। छात्रों, राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा सदस्यों और माई भारत स्वयंसेवकों की विशाल ऑनलाइन सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के युवाओं द्वारा प्रदर्शित गहन जागरूकता, संवेदनशीलता और गंभीर समर्पण पर गर्व व्यक्त किया है। उन्होंने युवा पीढ़ी को भारत की अमृत पीढ़ी बताते हुए उन्हें याद दिलाया कि उनकी ऊर्जा, कल्पनाशीलता और प्रतिभा देश को 2047 के विकास लक्ष्यों की ओर ले जाने के लिए जरूरी है। देश के भविष्य और आगामी अपने जीवन के लिए व्यसन से मुक्त रहना बहुत जरूरी है। स्टार्टअप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, खेल और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में आज के युवाओं की शानदार उपलब्धियों की तुलना नशीले पदार्थों के सेवन के विनाशकारी प्रभावों से आगाह करते हुए उन्होंने इस बात पर भी चेताया कि कैसे व्यसन एकाग्रता को भंग करता है और सपनों को चकनाचूर कर देता है। माता पिता के सपनों को चकनाचूर करने से लेकर बुजुर्गों के लिए दैनिक पीड़ा का कारण बनने तक परिवारों पर पड़ने वाले गहरे दुष्परिणामों को दर्शाते हुए उन्होंने व्यापक सामाजिक प्रभाव पर भी जोर दिया। उन्होंने यह भी संदेश दिया कि जब किसी परिवार या समाज में यह विनाश होता है तो पूरे राष्ट्र की समग्र शक्ति भी मौलिक रूप से कमजोर हो जाती है। युवाओं को नशीले पदार्थों के भ्रामक स्वभाव के प्रति आगाह करते हुए उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नशीले पदार्थों से मिलने वाला क्षणिक आनंद अंततः उनके करियर और पारिवारिक जीवन के लिए स्थायी पतन का कारण बनता है। उन्होंने यह भी संदेश दिया कि हमें किसी भी परिस्थिति में नशीले पदार्थों को सामाजिक स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने शिक्षाविदों से विशेष अपील करते हुए कॉलेज और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को से अनुग्रह किया कि वे नशीले पदार्थों के खतरों पर चर्चा को अपने नियमित पाठ्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल करें और अपने परिसरों में नशा विरोधी अभियान चलाएं। नशे की लत से उबर रहे लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन व्यक्तियों के लिए सामाजिक सम्मान और दूसरा मौका देने का आह्वान किया और अतीत से जुड़ी बुराई को पूरी तरह खारिज कर दिया। नशे की लत से लड़कर बाहर आने वाले युवा कमजोर नहीं हैं, वे असली योद्धा हैं जिनका अविश्वसनीय साहस ही उनकी सच्ची पहचान है।

श्रोता साथियों, कल रविवार को ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 पदक अपने नाम जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। पारंपरिक रूप से मजबूत माने जाने वाले कई खेलों के शामिल न होने के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और जूडो में ऐतिहासिक सफलता दर्ज की। 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय मुक्केबाजों ने इतिहास रचते हुए 7 स्वर्ण सहित कुल 10 पदक अपने नाम किए। समापन समारोह के दौरान ग्लासगो से कॉमनवेल्थ गेम्स का झंडा और बैटन आधिकारिक तौर पर भारत को सौंपा गया और वर्ष 2030 का शताब्दी संस्करण गुजरात के अहमदाबाद में अब आयोजित किया जाएगा। आज मैथिली शरण गुप्त जी की जन्म जयंती है। राष्ट्रकवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्होंने अपनी कविताओं से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित किया। गुप्त जी की कृतियां जैसे कि भरत भारती, साकेत, यशोधरा और पंचवटी हमें राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना और मानवीय उत्थान की ओर ले जाती हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जन जागरण का काम बहुत अधिक किया और कविताओं से खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने में बहुत सहायता मिली। अपनी कृति भारत भारती के कारण वो राष्ट्र कवि कहलाए। इनकी कविताओं में राष्ट्रीय भावना चरम विकास पर पहुंची। उनकी जन्म जयंती पर हमारी ओर से उन्हें शत शत नमन। श्रोता साथियों, संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन का आधार जल है, यह हम आपसे हमेशा ही कहते रहे हैं। चूंकि इस वर्ष हमारे अंचल में बारिश की कुछ कम होने की गुंजाइश बताई जा रही है, ऐसे में ज़रूरी है कि हम जल संरक्षण की ओर सचेत रहें। जल हमें समुद्र, नदियों, तालाबों, झीलों, वर्षा और भूजल के माध्यम से मिलता है। गर्म हवाओं के चलने से समुद्र, नदियां, झीलें, तालाब, इनका जल वाष्पित होकर ठंडे स्थानों की ओर चलता है, जहाँ पर न्यून तापमान के कारण संग्रहित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। लेकिन इस बार हमारे अंचल को ये मेहरबानी कम मिल रही है। मनुष्य अपने स्वास्थ्य सुविधा, दिखावे और विलासिता को दिखाने के लिए अमूल्य जल की बर्बादी करने से नहीं चूक रहा है। पानी का इस्तेमाल करते हुए हम पानी की बचत के बारे में जरा भी नहीं सोचते। इसके कारण अधिकांश जगहों पर जल संकट की स्थिति पैदा हो चुकी है। यदि हम अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव कर लें तो पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है। एक अध्ययन से पता चला है कि मनुष्य यदि अपनी आदतों को बदल ले तो 80% से भी अधिक पानी की बचत हो सकती है। बूंद बूंद की बचत से एक बड़ी बचत हो सकती है। इस प्रकार पानी की बचत ही जल का संरक्षण है। पानी बर्बादी और उसे प्रदूषण से बचाना ही जल संरक्षण है। ये एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि वर्षा जल हर समय उपलब्ध नहीं रहता। और जब ऐसे समय में जब मेघ हमें तरसा कर लौट जाएं, तो हमारा ये संकल्प बनता है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जल संरक्षण को लेकर सचेत रहें, सजग रहें।

बिल्कुल श्रोता मित्रों, हम भी चाहते हैं इस गीत की ही तरह हमारे अंचल को भी मेघा इस तरह से भिगो दें कि हम सभी सावन का पूरा आनंद ले सकें। इस प्यासी धरती को तर बतर कर दे ये सावन का महीना। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आज का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर यहीं समाप्त करने की अरुणा को दे अनुमति। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कलाकार सुदीप

भदौरिया का राग अहिर भैरव में थमार गायन, पखावत संगत है जयंत गायकवाड़ की, लीजिए सुनिए।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 10 बजने को है। आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सतना जिले की चिट्ठी। आलेख लाल बहादुर तिवारी, वाचन स्वर दीपा सिंह। सतना जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मौसम की। जिले में लगातार हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। खेतों में किसान धान की रोपाई में जुटे हैं। वर्षा होने से भूजल स्तर में भी सुधार हुआ है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस बार कम बारिश हुई है। सावन माह शुरू होते ही जिले के सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐतिहासिक जगतदेव तालाब मंदिर और बिरसिंहपुर के बाबा ग्यावीनाथ धाम में सुबह से ही भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम किए हैं। नगर परिषद कोठी में नगरीय विकास और आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने 2 करोड़ रुपए की लागत से बने आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 2,54,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले विश्राम गृह यानी मंगल भवन का भूमि पूजन भी किया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सतना और मैहर जिले में कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शासकीय संदीपनी विद्यालय मैहर में विद्यार्थियों ने गुरु वंदना और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से गुरु शिष्य परंपरा को जीवंत किया। सतना और मैहर जिले की दिशा समिति की संयुक्त बैठक सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में बाणसागर ग्रामीण जल प्रदाय योजना, सिंचाई परियोजनाओं और पेयजल योजनाओं की समीक्षा की गई। जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में बिना हेलमेट पहुंचने वाले दोपहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। वहीं हेलमेट पहनकर आने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। लोगों को सड़क सुरक्षा का संदेश देने के लिए निःशुल्क हेलमेट भी वितरित किए गए। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस की अध्यक्षता में जिला शहरी विकास अभिकरण की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगरीय क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में जिला रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक हुई। बैठक में जिले के ब्लैक स्पॉट्स की समीक्षा की गई और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रात्रि गश्त बढ़ाई गई है और असामाजिक तत्वों पर लगातार नजर रखी जा रही है। मौसमी बीमारियों को देखते हुए जिले के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जा रही है। नियमित टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं और स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से लोगों को बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। खरीफ सीजन को देखते हुए सतना और मैहर जिले में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध कराया गया है। कृषि विभाग के अनुसार यूरिया, डीएपी, एनपीके और एसएसपी सहित सभी प्रमुख खाद पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। अधिकारियों ने किसानों से अधिकृत विक्रेताओं से ही खाद खरीदने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग ने किसानों को धान की सीधी बुआई यानी डीएसआर पद्धति अपनाने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार इस तकनीक से पानी और श्रम दोनों की बचत होती है। समय पर बुआई होने से फसल का उत्पादन भी बढ़ता है। अतिवृष्टि और बाढ़ जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने 24 घंटे कार्यरत कंट्रोल रूम स्थापित किया है। कलेक्ट्रेट भवन में संचालित इस कंट्रोल रूम में अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत यहाँ दी जा सकती है। मैहर घराने की समृद्ध संगीत परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने मैहर मल्हार संगीत सभा की शुरुआत की। शासकीय संगीत महाविद्यालय में आयोजित पहले कार्यक्रम में युवा कलाकारों ने शास्त्रीय गायन, तबला, जुगलबंदी और कथक की प्रस्तुतियां दी। जिले में विश्व स्तनपान जागरूकता सप्ताह के तहत स्कूलों और विभिन्न संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वरिष्ठ डॉक्टर छात्राओं को बता रहे हैं कि मां का पहला गाढ़ा पीला दूध नवजात के लिए सबसे सुरक्षित और पौष्टिक आहार होता है। इससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कई गंभीर बीमारियों से बचाव होता है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी सतना जिले की चिट्ठी। आलेख लाल बहादुर तिवारी का था, वाचन था दीपा सिंह का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेशों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर फिल्म साजन का घर से। गीत समीर का है, धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने। इस गीत को स्वर दिया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। गणेशपुर गंज डुडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख शमा परवीन सायमा फारूक सरफराज शेख गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। नलगोंडा तेलंगाना से मोहम्मद अमजद मुनीरुस्सा और सलमा फिरदौस। इसी गीत को सुनना चाहे सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत यशु निरंजन सिंह सौम्या सिंह और अविरल सिंह ने। पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से संदीप मक्कर ज्योति मक्कर मन्नत मक्कर और भरत मक्कर, साथ में कमल साहनी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार। और इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मारकंडे ममता मारकंडे और बेबी किट्टू ने। आप सब सुनिए फिल्म साजन का घर का ये गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का अगला गीत आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर फिल्म विश्वात्मा से आवाजें हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और मोहम्मद अजीज की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है विजू शाह ने। पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। राज पैलेस मोहनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। इसी गीत को सुनवाने के लिए हमें फरमाइश भेजी है बुल्ढाणा वड़शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार। झांसी से फखरुद्दीन अंसारी, बदरुपली अंसारी, फर्जीवली अंसारी और फर्जुवली अंसारी। सरगुजा मेनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा और रेशमा थापा। जेलोड जालंधर से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत असमा कौर और धर्मजीत फातिमा कौर। आप सब सुनिए फिल्म विश्वात्मा का ये गीत अलका याग्निक, उदित नारायण और मोहम्मद अजीज की आवाजों में।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम अभी सुबह की 10:58 तक आप सुन सकते हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर फिल्म गुप्त से। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की, बोल हैं आनंद बख्शी के, धुन तैयार की है बीजू शाह ने। गुमला झारखंड से SM जावेद शगुफ्ता अंजुम और नजमुल हुदा। इसी गीत को सुनवाने के लिए हमें फरमाइश भेजी है। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर ने। गांव केरो जिला तरनतारन पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शमी, रचनी आकाशदीप, अनहद और गुरशब्द। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और कुंती साहू। गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। इसी गीत को सुनवाने के लिए हमें फरमाइश भेजी है। डाबकी रोड अकोला महाराष्ट्र से सुनीता देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर ने। आप सब सुनिए फिल्म गुप्त का ये गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में।

पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री और रमेश गौड़, साथ में मोहम्मद शादाब खत्री। इसी गीत को सुनवाने के लिए हमें फरमाइश भेजी है मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, बेबी निशा और सभी मित्रगण। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार। ग्राम पंजौनिया जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, सार्थक, आदर्श और अलौकिक चंसौलिया। अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक और विनोद पुरी। और साथ में हैं कृष्ण पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना। आप सब सुनिए फिल्म चालबाज का गीत कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में।

0: आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम अभी सुबह के 10:58 तक जारी है।
1: सो योर प्लेस और माइन।
2: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
1: कॉन्डम? लेकिन हम तो
2: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
1: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
3: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

अभी आपने सुना कार्यक्रम से फरमाइश का ये अगला गीत। इसे हमने लिया था फिल्म त्रिदेव से। आवाज़ें थीं साधना सरगम और मोहम्मद अजीज़ की। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत निर्देशन था विजू शाह का। पसंद किया था आप सभी श्रोता साथियों ने। नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर, राजेश राकेश और ऋषिता। इसी गीत को सुनना चाहता अड़ार नांदघाट। छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा ने। ततरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। लीजिए अब सुनिए आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर कार्यक्रम का अगला गीत। इसे हमने लिया है फिल्म चांदनी से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और विनोद राठौड़ की। गीतकार एक बार फिर से हैं आनंद बख्शी और संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का, माफ कीजिएगा शिव हरि का। पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी काम

कपड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब से सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा, सोनाली शर्मा और अनामिका शर्मा। शिव मंदिर दालमंडी से राजू बनारसी और राजेश कुमार यादव। कमल साहनी, संदीप मकर, ज्योति मकर, मन्नत मकर और भरत मकर, आप सब सुनना चाहते हैं पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से इसी गीत को। और ग्राम बड़बुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, आप सब सुनिए फिल्म चांदनी का गीत लता मंगेशकर और विनोद राठौड़ की आवाज़ों में।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का अगला गीत आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर। जे लोड रायगढ़ से नरेंद्र यादव, महेंद्र और जाह्नवी यादव। इंदिरा विहार दिल्ली से वसीम अंसारी, बेबी अंसारी और यामिनी राज। जे लोड बक्सर से राज अंसारी, शिल्पी राज और उमा राज। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म लव का ये गीत, चित्रा और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजों में। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन तैयार की है आनंद मिलिंद ने। अंबाला से संदीप हगोड़िया और राकेश हगोड़िया। इसी गीत को सुनवाने के लिए हमें अनुरोध किया है। जिला छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के ने। करणवीर हाउस भूचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से परेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीन करण और दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन और अभिजोत। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म लव का गीत, चित्रा और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का अंतिम गीत आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और जलंधर से अशोक जाटव, संगग्राम हिंगड़ी आलोट रतलाम से जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़, साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म मन का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में। गीत समीर का है, संगीत निर्देशन है संजीव दर्शन का। इसी गीत को सुनवाने के लिए मैंने अनुरोध किया है गुलाम रोड हरगोविंद नगर नवाशहर पंजाब से सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित संधू और रितेश संधू, शिखा संधू, प्रतीक्षा संधू और मैक्स ने। आप सब सुनिए फिल्म मन का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में।

अलका याग्निक और उदित नारायण की फिल्म मन के इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का अनुप्रसारण।

0: नदी से जलाभिषेक के बाद शाम 7 बजे तक वापस मंदिर लौटेगी। और प्रदेश में विभिन्न जिलों की पुलिस ने पिछले 3 हफ्तों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 116 चोरी की मोटरसाइकिल, 4 ट्रैक्टर, 1 पिकअप तथा 1 कार जब्त की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तवर। कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं रोज सुबह 10:30 से 11 बजे तक, और हमारे फोन नंबर है 2660902, STD कोड है 0755। नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हेलो मैडम।
0: हेलो।
1: हेलो
0: जी। नमस्कार।
1: नमस्ते मैडम, सुनील बोल रहे हैं।
0: सुनील जी, पूरा नाम बताएं।
1: राजस्थान से सुनील, सुनील कुमार।
0: सुनील,
1: गाना सुनना है
0: जी, बताएं।
1: फिल्म का नाम है रहीस, गाने के बोल है जालिमा।
0: अच्छा, क्या करते हैं सुनील जी?
1: मैडम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हूँ, अकाउंटेंट के पदस्थ पर
0: जी। सुनील जी, आपका गीत हमारे पास उपलब्ध है अरिजीत सिंह की आवाज में, आपको सुनवाते हैं।
1: मैडम आप कौन बोल रही हैं?
0: मेरा नाम रक्षा है सर।
1: ओके मैडम, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार,
1: हेलो।
0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: जी, मैं कोलार रोड भोपाल से बोल रहा हूँ, राम बाबू मालवीय।
0: राम बाबू जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप सुनाओ मैम, आप कैसे हो और आकाशवाणी टीम कैसी क्या है?
0: सब बहुत अच्छा है यहाँ पर भी, हम भी बहुत बढ़िया हैं। क्या करते हैं
1: जी,
0: राम राम बाबू जी?
1: अपने लॉन्ड्री का काम है, ड्राई
0: अच्छा,
1: क्लीनिंग का शॉप है, तो काम वाम भी करते हैं और आपके आकाशवाणी के सभी हर जगह के प्रोग्राम सुनते रहते हैं, और विशेषकर तो अपने विविध भारती अपने भोपाल और आकाशवाणी भोपाल ज्यादा ही सुनते हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं?
1: जी, आज फिल्म दिल है कि मानता नहीं,
0: जी
1: उसी में है मैनू इश्क दा लगी आरोप।
0: बिल्कुल, गीत हमारे पास उपलब्ध है, हम आपको सुनवाएंगे।
1: हाँ जी,
0: जी
1: और मैम एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ
0: बताएं।
1: आपसे,
0: जी
1: एक व्हाट्सएप फरमाइश भी होना चाहिए ना प्रोग्राम में, हफ्ते में एक या दो बार।
0: व्हाट्सएप पे आप

0: करना चाहते हैं।
1: हाँ जी, क्योंकि ये अपने जो मध्य प्रदेश के नाम से होगा या आकाशवाणी, तो बहुत बड़ा ये मतलब अपना नेटवर्क है
0: जी।
1: और अपने मध्य प्रदेश में चलते हैं तो सभी जगह के, हर जगह के जो मैसेज आएंगे और उनके नाम पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और सबकी पसंद के गाने सुनेंगे तो और
0: जी
1: अच्छा लगेगा।
0: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका दिया हुआ सुझाव हम यहाँ पर हमारी टीम के साथ साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए
1: जी। नमस्कार,
0: नमस्ते।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें की सुने।
1: जय माता दी।
0: जय माता दी। किनसे बात हो रही है?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं जिला जयपुर गांव बुगला से बात कर रहा हूँ। मैडम
0: पूरन वर्मा जी।
1: जी मैडम
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बस मैडम बढ़िया हूँ, आप सुनाओ।
0: हम भी अच्छे हैं। क्या चल रहा है पूरन जी?
1: बस मैडम खेतों में थोड़ा खेत वो था, बाजरा बोया था, तो बरसात का इंतजार है। बरसात कम है इधर तो, आपके उधर?
0: अभी तो अच्छी हो रही है, लगातार मौसम बना हुआ है।
1: जी यहाँ तो बादल बहुत ज्यादा होते हैं और बरसात भी बहुत कम होती है मैडम। यहाँ कल हुई थी थोड़ी बहुत।
0: जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज?
1: जी। आई मिलन की रात में एक गाना है, मत रहो मेरे दिल, ये मिल जाएगा।
0: अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में ये गीत है, आपको सुनवाते हैं।
1: हाँ जी, थैंक यू मैडम
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: नमस्ते मैडम
0: जी। नमस्ते, किनसे बात हो रही है?
1: मैं हसीना बी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: हसीना बी जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे मैडम, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं।
1: आप कौन बोल रहे हैं मैडम?
0: जी, मेरा नाम रक्षा है।
1: जी जी रक्षा। रक्षा मैडम, गाना सुनना है मेरे को एक।
0: बताएं कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: ये स्वर्ग से सुंदर का गाना है, फिल्म का नाम, और गाने के बोलने अब

0: दीजिए।
1: बहुत अच्छा गाया है आपने, लेकिन माफी चाहूंगी ये गीत हमारे पास उपलब्ध नहीं है।
0: ये नहीं है
1: जी कोई और गीत सुनवा सकते हैं आपको?
0: ये आग और शोला के मिल जाएगा मैडम।
1: आग और शोला फिल्म से कौन सा गीत?
0: बरसा रे बरसा अब के यूं पानी, होय होय होय एक तो ये मौसम दूजे जवानी।
1: जी बिल्कुल, ये गीत मनिहर की आवाज में हम आपको सुनवाते हैं।
0: थैंक यू मैडम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्ते बहन जी, मैं ग्राम लोहेड़ी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव बात कर रहा हूँ।
0: जयपाल यादव जी, कैसे हैं आप?
1: जी जी बढ़िया हूँ। सब आप लोगों की दुआएं हैं, ऊपर वाले का साथ बना रहे और आप लोगों का स्नेह बना रहे।
0: क्या करते हैं जयपाल जी?
1: जी बहन जी, मैं मतलब खेती कृषक से भी जुड़ा हूँ, साथ में समाज सेवा करता हूँ, गरीब परिवार का सहायता तबके बच्चों को, बच्चियों को या परिवार की।
0: जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम करते हैं आप।
1: जी जी जी, जी।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: लोगों से सीखते हैं, आप विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों के माध्यम से जुड़े रहते हैं, तो जो भी वार्ताएं या जो भी जानकारियाँ आती हैं तो ग्रामीण अंचलों तक, जो ज्यादातर परिवार पढ़े लिखे नहीं है, तो उन तक उनकी योजना का लाभ दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता रही थी।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है जयपाल जी। कार्यक्रम आज फोन करें गीत सुने हैं, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज?
1: तो आज इसी से मिलता जुलता एक गीत है, फिल्म का नाम है ताल, इसी का शीर्षक गीत सुना दीजिए, ताल से ताल मिला।
0: बिल्कुल, ताल फिल्म का ये सुंदर सा गीत आपको सुनवाते हैं
1: जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: अच्छा रक्षा बहन जी, आपसे बात करके।
0: जी हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: जी जी जी, नमस्ते बहन जी।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्ते मैडम जी, हम बोल रहे हैं हरदयाल जाटव से ब्रिजला से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हैं, आप कैसी मैडम?
0: हम भी बढ़िया हैं। क्या चल रहा है, क्या करते हैं हरदयाल जी?
1: खेती किसानी करते हैं मैडम।
0: खेती किसानी करते हैं, क्या लगा रखा है अभी?
1: अभी मूंगफली लगा रखी है।
0: और पानी वगैरह कैसा है आपके यहाँ पर?
1: अभी पानी तो ये मान लो कि 15 दिन से पानी नहीं बरसा है, रिमझिम बरस रहा है, थोड़ा सा चुटकट पानी बरस रहा है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। आज गीत कौन सा सुनना चाहते हैं फिर?
1: सुना दीजिए अजनबी फिल्म का, ये गाने के बोल भी है, फिल्म का नाम भी अजनबी का इंतजार है तुमसे प्यार है।
0: जी बिल्कुल, आपका ये जो गीत है हम आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्ते।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: नमस्कार मैम
0: जी, कौन बात कर रहे हैं? नमस्कार
1: जी, मैं दीपक सिंह गुर्जर बात कर रहा हूँ, ग्राम खकल, तहसील कौ, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश।
0: जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर जी।
1: जी मैम।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या करते हैं दीपक जी?
1: जी वर्तमान में फार्मर हूँ, मैंने बीएड कर लिया है।
0: अच्छा, खेती भी करते हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं।
1: जी जी,
0: बहुत अच्छी बात है। क्या लगाया हुआ है अभी, क्या खेती में क्या चल रहा है?
1: धान लगा हुआ है मैम।
0: धान लगा हुआ है, अच्छा बहुत अच्छी बात है। पानी वगैरह ठीक गिर रहा है आपके यहाँ?
1: पानी तो मैम बहुत कम गिर रहा है, पानी की बहुत आवश्यकता है।
0: अच्छा, अरे चलिए, उम्मीद करते हैं थोड़े दिनों में थोड़ी अच्छी बारिश हो जाए।
1: जी बिल्कुल, उम्मीद पर ही टेके हैं और पूरी दुनिया उम्मीद पर ही चल रही है।
0: जी जी जी कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज बताएं?
1: आज आप मुझे सुनवा दीजिए फिल्म में खानदान गीत के, बोलेंगे मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला तो पुराना है।
0: लता मंगेशकर की आवाज में खानदान फिल्म से ये गीत आपको
1: जी।
0: सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: थैंक यू मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हेलो
0: जी, किन से बात हो रही है?
1: हमारा नाम है प्राची वर्मा, हम कटनी से बोल।
0: प्राची वर्मा जी कटनी से, कैसी हैं प्राची जी?
1: जी हम अच्छी हैं, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या करती हैं प्राची
1: जी? हम कुछ नहीं करती, घर पर रहते हैं।
0: घर पर रहते हैं। क्या शौक है संगीत सुनने के अलावा?
1: शौक तो बहुत सारे शौक है, जैसे मुझे लिखने का बहुत शौक है।
0: अच्छा, लिखती हैं आप?
1: क्रोशिया वगैरह का बनाने का शौक है।
0: बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छे शौक हैं। प्राची जी
1: हम
0: कौन
1: तो
0: सा गीत?
1: गाना सोचे ही नहीं, क्योंकि हमको लगा ही नहीं था कि हमको कि हमारा फोन लग जाए।
0: अभी सोच लीजिए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। देखिए फोन तो
1: कौन सा
0: लग
1: भी
0: गया
1: सुना
0: आपका।
1: दीजिए, आप अपनी पसंद का सुना दीजिए।
0: नहीं नहीं आपकी पसंद का कार्यक्रम जो है फरमाइशी गीतों का है, तो आपको ही, आप थोड़ा सा समय
1: चलिए
0: ले
1: ठीक
0: लीजिए,
1: है,
0: कोई
1: वो
0: दिक्कत
1: सुना
0: नहीं।
1: दीजिए,
0: जी
1: कटी पतंग का सुना दीजिए, ना कोई उमंग है ना कोई तरह।
0: कटी पतंग फिल्म से लता मंगेशकर जी की आवाज़ में।
1: जी हाँ
0: जी बिल्कुल, सुनवाते हैं आपको प्राची जी कार्यक्रम में फोन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद,
1: सभी बहुत बहुत
0: बहुत बहुत
1: धन्यवाद,
0: धन्यवाद।
1: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: हमें भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।
1: थैंक यू।

कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आपको बता दें कि हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं रोज सुबह 10:30 से 11 बजे तक, और हमारे फोन नंबर है 2660902, STD कोड है 0755। अपनी रेडियो साथी रक्षा तवर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाग्य प्रतिकूल होने पर भी कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जिस प्रकार एक कुशल नाविक समुद्र के बीच में जहाज डूबने पर भी उम्मीद नहीं छोड़ता बल्कि तैरकर जीवित रहने का प्रयास जारी रखता है, इसी तरह हमें भी अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के चौथा स्थान प्राप्त करने पर सराहना की है। भारत ने इन खेलों में 39 पदक प्राप्त किए हैं जबकि पिछले संस्करण में 30 पदक हासिल किए थे। दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है। तीसरा राउंड भी पूरा हो चुका है। सावन का पहला सोमवार राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की श्रावण भाद्रपद सवारी के तहत आज पहली सवारी निकलेगी। सवारी पूजन के बाद शाम 4 बजे मंदिर से शुरू होगी और रामघाट पहुंचकर शिप्रा नदी से जलाभिषेक के बाद शाम 7 बजे तक मंदिर वापस लौटेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की आप सभी की फरमाइश के साथ। लिखने वाले हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क MP शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित और इनके परिवार के सभी सदस्य। रायपुर से लिखने वाले हैं लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरव और कुणाल। आप सभी ने सुनना चाहा है शिकारी फिल्म का नगमा कुमार सानू की आवाज़ में। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अब लेते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं गांव बुकड़गंज जिला आगरा से, जिला आगर से रघुनाथ मालवीय, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, आयुषी और ओम प्रकाश। हनुमानगढ़ से जगमाल सिंह, हैप्पी, जेएस नायक, शोभा नायक और इनकी परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है शागिर्द फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, तस बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

बक्सर से श्रद्धानंद आर्या, अभय, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। आप सभी ने सुनना चाहा है माया फिल्म का नगमा, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की युगल सुरों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और तर्ज बनाई सलील चौधरी ने।

सिंहपुर बड़ा से राजेश नीमा, संगीता भावना और प्राची, बक्से बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून, डुमराव से वसीमुल्ला अंसारी और अजमा नाज अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा, सरीमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, अजमा खातून और गुलफराज भागलपुरी। आप सभी ने सुनना चाहा है हीरा पन्ना फिल्म का नफा, कुमार सानू और माफ कीजिएगा किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल सुरों में, गीत आनंद बख्शी का, तर्ज बनाई आर जी परवर ने। तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में हीरा पन्ना फिल्म से आपकी पसंद पर ये नगमा।

हीरा पन्ना फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, गीतकार थे आनंद बख्शी और तर्ज बनाई थी आर डी बर्मन ने। इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक कामिनी का एकांतारे का 19वां भाग।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 19वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि की बहन बंग देश की राजमाता मैनावती उज्जैनी आई हुई हैं। वे थाह पाना चाहती हैं कि क्यों उनका भाई अचानक महल छोड़कर चला गया था। भर्तृहरि को जानकर दुख हुआ कि मैनावती के पति ने उनके चरित्र पर संदेह किया। अब आगे

0: अवंती राज में सिर उठाती अनेक समस्याओं पर महाराज भर्तहरि की उपस्थिति मात्र से जैसे विराम लग गया। कुमार विक्रम की उच्च श्रृंखलता भी सीमित हुई। जो सामंत और राज्याधिकारी नियंत्रणहीन हो गए थे, वो कछुए की भांति अपने आप को समेटकर आगत घटनाओं की प्रतीक्षा करने लगे हैं। महामात्य अभी भी आश्वस्त नहीं है। महाराज की अनुपस्थिति और कुमार विक्रम की गतिविधियों की सूचना महामात्य ने महाराज भर्तहरि की बहन मैनावती को भेज दी है, जो पालवंशी बंग नरेश मानिक चंद्र की मृत्यु के पश्चात शासन सूत्र संभाले हुए हैं और अपने पुत्र गोविंद चंद्र का पोषण और शिक्षण कर रही हैं। गोरखनाथ की शिष्या मैनावती अपनी भ्रमरी विद्या के कारण सुचर्चित है। विवाह के बाद की कुछ परिस्थितियां ही ऐसी बनी कि वो 17 वर्षों तक मायके नहीं आ पाई। इनमें से 15 वर्ष उन्होंने परित्यक्ता की तरह बिताए हैं। 10 वर्ष पूर्व भर्तहरि उनसे भेंट करने बन गए हैं।
1: दीदी, यहां रहने से तो अच्छा है कि तुम उज्जैनी चलो।
2: भाग्य की बात है भ्राता, और कोई भी किसी के भाग्य का साझा नहीं कर सकता। आज मेरे पास मायके का मान तो है, और वहां रहकर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो फिर यहां लौटकर भी नहीं आ सकूंगी। दोनों द्वार मेरे लिए बंद हो जाएंगे।
1: तो फिर कुमार गोविंद को ही मेरे साथ भेज दो।
2: उसका यहां रहना आवश्यक है, उसके अपने भविष्य के लिए भी और राज्य के कल्याण के लिए भी।
1: राजा मानिक चंद्र ने तो मर्यादा की सभी सीमाएं तोड़ दी हैं। चार रानियों के अतिरिक्त

0: रिक्त, सुनते हैं कि उनकी 180 सामान्य भार्याएं भी हैं।
1: किंतु अपना गोपीचंद अभी तक युवराज है। गुरु ने कहा है कि उसके युवा होते ही सब ठीक हो जाएगा। पटरानियों रानियों के समूह किस राज्य के अंतःपुर में नहीं है? तुमने पिंगला को छोड़कर किसी अन्य को महादेवी का पद नहीं दिया, किंतु दासियां तो तुम्हारे रनिवास में भी हैं। और अभी तुम्हारी आयु ही कितनी है? अभी लंबा जीवन शेष है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक कोई एक पत्नी व्रती नरेश दिखता है तुम्हें भैया?
0: पर राजा माणिकचंद्र, तुम्हारे होते हुए भी तो कई विवाह रचा सकते थे, तुम्हें त्यागने की आवश्यकता ही क्या थी?
1: आवश्यकता आवश्यकता भैया, हर पुरुष में जन्म से ही भ्रमरवती होती है। एक फूल से दूसरा, तीसरा, चौथा। मधुलोलुपता उसकी तृष्णा को संतुष्ट नहीं होने देती, फिर अधिकार की अहमन्यता। वह सर्वत्र अपना अधिकार मानता है। मुझे त्यागना इसी अधिकार की अभिव्यक्ति है। अधिकार की उच्चता पुरुष में संदेह का बीजवपन करती है।
0: संदेह तुम पर दीदी, तुम पर? सूर्य की भांति प्रखर, दुग्ध धवल, प्रतिहार वंश में जन्मी तुम्हारे चरित्र पर संदेह? मैं इसे सहन नहीं कर सकता।
1: कुकर मत हो भाई, शांत होकर सुनो। संदेह का कारण होता है स्वयं पर विश्वास का अभाव। मनुष्य अपनी दुर्बलता को छुपाने के लिए कोई ना कोई ओट खड़ी करता है। एक सीमा तक मैंने सहन किया, फिर अपने पति के हर विवाह का विरोध करने लगी। मैं अकेली ही नहीं, उनकी हर पत्नी दुखी थी। अपने अपने दुख लेकर वो मेरे सामने रोती थी। कुछ तो ऐसी थी जिन्हें एक ही रात पत्नी बनने का अवसर मिला था। कुछ और सुनना चाहोगे भैया?
0: हाँ दीदी, सब कुछ सुनना चाहता हूं। राज्य को संकट में छोड़कर इतनी दूर आया हूं, वहां एक ओर से चोल और दूसरी ओर चालुक्य ताक लगाए बैठे हैं। परमार भी हमसे ईर्ष्या रखते हैं। अवंती में तो बस महामात्य पूर्ण रथ का ही भरोसा है। पत्नी की मृत्यु का शोक भुलाकर वो राज्य की सेवा में पूर्ण रूपेण समर्पित हैं।
1: भाग्यशाली है अवंती, यहां बंगदेश की परिषद तो चाटुकारों से भरी है। प्रजा की भलाई के उपाय और उपकरण नहीं खोजे जाते। राजन्य वर्ग में हर कोई देह का दास है, भोग के अधिकाधिक साधन जुटाने में संलिप्त। मुझे ही क्या, किसी को भी ज्ञात नहीं था कि आदिनाथ शिव के शाप से संतप्त गुरु हड़प्पा हमारे ही राज्य महल में तिरस्कार योग्य भृत के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक रात अचानक मेरी नींद टूट गई और मैं अनमनस्क सी राजमहल की छत पर पहुंची। मैंने उन्हें ध्यान मग्न देखा और आश्चर्यचकित हो गई।

0: मेरी उद्विग्नता जाने कब तिरोहित हो गई उस अनहद नाद की तरंगों में। मैं आत्मविस्मृत होकर डूबने उतरने लगी। आनंद के अनिंद आकर्षण में खिंचती हुई मैं योगी के चरण में जा गिरी। उनकी आंखें खुली और वो बोले,
1: देवी आप इस राज की राजमहिषी हैं और मैं एक नगण्य भृत्य। मैं तो अपना शाप और पाप भोग रहा हूं, नहीं चाहता कि आप किसी संकट में पड़े।
0: प्रभु आप जो भी हो, किंतु मैंने अभी जिस आनंद का दर्शन और अनुभव किया है वो अभूतपूर्व था। मैं सदैव के लिए आपके अनुग्रह की याचक हूं।
1: देवी हट और उतावली कठिनाइयों का कारण बनती हैं। तुम्हारा पति बंग नरेश मानिक चंद्र मद और विलास के उस बियाबान में पहुंच गया है जहां केवल विनाश है। उसे वहां से निकालना और लौटाना तुम्हारा दायित्व है।
0: कुछ दिनों बाद मैंने अपने पति को बताया कि यहां भ्रत कर्म कर रहे वह महान योगी हाड़िप्पा हैं, जो आदिनाथ के श्राप से यहां चाकरी कर रहे हैं। इतना सुनते ही राजा मानिकचंद आवेश में आ गए। उन्होंने अपनी लात से मुझ पर प्रहार किया। उन्होंने मेरा संबंध योगी राज से आरोपित किया और मुझे त्याग दिया।

0: बंगाल के सोमपुर राज्य के पर्वतीय प्रदेश में कृष्णपाद अथवा कान्पा योगी की साधना भूमि है। वो मैनावती के गुरु भाई हैं और काव्य तथा तंत्र के महान ज्ञाता माने जाते हैं। नखला और मेखला इन्हीं कान्पा योगी की शिष्याएं हैं, जो इंद्रजाल, जालंधरी, सांवरी विधाओं की प्रबल ज्ञाता हैं। मैनावती ने अपनी अवंती यात्रा में पुत्र गोविंद चंद्र को साथ नहीं लिया, अपितु नखला मेखला उनके साथ थीं। उज्जैनी में राजा भर्तहरि अपनी भगिनी की आतुर प्रतीक्षा कर रहे थे।
1: कब आएगी मेरी प्रिय भगिनी मैनावती? कब? कब मैं अपनी प्रतीक्षा तुत नेत्रों से उनका दर्शन सुख प्राप्त करूंगा?
0: अवंती में यूं तो सब सामान्य है, किंतु महामात्य जानते हैं कि कुमार की दृष्टि वैसिका पर है। वो वैसिका की दास मुक्ति को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। वैसिका को पाने के लिए उसने महारानी पिंगला के समक्ष अपनी इच्छा भी प्रकट कर दी है, किंतु महारानी तो स्वयं इस समय अपने जीवन की गुत्थी सुलझा रही है।
2: वैसिका
3: जी,
2: तो तुम्हारे अनुसार महाराज जब से लौटे हैं उन्होंने एक भी रात रानी पिंगला के शयन कक्ष में नहीं बिताई? इसका कारण ज्ञात करने का प्रयत्न किया तुमने?
3: महाराज को भोजन तो महादेवी ही परोसती हैं, पास बैठकर व्यंजन भी डुलाती हैं, किंतु मैंने देखा है कि दूसरा प्रहर लगते ही महाराज निज कक्ष में चले जाते हैं।
2: और मद्यपान?
3: महादेवी के प्रस्तुत करने पर वो अनिच्छा दर्शाते हैं।
2: अच्छा, इस अवसर पर वहाँ और कौन कौन होता है?
3: चंपा रहती है।
2: और बालकुमार?
3: वो देवी के कक्ष में होते हैं।
2: कुमार के प्रति देव का व्यवहार कैसा है?
3: वो क्षण मात्र कुमार के गाल थपथपाकर गहरी दृष्टि फेंकते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यदा कदा महादेवी उन्हें नरेश की गोद में भी दे देती हैं, तो वो औपचारिक चुंबन लेकर पुनः महादेवी को वापस कर देते हैं।
2: वैसे के
3: जी,

0: प्रतिदिन कुमार को देखती हो। महाराज और कुमार के रंग रूप में कितनी समानता लगती है तुम्हें?
1: देव, उतनी ही जितनी पिता और पुत्र में होती है।
0: ओह,
1: जितनी होनी चाहिए। कुमार महाराज का ही तो अंश है। एक बात पूछूं देव?
0: तुम कुछ भी पूछ सकती हो। तुम ना होती तो स्यात मैं इस कठिन समय का सामना ही न कर पाता। वैसे कहा तुम मेरा साहस हो, किंतु इस राजवंश के प्रति अकलुष निष्ठा मेरे देह में रुधिर बनकर दौड़ रही है। अवंती की निष्ठा का मूल्य अगर मेरे प्राण हो तो भी मैं स्वीकार करूंगा।
1: प्राण? आप प्राण देंगे तो इस वैसिका का क्या होगा देव? सोचिए, क्या फिर उसे किसी बाजार में बिक्री के लिए खड़ा नहीं कर दिया जाएगा?
0: ये बात मुंह से फिर कभी नहीं निकालना। मेरे जीवन की अब केवल दो अभिलाषाएं हैं, भृतहरि के निष्कंटक राज्य में सुखी प्रजा और अपनी वैसिका की प्रसन्नता।
1: जानती हूं देव, यह भी जानती हूं कि मनुष्य का चाहा हुआ सदा नहीं होता, कभी होता है और कभी नहीं होता। मेरी माँ मुझे क्या बनाना चाहती थी और समय की एक आकस्मिक लहर ने आकर मुझे मनुष्य से बिक्री की वस्तु बना दिया, दासों के बाजार में लाकर खड़ा कर दिया।
0: तो क्या मनुष्य सब कुछ काल के निर्णय पर छोड़ दे? मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम मनुष्य को बलि मान रही हो या समय को।
1: तृण की भांति लहरों के थपेड़ों से इस तट पर आ लगी हूं देव। ये जानने की बड़ी इच्छा है कि मनुष्य और काल में से घटनाओं का नियंत्रक कौन है।
0: तुम नहीं जानती वैसिका कि कुछ समय से मैं अपनी धारणाओं को लेकर शंकित होने लगा हूं। बार बार मन होता है कि किसी से पूछूं, चर्चा करूं उससे जो मुझे और मेरी स्थिति को समझे, जिसके साथ मैं अपनी अक्षमता और दुर्बलता बांट सकूं। मेरे बंधु बांधव, परिचित और परिजन, यहां तक कि पुत्र और पुत्री से भी मेरा पद बड़ा है। वैसे कहा मैं केवल महामात्य बनकर रह गया हूं, मनुष्य जैसे मैं हूं ही नहीं। महामात्य पूर्ण रथ।
1: ये क्या आर्य, इस वैसिका को भूल गए? जो कहना है मुझसे कहें, मुझ पर विश्वास करें। मैं भले आपके प्रश्नों को सुलझा नहीं पाऊं, किंतु सुनूंगी, उन्हें मान दूंगी।
0: क्षमा करना वैसिका, मैं असावधान हो गया था।
1: नहीं देव, तन मन की आरोग्यता के लिए कभी कभी आंसुओं को भी मुक्त कर देना उचित होता है। आप तो जानते ही हैं कि मैंने आंसू बहाकर किसी भी स्थिति का सामना करने की सामर्थ अर्जित किया है। संभवतः द्वार के उस पार कोई है।
2: कौन हो तुम? यहां तक कैसे पहुंची? उत्तर दो।
3: कौन है? कक्ष में आओ।
2: क्षमा, क्षमा स्वामी, क्षमा।
3: ये अभिनय व्यर्थ है दासी, बताना ही होगा कि तू यहां तक पहुंची कैसे और क्यों आई, क्या सुना और क्या देखा। हाँ? और ये भी जान ले कि असत्य बोला तो तेरे प्रत्येक संबंधी की मृत्यु निश्चित है।
2: क्षमा, क्षमा देव, क्षमा।
3: नहीं बताएगी तो आधी घड़ी में मृदु भंगों के मध्य धकेल दी जाएगी। स्त्री को ऐसा कठोर दंड मैं नहीं देता, किंतु तेरा अपराध जघन्य है, तेरा अपराध क्षम्य नहीं। बता कि तेरा ये कार्य किसके द्वारा प्रेषित संचालित है।
2: देव, मैं दा...

0: दासी की नियत ही होती है बार बार मृत्यु। देव, मृत्यु का मुझे कोई भय नहीं है। मैं तो स्वयं मृत्यु की कामना करती हूँ। मेरी माँ भी एक दासी है, एक भाई और एक बहन है। मैं नहीं चाहती कि वह दासता का अभिशप्त जीवन जिए। देवी वयसिका की गुप्तचर्या के बदले में माँ, भाई और बहन को दासत्व से मुक्ति दिलाने का वचन दिया गया है।
1: किसने? कौन है वो? कोई राजन्य या राजपुरुष?
0: मैं राजपुरुष की सेवा में हूँ देव। कोई राजपुरुष ही मुझे यहाँ तक लाए हैं।
1: कौन है वो?
0: नहीं बता सकती देव, मेरे परिवार के प्राण संकट में पड़ जाएंगे।
1: सच बोलेगी तो स्याद बज भी जाए, चुप रहने पर तो सबकी दारुण मृत्यु निश्चित है स्त्री, और तू अपनी आंखों के सामने उन्हें मरते हुए देखेगी। संवारक।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: इस स्त्री को गुप्तल्प से कूटागार ले जाकर जीवक को सौंप दो। कहना माँ आते वहीं पहुंचेंगे।
3: चलो।
0: नहीं, चलो। क्षमा देव।
3: चलो मेरे
0: क्षमा।
3: साथ। आओ।
0: देव।
3: चलो। चलो। चलो।
4: कुछ कहूं देव? स्त्री को निर्वसन कर भ्रंग्रह में खड़ा कर देना अनैतिक क्रूरता नहीं है क्या?
1: राजधर्म बहुत कठोर और निर्दय होता है वैसिका। दंड व्यवस्था का अनिवार्य अंग है। दंड शास्ति प्रजा सर्वे, दंड एवा भिरक्षिता। शासन भी करता है दंड और रक्षा भी। कर्तव्य के प्रति सजगता में उसकी केंद्रीय भूमिका भी है।
4: दंड शक्तिशाली का साधन बनकर निर्बल पर प्रहार नहीं करता, स्वतंत्रता को नहीं छीनता। ये साधारण स्त्री राजद्रोह का दंड भोगेगी। क्यों? केवल इसलिए कि उसने अपने परिवार के लिए सामान्य मनुष्य की भांति जीने की कामना की है, और वो व्यक्ति सुरक्षित बने रहेंगे जिन्होंने उसे एक साधन की भांति प्रयुक्त किया।
1: मैं जानता हूं, किंतु राजधर्म।
4: फिर आपका ये राजधर्म केवल छलना है। ये मनुष्य के आंसुओं के प्रति अंधा और विलाप के प्रति बधिर बना देता है।
1: वैसिका, तुम इस राज्य में दासी बनकर आई, अनादर और उपेक्षा सहन करती रही। आज भी अनेक आंखें तुम्हें ईर्ष्या और संदेह से देखती हैं। तब भी क्या तुम अपने किसी व्यक्तिगत सुख या प्रलोभन में महारानी पिंगला को कठिन परिस्थितियों में छोड़ सकती हो? अपने धर्म पिता भास्कराचार्य से मुंह मोड़ सकती हो? मैंने तो इस पवित्र भूमि पर जन्म लिया है, इसने मुझे राज्य के सर्वोच्च पद पर बिठाया है। इस राज्य के विरुद्ध किसी भी गतिविधि, किसी भी दोषी के प्रति मैं सदैव नहीं हो सकता। व्यक्तिगत स्तर पर दया स्वीकार की जा सकती है, किंतु राजधर्म उसकी अनुमति नहीं देता।
4: देव, मेरा एक निवेदन स्वीकार करेंगे?
1: कहो तो।
4: मैं उस भ्रंग गुहा को देखना चाहती हूँ जहाँ इस दासी को भेजा जाना है।
1: ना ही देखो तो अच्छा है।
4: क्यों?
1: तुम तो ये भी नहीं जानती कि ये भ्रंग गुफा इस पूर्ण रथ की कल्पना है। राज्य के हित में पूर्व कल्पनाएं करना राजनीति का अंग है वैसिका। उन कल्पनाओं में हमारी दृष्टि प्रजा पर नहीं होती, प्रजा हित को राजहित के तराजू पर तोला जाता है।
4: मैं आपकी क्रूर रचना को देखना चाहती हूँ।
1: सहन नहीं कर पाओगी, तुम्हारा हृदय इतना कठोर नहीं हो सकता है।
4: मैंने अपना संसार उजड़ते देखा है देव, इन आंखों ने अपनी माँ की हत्या भी देखी है।
1: तो फिर चलो।

ये गुप्त मार्ग राजा सहित केवल 5 व्यक्तियों की जानकारी में है। 15 भटकावों वाले इस मार्ग के भीतर पहुंचा व्यक्ति जीवित बाहर नहीं निकलता। मैं पहले प्रवेश करता हूं, तुम पीछे आकर मेरा हाथ पकड़ लेना। भीतर अंधेरे में दृष्टि नहीं,

0: ज्ञान और अनुमान ही साथ देता है। अरे तुम हंस रही हो वैसे का?
1: बहुत रो चुकी हूं महामात्य, अनेक के आगे और निपट एकांत में भी। इस अंधेरी की कृतज्ञ हूं कि यहां मैं मुक्त होकर हंस सकती हूं, जोखिम की उन घड़ियों में गुप्त और अंधेरे रास्ते पर, जहां कोई भी भूल या प्रमाद हमारा अंतिम आवरण बन सकती है। अंधेरे के ये क्षण बहुमूल्य हैं। अब आगे चलें, लाइए हाथ दीजिए।
0: मेरी और तुम्हारी व्यय में पूरी एक पीढ़ी का अंतर है वैसिका।
1: इस समय मैं ना आपको देख पा रही हूँ, ना आप मुझे। यहाँ ना कृष्ण केशों का अस्तित्व है और ना सिद्ध केश ही दिखते हैं। यहाँ कितना चमकीला प्रकाश है।
0: सामने भ्रमर गुहा है, राजभवन के ठीक नीचे वन उत्थान से लगी हुई।
1: तो क्या सिंह आदि हिंस्र पशु भी वहाँ हैं?
0: राज्य और राजा की सुरक्षा के लिए इन्हें पालना पड़ता है वैसिका। वो मधुभ्रंग हो या फिर सिंह अथवा सैनिक, उन शिलाओं के बीच उड़ते हुए भ्रंगों को देखो। बस एक पत्थर किसी छत्ते पर फेंकना होता है और वो आक्रमण कर देते हैं। मनुष्य के निर्वस्त्र शरीर पर सहस्त्रों सहस्त्र विषैले टंक, रोम रोम पर।
1: कल्पनातीत पीड़ा भोगता होगा वो, अनुमान से परे। तो आप उस दासी पर भी यही प्रयोग करेंगे?
0: यदि उसने सत्य नहीं बताया तो।
1: मैं सोच भी नहीं सकती कि आप ऐसा भी कर सकते हैं।
0: देवी, मैं कह चुका हूं कि अवंती राज्य के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, यहां तक कि अपने प्राण भी।
1: क्या मुझे भी त्याग देंगे? आपने उत्तर नहीं दिया देव।

अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो प्रस्तुति का 19वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित।

कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार सुभाष सक्सेना, भर्तृहरि अरविंद बिलगैया, मैनावती दिव्या पवार, हड़िप्पा सौलत सईद खां, वैसिका प्रमिला दिवाकर, दासी ममता चोपड़ा और महामात्य अरशद इकबाल।

0: परिकल्पना, पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ढोंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप।
1: प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाग्य प्रतिकूल होने पर भी कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जिस प्रकार एक कुशल नाविक समुद्र के बीच में जहाज टूटने पर भी उम्मीद नहीं छोड़ता बल्कि तैरकर जीवित रहने का प्रयास जारी रखता है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। सावन माह का पहला सोमवार राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया है। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की श्रावण भादवत सवारी के तहत आज पहली सवारी निकलेगी। सवारी पूजन के बाद शाम 4 बजे मंदिर से शुरू होगी और रामघाट पहुंचकर शिप्रा नदी से जलाभिषेक के बाद शाम 7 बजे वापस मंदिर लौटेगी। और प्रदेश में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने एक बड़े अंतर्राज्यीय तेंदुआ शिकार और वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। श्योपुर मुरैना क्षेत्र से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण।

बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का आज के स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। मैं हूं अर्चना सक्सेना और आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, कहते हैं कि संसार का सबसे अनमोल रिश्ता एक माँ और उसके शिशु का होता है। एक नवजात शिशु जब इस दुनिया में पहला कदम रखता है तो उसके लिए सबसे पहला स्पर्श, सबसे पहली सुरक्षा और सबसे पहला पोषण उसे अपनी माँ से ही मिलता है और प्रकृति ने इन तीनों का अद्भुत संगम माँ के दूध में दिया है। यही कारण है कि माँ के दूध को शिशु का पहला और संपूर्ण आहार कहा जाता है। श्रोताओं, माँ का दूध शिशु के लिए अमृत के समान है। इसमें वो सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक पोषक तत्व और अमीनो अम्ल होते हैं जो शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मौजूद पोषक तत्व शिशु के शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। इससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और वो नए वातावरण के साथ स्वस्थ रूप से सामंजस्य स्थापित कर पाता है। यही नहीं, माँ का दूध शिशु के स्वस्थ जीवन की सबसे अच्छी शुरुआत भी माना जाता है। इसीलिए विशेषज्ञ भी सलाह देते हैं कि जन्म के तुरंत बाद शिशु को स्तनपान कराया जाना चाहिए और जीवन के पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। इस दौरान किसी भी प्रकार के पानी या अन्य आहार की आवश्यकता नहीं होती है। श्रोताओं, स्तनपान केवल शिशु के लिए ही नहीं बल्कि माँ के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभदायक है। ये प्रसव के बाद माँ के शरीर को जल्दी सामान्य होने में मदद करता है और माँ और शिशु के बीच भावनात्मक जुड़ाव को और भी गहरा बनाता है। आज हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता तो बढ़ रही है श्रोताओं, लेकिन फिर भी स्तनपान को लेकर कई तरह की भ्रांतियां और गलत धारणाएं मौजूद हैं। कई बार सही जानकारी के अभाव में नवजात शिशु उस अमूल्य पोषण से वंचित रह जाता है जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इन्हीं बातों के महत्व को समझाने और जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य केवल माताओं को ही जागरूक करना नहीं है बल्कि पूरे परिवार और समाज को ये संदेश देना है कि स्तनपान केवल शिशु का अधिकार ही नहीं बल्कि उसके स्वस्थ, सुरक्षित और उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूत आधारशिला है। श्रोताओं, एक स्वस्थ शिशु की नन्ही सी मुस्कान पूरे परिवार के चेहरे पर खुशियाँ बिखेर देती है। उसकी किलकारी, उसकी मासूम हंसी और उसकी खिलखिलाहट जीवन का सबसे मधुर संगीत बन जाती है।

0: दोस्तों, आंखें हमारे शरीर की सबसे नाजुक और जरूरी अंग होती हैं, साथ ही उतनी ही संवेदनशील भी होती हैं। ऐसे में इनसे जुड़ी समस्याओं को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आंखों की किसी भी तरह की तकलीफ या परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। चलिए, तो आंखों के सामान्य और विशेष रोग क्या हो सकते हैं और उनका उपचार कैसे संभव हो सकता है, आज इस बारे में विस्तार से हम जानकारी लेते हैं डॉक्टर गजेंद्र चावला जी से। आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि बारिश का मौसम चल ही रहा है, तो इस समय में आंखों के क्या रोग हो सकते हैं या क्या सावधानियां इस मौसम में बरतनी चाहिए? जैसे कि आंखें लाल हो जाती हैं, कभी कभी आंखों में सूजन आ जाती है, आंखों में जलन होती है, तो क्या ये भी किसी तरह के कोई रोग के लक्षण होते हैं?
1: जी हाँ, बारिश का मौसम है, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई आंखों में जो बीमारियां हो सकती है उसके ऊपर भी हमें काफी ध्यान रखना चाहिए और सावधानी लेनी चाहिए। विशेषकर जब आंखों में, क्योंकि ये जो पानी होता है ये हम कितना भी बोले कितना साफ है लेकिन इसमें जर्म्स रहते हैं, तो इससे वायरल इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, जिससे आंखों में लाल हो जाती है, आंखों में दर्द होने लगता है, सूजन होने लगती है, पानी आने लगता है। तो ये एक वायरल कंजक्टिवाइटिस या वायरल इन्फेक्शन ऑफ आई का लक्षण होते हैं और इसके ऊपर हमको ध्यान रखने की जरूरत होती है। साथ ही कभी कभी हमारी आंख की पलकों में इस सीजन में टाई या जिसको हम सामान्य भाषा में गोरी बोलते हैं वो भी होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो इन दोनों बीमारियों में हमको रेगुलर ट्रीटमेंट कराना पड़ता है और आपको अपने नजदीक के नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और इसका समय पर उचित उपचार कराना चाहिए, अन्यथा ये आगे जाके थोड़ी सी आंखों को ज्यादा दिक्कत कर सकता है। कई बार मरीज जो होता है वो ओवर द काउंटर मतलब वो किसी भी मेडिकल स्टोर में जाता है और बोलता है मेरी आंखें लाल हो रही है, मेरे को इन्फेक्शन हो रहा है, दवाई दे दें, तो वहीं से वो एक दवाई ले लेता है जो कई बार घातक हो सकती हैं, जिसका दुष्प्रभाव हो सकता है। तो मेरा अपने श्रोताओं को सलाह रहेगी कि वो अपने आप ट्रीटमेंट न करें, अपने नजदीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ से इसके बारे में सलाह लें।
0: डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई जो सामान्य तरह की तकलीफें होती है आंखों में, मोतियाबिंद जैसे कि कैटरेक्ट कहते हैं हम, वो क्या होता है और किन कारणों से होता है?
1: देखिए, मोतियाबिंद जो है बहुत कारणों से हो सकता है, पर जो सामान्यतः या विशेषतः जो कारण रहता है वो उम्र के कारण होता है। क्या होता है कि जब हम अगर हमारे आंख की कल्पना करें तो एक कैमरे से तुलना की जा सकती है, जैसे कैमरे में आगे लेंस होता है और पीछे फिल्म होती है, वैसे ही आंख के बाहर हिस्से में एक लेंस होता है जो सभी की आंखों में रहता है और वो हमारी जो जिस चीज को हमको देखना होता है उसकी इमेज को, उसकी से निकलने वाली किरणों को हमारे रेटिना पर फोकस करने में मदद करता है। इसके जो प्रोटीन्स होते हैं वो किसी भी कारण से जो है वो डीनेचर्ड हो जाते हैं या उसकी जो ट्रांसपेरेंसी, उसकी जो पारदर्शिता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो जो लाइट अंदर जानी होती है वो लाइट जा नहीं पाती है और इस कारण से दिखना कम हो जाता है। यह एक सामान्य सी स्थिति है और जो पहले के जमाने में हम बोलते थे कि उम्र के कारण हो रहा है, 50 60 70 साल में हो रहा है, पर आजकल किसी भी उम्र में देखा जा सकता है, अर्ली एज में भी देख सकते हैं। बच्चों में कई बार ये पैदाइशी भी हो सकता है, चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, या कुछ बीमारियां होती है जैसे डायबिटीज वगैरह, उनमें भी इसका जल्दी होना भी एक सामान्य सी बात है। कुछ दवाइयां बाजार में प्रचलित है कि इससे हमारा मोतियाबिंद रुक जाता है, इससे डिले हो जाता है, सब भ्रांतियां है। मेरा सभी से यह सलाह है कि इस टाइप की भ्रामक चीजों से बचे और मोतियाबिंद का कोई इलाज नहीं है एक्सेप्ट ऑपरेशन। हाँ, आज के जमाने में ऑपरेशन बहुत सुविधाजनक हो गए हैं और पेशेंट की नीड बेस पे हो गए। नीड बेस से मतलब यह है कि जब मरीज को ऐसा लगने लगता है कि नहीं, मेरे को अब देखने में दिक्कत हो रही है और ये मोतियाबिंद की वजह से हो रही है, तो आज की जो आधुनिक पद्धति है जिसको हम लोग फेको इमल्सिफिकेशन या शॉर्ट में बोलते हैं फेको पद्धति, उसके द्वारा ऑपरेशन किया जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब, ग्लूकोमा भी आंख की एक बीमारी है, तो ये क्या होता है, क्या कारण है और इसका किस तरह से इलाज संभव है?
1: ग्लूकोमा एक आई प्रेशर की बीमारी है। जैसे हमारी बॉडी में हम लोग देखते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर है जिसको हम बोलते हैं कि 120 130 या 80 90 जो है वो नॉर्मल होता है, वैसे आंख का भी एक प्रेशर होता है जो 10 से लेके 21 तक का जो प्रेशर उसका मेजरमेंट होता है उसको नॉर्मल माना जाता है। यदि किसी भी कारण से ये आई प्रेशर बढ़ जाए, 21 से ज्यादा हो जाए, तो ये हमारे को ग्लूकोमा की तरफ इंगित करता है। लेकिन साथ में केवल 21 22 23 प्रेशर होना ही ग्लूकोमा नहीं होता, उसके साथ में कुछ और आंखों की जांच होती है, जैसे आंख के नस की जांच, आंख की पेरिमेट्री की जांच या ओसीटी की जांच, इनके द्वारा हम लोग ग्लूकोमा की स्थिति को निर्धारित करते हैं और फिर उस हिसाब से उसका उपचार करते हैं।
0: डॉक्टर साहब, आजकल कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में बहुत बढ़ गया है, हर एज ग्रुप का व्यक्ति कंप्यूटर पे काम करता है, चाहे वो जॉब वर्क हो या पढ़ाई का काम हो, बच्चों की मोबाइल का भी बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, तो क्या कंप्यूटर और मोबाइल इनके उपयोग से भी किसी तरह का नुकसान होता है आंखों को?
1: जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आज के जमाने में कंप्यूटर और मोबाइल सेंट्रिक गैजेट्स या एजुकेशंस हमारी जो दैनिक दिनचर्या का एक पार्ट हो गया है। अब जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि उसके जो कंप्यूटर के वर्ड्स होते हैं वो फ्लिकरिंग होते हैं, वो झलकते रहते हैं, उनको फोकस करने के लिए हमको लगातार देखना पड़ता है, या उसको अगर बोलने तो लगातार हम स्टीयर करके उसको देखते रहते हैं। उसके कारण से हमारी आंखों पर डेफिनेटली उसका दुष्प्रभाव आता है। पहला दुष्प्रभाव तो ये होता है कि हमारी आंखों की जो ब्लिंकिंग रेट है, पलक झपकाने की जो गति है, वो हम नहीं चाहते हुए भी हमारी वो कम हो जाती है। अब जब पलक झपका के हम आंखों को ड्राई होने से बचाते हैं, पर चूंकि हमारी पलक झपकाने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, वही कम हो गई है, तो हमारी आंखों में ड्राइनेस की टेंडेंसी बनती है। और दूसरा ऐसा होता है कि जब हम लगातार किसी भी चीज को देखते हैं तो उसको फोकस करने वाली जो मसल्स होती हैं वो लगातार काम करती रहती हैं, तो थोड़ी देर बाद उसमें फटिगनेस आ जाता है, तो उसके कारण से हमारी आंखों में थकान आती है। अगर हम इसको नज़रअंदाज कर दें तो ये हमारे को आगे जाके इससे हमारे को सिर दर्द हो जाता है। अब और चूंकि काम तो करना है, तो हम बचाव करने के लिए हमको हर 20 मिनट में 20 फीट की दूरी पर 20 सेकंड के लिए देखना चाहिए, कंप्यूटर से अपनी नज़रें हटाना चाहिए। दूसरा, हम हर 40-45 सेकंड के बाद हमारी आंखों को बंद करके हमारी हथेली से हल्का सा मसाज 1-2 मिनट के लिए करें। तीसरी बात, 1.5-2 घंटे के बाद हम लोगों को 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, और ये ब्रेक डिजिटल ब्रेक होना है। ऐसा नहीं कि हम कंप्यूटर से उठे लैपटॉप पे बैठ गए, लैपटॉप से उठे मोबाइल पे बैठ गए। हमको किसी भी तरीके से कंप्यूटर का यूज नहीं करना है 10-15 मिनट के लिए, और फिर से आप ऐसे 1.5-2 घंटे काम कर ले।
0: क्या कारण है कि आजकल हर दूसरे व्यक्ति को चश्मा लगा दिखाई देता है डॉक्टर साहब? क्या मोबाइल और कंप्यूटर ही एक खास कारण है?
1: कंप्यूटर और मोबाइल एक कारण जरूर है, यही एक खास कारण ये तो नहीं बोल सकता, क्योंकि जो नंबर आते हैं वो जेनेटिकली भी काफ़ी डिटरमिन होते हैं। अगर पेरेंट्स को चश्मा है तो बच्चों को भी आने की संभावना ज़्यादा रहती है, या कई बार ये अचानक से भी किसी बच्चे में आ जाता है, ये आंखों की बनावट के ऊपर निर्भर करता है।
0: डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और ये जानना चाहेंगे कि तो स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं 7-8 साल की उम्र के, उनको आंखों से कम दिखता है या किसी तरह की कोई तकलीफ होती है, तो वो क्या होता है?
1: एक्चुअली जो बच्चे होते हैं, एक तो चश्मे का नंबर तो एक सामान्य सी बात है, बच्चों में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर एक विशेष स्थिति के बारे में बात करना चाहूंगा जिसको हम लोग लेजी आई बोलते हैं। लेजी आई का मतलब होता है कि बच्चे को एक आंख से दिख रहा है और एक आंख से नहीं दिख रहा है। अब उनको पता ही नहीं रहता, क्योंकि हम लोग सामान्य तौर पर कोई भी बच्चे छोड़ो अपन बड़े भी कभी भी एक आंख को बंद करके चेक नहीं करते कि हमारी आंख की विजन कितनी है। केवल वही लोग जिनका प्रोफेशन, चाहे वो हम लोग मेडिकल डॉक्टर्स हों या पैथोलॉजिस्ट हों या जो घड़ी सुधार

0: करने वाले लोग हों जो या लैब में काम करने वाले लोग हों, वो एक आंख बंद करके चूंकि उनका प्रोफेशन है तो वो देख लेते हैं, बाकी सामान्य तौर पर एडल्ट भी नहीं देखता, बच्चे तो छोड़ की बात है। अगर बच्चों को एक आंख में चश्मे का नंबर है या कोई बीमारी है और उस आंख से उसको कम दिख रहा है तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसको कम दिख रहा है, और वो एक आंख से ही अपना पूरा जो भी उसकी रूटीन एक्टिविटी है वो कर रहा है, वो खेल भी रहा है, वो पढ़ भी रहा है और अपने को कभी ध्यान नहीं जाता। जब कभी अचानक किसी भी कारण से ये पता लगता है कि वो किसी चेकअप के लिए गया और वहां पता चला कि एक आंख से नहीं दिख रहा है, तब समझ में आता है कि इसकी तो एक आंख से नहीं दिख रहा और ये लेजी आई है या आलसी आंख है, जिसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में एम्ब्लियोपिया बोलते हैं। अब ये एम्ब्लियोपिया ऐसी बीमारी है कि ये बचपन से ही होती है जिसमें अगर किसी कारण से हुई है, और इसका इलाज पहले 8-10 साल 12 साल की उम्र तक ही होता है, क्योंकि जो रेटिना का डेवलपमेंट होता है वो 8-9 साल में हो जाता है, तो उसके पहले पहले ही इसका इलाज होना होता है। मेरे पास अपने अस्पताल में कई बच्चे आते हैं जिनको हम लोग ने 12-14 साल की एज में भी पकड़ा है कि उनको एक आंख से दिख नहीं रहा है, उस समय उनका इलाज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं सभी पेरेंट्स को, स्पेशली जिनके बच्चे छोटे हों और अभी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं या जो भी 7-8-9 साल के हैं जो प्राइमरी लेवल पर पढ़ रहे हैं, उन पेरेंट्स से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने बच्चों का आई चेकअप एक बार आई स्पेशलिस्ट से या चश्मे की दुकान पर भी, चश्मे जो निकालते हैं चश्मे का नंबर ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं उनके यहाँ भी जाके चेक करा लें कि उनको दोनों आंखों से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है या उनको कोई चश्मे का नंबर तो नहीं है। क्योंकि अगर एक बार हम ये इस चीज को अगर हमने पहले 7-8 साल की एज में पकड़ लिया और हमने इसके लिए उनका प्रॉपर नंबर और प्रॉपर एक्सरसाइज करा दी तो हम उस लेजी आई की विजन को पूरी तरीके से रिकवर कर पाते हैं। पर अगर एक बार ये 12-14 साल की उम्र को क्रॉस करने के बाद पता चला तो थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको रिकवर करना, और 15-17 साल के बाद तो लगभग असंभव सा हो जाता है। तो जितने भी बच्चों का अभी एडमिशन स्कूल में हो रहा है या जो प्राइमरी सेक्शन में है, मेरे उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स से निवेदन है कि वो अपने बच्चों का आई चेकअप अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से जाकर जरूर कराएं।
1: क्या पौष्टिक आहार का भी आंखों की रोशनी से किसी तरह का कोई संबंध है?
0: पौष्टिक आहार तो एक सामान्य हमारी हेल्थ को ठीक करते हैं, हमारी जनरल बॉडी को पूरा ठीक करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे शरीर का हर अंग उससे, हमारी हर एक्टिविटी हमारी उससे प्रभावित होती है, तो उससे का में तो कोई दो राय नहीं है कि पौष्टिक आहार से हमारी चीज़ों को या आंखों की मसल्स को उसको सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर मैं एक उल्टी बात करूँगा कि जिन लोगों को माल न्यूट्रिशन है, जिन लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, जिन लोग प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं, उनमें स्पेशली जब हम रूरल एरिया में देखते हैं या मालनरी एरिया में देखते हैं जहाँ पर डाइट को लेके, जिसमें सामान्य खाने को लेके भी कुछ समस्याएं हैं, वहाँ पर हमने जरूर कॉर्निया से रिलेटेड या आँख की जो बाहर की पुतली होती है उसके मरीज काफी होते हैं। उनको विटामिन ए की कमी भी होती है, उसकी वजह से भी दिक्कतें होती है, कॉर्निया में भी अल्सर हो जाते हैं जिसको हम जीरो ऑफ्थल्मिया बोलते हैं। तो इस टाइप की काफी बीमारियां होती हैं जो माल न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं।
1: डॉक्टर साहब, आजकल डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये बीमारियां बहुत ज्यादा सुनने में आती हैं, तो इन बीमारियों का भी क्या आंखों पर किसी तरह से कोई असर होता है?
0: यस, ये दोनों बीमारियां हमारी आंखों को बहुत गंभीर रूप से हमारे को प्रभावित करती है, स्पेशली डायबिटीज से। यदि आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से जो हमारी खान पान की दिनचर्या बदल रही है, जो अनुवांशिक कारण है या जो हम आजकल टेंशन की लाइफ ले रहे हैं, इसकी वजह से नंबर ऑफ डायबिटीज बढ़ते जा रहे हैं, और जितनी डायबिटीज बढ़ेगी और जितनी पुरानी डायबिटीज होगी, इसका दुष्प्रभाव हमारे पूरे शरीर पे पड़ता है, और आंखें भी उसका अपवाद नहीं है। जिन लोगों को डायबिटीज है और 8-10 साल से ज्यादा की डायबिटीज है, उनकी आंखों में बहुत गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यदि आपको शुगर है तो आप साल में एक बार अपने आंखों के पर्दे की जांच जरूर कराएं, चाहे आपको नजर से संबंधित कोई लक्षण हो या न हो, क्योंकि जब तक मरीज को ये पता चलता है कि मेरे को शुगर हो गई है और शुगर के कारण से आंखों में शुगर उतर गई है और उससे रोशनी खराब हो रही है, तो बहुत एडवांस स्टेज हो जाती है। इस बीमारी को बहुत प्रारंभिक अवस्था में पहचान के इसका इलाज करें तो बहुत आसानी से इलाज हो सकता है।
1: और हाइपरटेंशन यानी कि जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उससे किस तरह से प्रभावित होती है आंखें?
0: ब्लड प्रेशर भी हमारी आंखों में दुष्प्रभाव करता है। बेसिकली ब्लड प्रेशर बढ़ने का जो कारण होता है वो हमारी जो आंख की जो खून की नलियां हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल और उस टाइप के पार्टिकल्स, लिपिड पार्टिकल जाके जम जाते हैं, तो ये खून की नलियों का डायमीटर है वो कम होता जाता है, तो उसके कारण से हमारा जो ब्लड फ्लो है वो कंप्रोमाइज होता है। तो ये पूरे शरीर में हो सकता है, उसी की वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है, उसी की वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है, उसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उसी की वजह से आंखों में भी अगर उनकी खून की नलियों का दौरा बंद हो जाए तो आंखों की रोशनी जाने का खतरा रहता है। उसमें हमारे को आंखों में ब्लीडिंग हो सकती है, उसमें आंखों में खून आ सकता है, सूजन आ सकती है, या यदि खून के नली का दौरा बंद हो जाए तो हमारी आंखों की रोशनी अचानक से चली जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आई अटैक आया है, और उसको रिकवर करना मुश्किल काम है। अगर पेशेंट हमारे को 3-4 घंटे में हमारे पास रिपोर्ट कर ले तो फिर हम उसको फिर भी बचा सकते हैं, नहीं तो लेट होने की स्थिति में

0: रोशनी जाने का खतरा रहता है।
1: एक सबसे जरूरी क्वेश्चन, आज के पॉल्यूशन के समय में एक आम व्यक्ति को अपनी आंखों की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए?
0: पॉल्यूशन से बचने के लिए दो तीन चीजों की विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत होती है। पहली बात, यदि हम बाहर जा रहे हैं और यदि हम चश्मा लगा लें, अगर हम पैदल भी जाएं या हम ड्राइव कर रहे हो, तो हमको चश्मा लगा के करना चाहिए। यदि नंबर का चश्मा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपन जीरो नंबर का चश्मा लगा लें। समय समय पर साफ पानी से अपनी आंख को धोते रहें, और यदि ज्यादा तकलीफ हो तो एक लुब्रिकेशन की ड्रॉप डालनी पड़ती है, पर वो मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से बात करने के बाद ही यूज करें। देखिए, आंखें जो है प्रकृति की एक अनमोल देन है, और इस खूबसूरत प्रकृति को निहारने के लिए ईश्वर ने हमें दी है। यदि हम इसका समय पर ध्यान रखेंगे, हम नियमित रूप से इसकी जांच कराएंगे, तो डेफिनेटली हम इसको बचा सकते हैं। इसको लेके लापरवाही न बरतें, कभी भी ओवर द काउंटर या मेडिकल स्टोर से जाके दवाई न लें, हमेशा ही अपन नेत्र रोग विशेषज्ञों से सलाह लें।
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं के लिए, और ये जानकारी निश्चित तौर पर श्रोताओं के लिए लाभकारी रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी हमने डॉक्टर गजेंद्र चावला से आंखों के सामान्य और विशेष रोग विशेष पर जानकारी ली। ये जानकारी निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके लिए लाभकारी रहेगी। और श्रोताओं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहकर, जानकारियां रखकर हम हमारे परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रह सकते हैं, और परिवार में जब सभी स्वस्थ और खुशहाल रहते हैं तो जीवन के हर पल का आनंद ले सकते हैं। चलिए इस पल को खुशनुमा बनाते हैं ये प्यारा सा गीत सुनकर।

श्रोताओं, टेक्नोलॉजी आज केवल हमारी सुविधाओं का ही माध्यम नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को भी पहले से अधिक स्मार्ट और कारगर सिद्ध कर रही है। ऐसी ही एक आधुनिक तकनीक है स्मार्ट इनहेलर, जो अस्थमा और COPD जैसे श्वसन रोगों के उपचार को और अधिक प्रभावी बना रही है। स्मार्ट इनहेलर सामान्य इनहेलर का ही उन्नत रूप है। इसमें लगा एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर ब्लूटूथ के माध्यम से मोबाइल ऐप से जुड़ जाता है। रोगी जब भी इनहेलर का उपयोग करता है, ये उसके उपयोग का समय और रिकॉर्ड सुरक्षित कर लेता है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि यदि रोगी दवा लेना भूल जाए तो मोबाइल ऐप उसे समय पर याद दिला सकता है। साथ ही डॉक्टर भी ये जान सकते हैं कि दवा का उपयोग नियमित रूप से हो रहा है या नहीं, जिससे उपचार को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। श्रोताओं, स्मार्ट इनहेलर कोई नई दवा नहीं है, बल्कि इनहेलर में जोड़ी गई एक आधुनिक डिजिटल तकनीक है। इसका उपयोग हमेशा चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए और ये पारंपरिक उपचार का कोई विकल्प भी नहीं है, बल्कि उसे अधिक प्रभावी बनाने का एक आधुनिक माध्यम है। तो श्रोताओं, तकनीक का उद्देश्य केवल सुविधा देना ही नहीं, बल्कि रोगियों को स्वस्थ जीवन जीने में भी मदद करना है। स्मार्ट इनहेलर इसी दिशा में स्वास्थ्य सेवाओं का एक महत्वपूर्ण और उपयोगी कदम है। श्रोताओं, ये तो थी एक ज़रूरी जानकारी और अब समय है आपसे विदा लेने का। चलते चलते आपसे यही कहेंगे, अपना ध्यान रखें, परिवारजनों का ध्यान रखें, अपने घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि घर के आसपास छतों पर यदि कूड़ा करकट होता है या गड्ढों में पानी भरा होता है तो वहाँ मच्छर पनपने लगते हैं, जो डेंगू और चिकनगुनिया मलेरिया जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो निश्चित तौर पर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। इस वादे के साथ आज अर्चना सक्सेना को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए ब्रजभान सिंह नरवरिया व साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं गणेश वंदना के साथ, तो लीजिए सुनिए ब्रजभान सिंह नरवरिया व साथियों के स्वर में ये गणेश वंदना।

ब्रजभान सिंह नरवरिया के स्वर में अभी आपने सुना चौकड़ी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। लीजिए अब सुनिए झूला गीत, स्वर ब्रजभान सिंह नरवरिया व साथियों का है।

ब्रजभान सिंह नरवरिया व साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना झूला गीत। इसी के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अशोक कुमार सोनी के गाए गीत और भजन। तो लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए ये भजन, स्वर अशोक कुमार सोनी का है।

अशोक कुमार सोनी के स्वर में अभी आपने सुना गीत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम, और इस गीत के बाद लीजिए अब सुन

अशोक कुमार सोनी के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आतिफ असलम की आवाज में लीजिए सुनिए फिल्म रेस का गीत। गीत समीर का है और संगीत है प्रीतम का।

फिल्म संगीत में इस समय आप सुन रहे हैं मोनाली ठाकुर की आवाज़ में फिल्म दम लगा के हईशा का गीत। गीत लिखा है वरुण ग्रोवर ने और संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल दतिया उपचुनाव में सातवें राउंड की मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह 3,295 मतों से आगे चल रहे हैं। उन्हें 31,437 वोट मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 28,141 वोट प्राप्त हुए हैं। मतगणना शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 15 राउंड में संपन्न होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन प्रेक्षकों की मौजूदगी में प्रत्येक राउंड के परिणाम जारी किए जा रहे हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को हुए मतदान में 157,473 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वहीं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। विधेयक का उद्देश्य भारतीय सांख्यिकी संस्थान को व्यापक वैधानिक ढांचा प्रदान करना है, ताकि यह सांख्यिकी विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त कर सके। सुरक्षित सड़कें, स्मार्ट तकनीकी, डिजिटल सुविधाएं और हरित परिवहन के विजन के साथ 11 और 12 सितंबर को इंदौर में यात्री परिवहन विजिट समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस समिट में देश भर के नीति निर्माता, परिवहन विशेषज्ञ, उद्योग जगत और निवेशक मिलकर भविष्य की मोबिलिटी का रोडमैप तैयार करेंगे। सावन माह का पहला सोमवार पूरे प्रदेश में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही भोपाल समेत प्रदेश भर के शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की श्रावण भादप्रद सवारी के तहत आज पहली सवारी निकाली जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: वहीं रायसेन जिले के ऐतिहासिक भोजपुर शिवधाम, नर्मदापुरम, जबलपुर, खंडवा एवं आगरमालवा सहित प्रदेश भर के शिवालयों में श्रद्धालु सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री पारस जैन का आज सुबह 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। पारस जैन कई बार उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। मध्य प्रदेश सरकार में उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 2005 से 2013 के बीच वे राज्य मंत्री के रूप में वन, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागों से जुड़े रहे। दिसंबर 2013 में उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वर्ष 2016 में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उन्हें ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। अब करते हैं मौसम का। प्रदेश में भारी बारिश का दौर फिलहाल थमा हुआ है। अगले 2 दिनों में अधिकांश जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि 4 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से 5 अगस्त से प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के बनखड़ी क्षेत्र में स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने निभौरा और करपा गांवों के बीच ओल नदी पर बने नए पुल का लोकार्पण किया। जबलपुर शासकीय आईटीआई में युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए ड्रोन पायलट प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है, जिसके पहले चरण में चयनित 30 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंडला कान्हा

टाइगर रिजर्व में रीवाइल्डिंग और वन्यजीव प्रबंधन के अध्ययन हेतु कर्नाटक का प्रतिनिधिमंडल 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचा और आगरमालवा जिले में सुरक्षा गार्ड पदों के लिए चयन शिविर आज से 12 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत 3rd स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भीखाभाई रबारी और मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ 3rd स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद चनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
3: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
1: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
4: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
1: ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5,00,000 से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
5: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
1: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने एक साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारम्भ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
6: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
1: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन

0: किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा जीएस पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरला, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धान और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्यौहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 2:30 हुए हैं। समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, जिसे हमने लिया है आपकी पसंद पर फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का। गीत में आवाज़ दी है कविता कृष्णमूर्ति ने, बोल जावेद अख्तर के हैं, संगीत आरडी बर्मन का है और पसंद है आप सभी श्रोताओं की। सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका अवंतिका, शिवालिका पारसमणि वाद्य, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल की। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और सूरज कुमार ढाक से। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म दिल तो पागल है का गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में। बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत है उत्तम सिंह का। लीजिए सुनिए।

गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले, आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में फिल्म यारा दिलदारा का ये गीत। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीत है जतिन ललित का।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में लीजिए अब सुनिए फिल्म जहर का गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में। बोल सईद कादरी के हैं और इसे संगीत से सजाया है रूप कुमार राठौर ने। पसंद है आप सभी श्रोताओं की बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी और प्रकाश वीर राजपूत की, डोंडी लोहारा बलौद से कमलेश जयपुरिया की, टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रदीप पिंकी और प्रमिला, और जेल रोड रायसेन से लालचंद मिश्रा की। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म जहर का ये गीत।

रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लछनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म दीवाने का ये गीत, जिसे गाया है कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक ने, बोल समीर के हैं और इस गीत को संगीतबद्ध किया है संजीव दर्शन ने। लीजिए।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंकरों के बही खातों के साक्ष्य विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। सुरक्षित सड़कें, स्मार्ट तकनीकी, डिजिटल सुविधाएं और हरित परिवहन के विजन के साथ 11 और 12 सितंबर को इंदौर में यात्री परिवहन विजन समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। दतिया विधानसभा उपचुनाव में 8वें राउंड की मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह 6,583 मतों से आगे चल रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह में बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान सुनिश्चित किया जाए। सावन माह का पहला सोमवार पूरे प्रदेश में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही प्रमुख शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री पारस जैन का आज सुबह 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे और प्रदेश में बारिश का दौर फिलहाल थमा हुआ है। अगले 2 दिनों तक अधिकांश जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा समाप्त करने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति है। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। शाम 6:40 पर आप सुनेंगे आज कल। प्रादेशिक समाचार दर्शन का समय होगा शाम 6:45। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे शाम 7:21 पर। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा फरमाइशी लोकगीत और लोक रंग। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात 8:00। रात 8:15 पर सुनिएगा सुर्खियों में।

पब्लिक स्पीक आप सुनेंगे रात 9:30 पर। इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा और रात 10 से आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 अपने विविध कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे ब्रजभान सिंह नरवरिया और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। तो लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए ये गणेश वंदना।

कार्यक्रम लोक संगीत में इस समय आप सुन रहे हैं ब्रजभान सिंह नरवरिया और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। लीजिए अब सुनिए ये झूला गीत, स्वर ब्रजभान सिंह नरवरिया और साथियों का है।

इस लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे अशोक कुमार सोनी के गाए गीत और भजन। तो लीजिए, कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए अशोक कुमार सोनी के स्वर में ये भजन।

लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में लीजिए अब सुनिए फिल्म खट्टा मीठा का ये गीत। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

अखियों के झरोखों से। इस फिल्म का गीत सुनिए हेमलता की आवाज़ में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

चित्रपट संगीत का आखिरी गीत सुनिए जिसे हमने लिया है फिल्म सिलसिला से। आवाज़ें लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की हैं, बोल जावेद अख्तर के हैं और संगीत है शिव हरी का।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: दतिया उपचुनाव में 11वें राउंड की मतगणना के बाद कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह अपने निकटतम प्रत्याशी भाजपा के आशुतोष तिवारी से 12,221 मतों से आगे चल रहे हैं। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में और संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। सुरक्षित सड़कें, स्मार्ट तकनीकी, डिजिटल सुविधाएं और हरित परिवहन के विजन के साथ 11 और 12 सितंबर को इंदौर में यात्री परिवहन विजन समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह में बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान सुनिश्चित किया जाए। सावन माह का पहला सोमवार पूरे प्रदेश में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही प्रमुख शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया है और प्रदेश में भारी बारिश का दौर फिलहाल थमा हुआ है। अगले 2 दिनों तक अधिकांश जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: आपकी दोस्त आफरीन बानो। सामईन, हिंदुस्तान की असल पहचान उसकी रंगारंग तहजीब, मुतनव्वो सकाफत और सदियों पर मुहित लोक रिवायतों में पोशीदा है। लोक रिवायतें हमारे रस्म व रिवाज, मेलों, त्योहारों, कहानियों और इंसानी रिश्तों को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करती आई हैं। उर्दू अदब, खुसूसन उर्दू कहानी ने इन रिवायात को निहायत खूबसूरती से अपने दामन में समेटा है। देहात की सादगी, लोकगीतों की मिठास, त्योहारों की रौनक, बुजुर्गों की हिकमत और अवामी जिंदगी की खुशबू उर्दू कहानियों को एक मुनफरिद रंग अता करती है। यही वजह है कि उर्दू कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं सुनाती, बल्कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की जिंदा तस्वीर भी पेश करती है। आइए इसी खूबसूरत मौजू हिंदुस्तानी लोक रिवायात के उर्दू कहानी में रंग पर मुश्तमिल एक फिक्रंगेज तकरीर सुनते हैं। मुकर्रर हैं मोहम्मद आजम।
1: सबसे पहली बात तो ये कि हम समझें कि लोक रवायत क्या है। इसे अंग्रेजी में फोकलोर कहते हैं और ये इस्तलाह 1884 में विलियम जॉन्स थॉमसन ने दिया था। अब आइए देखते हैं कि लोक रवायत क्या चीज़ है। लोक के माने होते हैं आवाम, लोग, खिलकत, और रवायत के माने होते हैं नकल करना, हिकायत, किस्सा बयान या किसी बात को दूसरे तक पहुंचाना। इस तरह इसका बुनियादी मफहूम आवाम में ज़बानी तौर पर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले किस्से, कहानियाँ, लोकगीत, मुहावरात, रस्म व रिवाज और अकायद का मजमुआ है जो किसी ख़ास सकाफत की निशानदही करता है, अक्कासी करता है और तहरीरी शक्ल के बजाय लोगों के दिलों और ज़बानी बयान में महफूज होता है। इसे अवामी अदब या लोक वर्षा भी कहते हैं। इस तरह लोक रवायत अवामी कहानी या लोक कहानी या फोल्कलोर की सूरत में होती है जिसमें बुजुर्गों के तजुर्बात, जिंदगी के हकायक, सकाफती अकदार और मकामी अकायद शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर देहात के लोक गीत या इस्तलाह सबसे ज्यादा मशहूर है। शादी ब्याह के गीत, लोरी, कहानियां, मुहावरे और कदीम किस्से शामिल होते हैं जो ज़बानी तौर पर मुंतकिल होते हैं। इसकी तहरीरी सूरत नहीं होती और इसको पहली बार किसी ने बयान किया है वो कौन है इसे पता लगाना नामुमकिन होता है। गोया लोक अदब की बात सामने आ गई, मगर इसमें जो लाहिका अदब का लगा हुआ है उसको भी देखने की ज़रूरत है कि आखिर अदब किसको कहते हैं। अदब की तारीफ क्या होती है? एक नाकिद के मुताबिक अदब उस तहरीर को कहते हैं जिसमें रोज़मर्रा के ख्यालात से बेहतर ख्यालात और रोज़मर्रा की जबान से बेहतर जबान का इजहार होता है। अदब इंसानी तजुर्बात का निचोड़ होता है। इस तरह लोक अदब या लोक कहानी जबानी रवायत है जिसका माखुस आम लोगों की जिंदगी और तजुर्बात होते हैं, जबकि आम कहानी, जिसको हम आम अदबी कहानी कह सकते हैं, एक मुसन्निफ की तख्लीक शुदा होती है। लोक कहानी का खास मकसद सकाफत और अखलाक सिखाना है। आम कहानी का मकसद कुछ भी हो सकता है। लोक कहानी के किरदार आम लोग, देवता और देवी, मशहूर शख्सियात, खाली शख्सियात, तारीखी शख्सियात हो सकते हैं। आम कहानी में ऐसी शर्तें नहीं हैं। लोक कहानी की जबान जो है आम फहम और सादा और मुकामी लहजे में होती है, जबकि अदबी कहानी की मयारी और ज्यादा अदबी जबान होती है, उसके अलग उसलूब होते हैं। मुख्तसरन अगर कहें तो लोक रवायत से मुजयन कहानियां लोगों की होती हैं जो नस्ल दर नस्ल चलती हैं, जबकि आम अदबी कहानियां किसी खास शख्स की होती हैं और जो तहरीर की जाती हैं। तो क्या उर्दू अदब जो तहरीरी शक्ल में है सामने आया और उसमें लोक रवायत की गुंजाइश थी या नहीं? पहली सूरत में तो ऐसा ही लगता है कि उर्दू अदब में लोक कहानियां हैं ही नहीं, या अगर हैं भी तो बाकायदा उसकी दस्तावेजी सूरत की कमी है। किसी ने लोक गीतों पर उर्दू में किताब लिख दी, किसी ने गीतों के अलावा दिगर असनाब को ढूंढ ढूंढ कर जखीम किताब बना डाली, मगर क्या उर्दू वाले दावा कर सकते हैं कि वाकई ये उर्दू अदब का हिस्सा थे? और अगर थे तो उसको सदियों बाद क्यों दरियाफ्त करने की ज़रूरत पेश आ रही है? उर्दू जबान इब्तदा से ही तहरीरी सूरत में है और तहकीक को पुराने जमानों तक ले जाएं तो कदमा और असाज़ा के कलाम या फर्जी दास्तानों तक ही रसाई होती है, मगर वहाँ भी हिंदुस्तानी लोक अदब कम और अरबी और फारसी से मुस्तार लोक कहानियाँ ही ज़्यादा मिलती हैं। सारी तलमीहात और सारे ख्याली किस्से उर्दू में इन्हीं दो जबानों के मिलते हैं। हद तो ये है कि जो तमसीलात दी जाती हैं उन्हें हिंदुस्तानी लोगों ने शायद देखा भी ना हो, जैसे गुले सूसन, सर्व का दरख्त वगैरह। किस्से भी आम तौर से लैला मजनू, यूसुफ जुलेखा, जाम जम, रुस्तम सोहराब, शीरी फरहाद या फिर आतिश नमरूद, कोहेतूर, चाहे यूसुफ वगैरह के ढूंढने से हिंदुस्तानी लोक रवायत नहीं मिलती। बड़े नाकिदों ने भी इसे उर्दू जबान की कमायगी कहा है। वाकया यह है कि उर्दू ने उन्हें रायज अरबी फारसी तलमीहात या लोक रवायत को अपनी जबान में इस्तेमाल किया।

किया जिन्हें अरबी और फारसी अदीबों ने इस्तेमाल कर लिया था और बेहतर तरीके से कर चुके थे। ऐसे में उर्दू वालों की ये रविश महज तकलीद ही गर्दानी गई और शायद इसीलिए उर्दू अदब आलमी सतह पर इनफरादियत कायम करने से महरूम रह गया। अभी तो यूं ही लगता है कि अरबी और फारसी बड़ी बहनें हैं और उर्दू उनकी छोटी बहन, जो इन बड़ी बहनों के असर में इस तरह है कि उसको कुछ नया करने या नया सोचने की सूझती ही नहीं। माना कि उर्दू अदब हिंदुस्तानी लोक अदब से पूरी तरह आरी नहीं, मगर ऐसी क्या वजह थी कि इस कदर कमी पाई जाती है? तो क्या उर्दू अशराफिया की जबान है और सिर्फ अशराफिया की जबान बनी रही जिसका नजरिया लोक अदब के लिए तजहीक आमेज था? उर्दू की इब्तदा महलों से ही नहीं, गली कूचों से भी हुई थी। उर्दू जब दक्कन पहुंची तो वहां के अदब में हिंदुस्तानी लोक अदब का खासा जिक्र हुआ। अशार में हिंदुस्तानी लोक कथाएं, मसनियों में लोक कहानियां पेश की गई, मगर वली दक्कनी दिल्ली क्या आए, उर्दू को हिंदुस्तानी फिक्रियात से दूर पहुंचा दिया और अपने उस्ताद के मशवरे पर फारसी में कहे जा चुके मजामीन को उर्दू में पेश करना शुरू कर दिया और फिर फारसी रवायत का ऐसा गलबा हुआ जो आज भी जारी है। उर्दू वाले सोहनी महवाल नल दमयंती के बजाय लैला मजनू और शीरी फरहाद में उलझ गए। हिंदुस्तानी असातीरी और मजहबी किरदारों की जगह वो फारस और अरब के किस्सों को पेश करने लगे, जबकि हिंदुस्तानी लोक अदब या रवायत का दायरा बहुत वसीय था। यहाँ की देवमाली हकायतें, दास्तानें, देवी देवताओं के किस्से, अवामी रस्म रिवाज, खेल कूद, रक्स, मेले ठेले, पहेलियां, कहावतें, मुहावरे, चुटकुले और लतीफों का जखीरा था। उर्दू वालों ने इसे बहरे जुखार से चंद कतरे ही लिए। गालिब अमीर के कुछ एक अशार, क़िरातुल्लैन हैदर, इंतजार हुसैन वगैरह के नावल और कहानियों में हिंदुस्तानी लोक रवायत का मुस्तकम तस्करा मिलता है, मगर कम कम। अब हम ढूंढ ढूंढ कर इस पर किताब लिख रहे हैं या सेमिनार कर रहे हैं तो ये वैसे ही है कि अब पछतावे क्या होते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत। जो लोक अदब उर्दू का हो सकता था उसे दूसरी जबानों ने अपना लिया और ऐसा इसलिए हुआ कि फारसी और अरबी की महकूमियत ने उर्दू को अवामी से शहरी अशराफिया की जबान बना दिया। बहरहाल लोक अदब को माजी का आईना कहा जाता है जिसमें हम अपने अहद रफ्ता को देख सकते हैं और यह तहरीरी न होकर जबानी होता है जो सीना बसीना चलता रहता, ज्यादातर देही और कस्बाती जिंदगी की तर्जुमानी करता है। यहाँ पे मैं आपको लोक अदब के बारे में कुछ मशहूर अकवाल आपके सामने पेश करूंगा, उससे आपको अंदाजा होगा कि लोक अदब क्या चीज है। प्रोफेसर कमर अली साहब कहते हैं, उन्होंने जो किताब मुरतब की उर्दू में लोक अदब, उसमें वो कहते हैं कि लोक अदब और लोक गीतों की चंद मायूल इम्तियाज खसूसियात की तरफ इशारा किया जा सकता है। मसलन ये कि उनकी मुसन्निफ गुमनाम होता है, ये इनफरादी कम इज्तमाई जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। अक्सर ये गीत मेहनत कश अवाम की इज्तमाई तख्लीकी मेहनत के अमल में खल्क होते हैं और गाए जाते हैं। उनका आहंग किसी अरूजी कायदे के बजाय अवाम के एहसास मौसीकी का ताबे होता है। अवामी किस्सों के माखुज भी या तो अवाम के तल्ख व शीरीं तजुर्बात होते हैं या फिर मसाइब हयात से निजात पाने की अजली ख्वाहिश और एक बेहतर जिंदगी के ख्वाब होते हैं। लोक अदब आलमिया और हुस्निया भी होता है और तरबिया भी। ये अवाम के जहानत का तख्लीकी इजहार भी होता है और उनके तफरी और तफन्नुन का जरिया भी। इसमें हजी मजाक, ठिठोल, तंज व तारीज, मजहबी अकीदत, दुश्मनों से नफरत, वतन दोस्ती, मजाहिर फितरत से मोहब्बत, जिनसी जिबिलत और अलगरज हर तरह के जज्बात, एहसास और वारदात का इजहार होता है। अवामी अदब यानी लोक अदब से मुराद वो अदब है जिसको अवाम ने जन्म दिया कुचो बाजार में, करिए और देहात में, खेत और खलिहान में और आम तौर से। इस अदब का जन्मदाता कोई एक शख्स नहीं होता, पूरा मुआशरा होता है। वो कहानियाँ जो नानी दादी सुनाती हैं, वो गीत जो जाने अनजाने आपके होठ गुनगुनाने लगते हैं, वो बोल जिन्हें आप कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते मगर खेल कूद में दोहराते हैं, ये सब मुआशरे की देन है और उनका खाली कोई एक फर्द नहीं और अगर है तो गुमनाम है। ये प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब का कोट था जो आपके सामने मैंने पेश किया। बहरहाल उर्दू का खमीर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और बोलियों के आमेजा से तैयार हुआ है, इसलिए कई इलाकाई और बोलियों की लोक रवायत भी इसमें कम कम ही सही मगर है। उर्दू अदब खुसूसन शायरी को बामे उरूस तक ले जाने वाले मीर गालिब इकबाल, सौदा ज़ौक, मोमिन वगैरह वगैरह ने लोक अदब को बहुत कम बरता है। फिर भी उर्दू वाले नानी दादी की कहानियां सुनकर और लोरियां सुनकर बड़े हुए हैं। आज भी कानों में चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए बूर के, आप खाए थाली में, औरों को दे प्याली में, प्याली गई टूट, चंदा मामा गए रूट, या राजा के बेटी ऐसी थी, फूलों की माल जैसी थी, या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100-100 में लगा धागा, चोर कर भागा जैसी छोटी छोटी जो नज़में याद आती रहती हैं और वो परियों, भूतों, जिनों, राजाओं के किस्से कहानियां सुन सुनकर हम आगोशे नौम में के हवाले होते थे। अदब में भले कम सही मगर उर्दू वालों के दिलो जहन में अवामी रवायत कभी भी अनका नहीं हुई है न होगी। लोक अदब के सोते

0: वाह क्या खूबसूरत गजल थी। कृष्ण बिहारी नूर के अशआर जिंदगी की हकीकतों, इंसान के सुख दुख, उम्मीद, महरूमी और हौसले की ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो हर सुनने वाले के दिल में उतर जाती है। यही तो शायरी का हुस्न है कि वो चंद लफ्जों में पूरी जिंदगी का फलसफा समो देती है। और अब वक्त है आज की आखिरी पेशकश का। पेशी खिदमत है मारूफ शायर सलाहउद्दीन का खूबसूरत कलाम।
1: दर्द जब जब मिला जिंदगी से, दर्द जब जब मिला जिंदगी से, दर्द

रोशनी से शेर अर्ज है उसकी भोली अदा पे न जाना, उसकी भोली अदा पे न जाना, लूट लेता है वो सादगी से, लूट लेता है वो सादगी से, नफरतों की है चिंगारी दिल में, अरे नफरतों

से मख्तारज कर रहा हूँ। एक खुशबू सी आती है अनवर, एक खुशबू सी आती है अनवर, एक खुशबू सी आती है अनवर, जब गुजरता हूँ उनकी गली से, जब गुजरता हूँ उनकी गली से। दूसरी गजल का मतलब पेश खिदमत है।

मैं नजरों से मार देता हूँ, नजर मिला के मैं नजरों से मार देता हूँ। तू बुझ दिलों में न कर ना कभी शुमार मुझे, तू बुझ दिलों में न करना कभी शुमार मुझे। अरे गुनाहगार की

और मुझे मख्तार दे समझ सका न कभी उसका दर्द में अनवर, समझ सका न कभी उसका दर्द में अनवर, यही ख्याल रुलाता है बार बार मुझे। गजल का बदला दे अरे मौत।

देखना टुकड़े टुकड़े पारा पारा रेजा रेजा देखना करना दे जख्म जिगर को फिर शगुफ्ता देखना करना दे जख्म जिगर को फिर शगुफ्ता देखना जाते जाते आपका मुड़कर दोबारा देखना जाते जाते आपका मुड़कर दोबारा देखना।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम आईना, ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है, शाम के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक कामनी काय कांतारे की 19वीं कड़ी।
5: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 19वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा

0: अवंती राज में सिर उठाती अनेक समस्याओं पर महाराज भर्तहरि की उपस्थिति मात्र से जैसे विराम लग गया। कुमार विक्रम की उच्च श्रृंखलता भी सीमित हुई। जो सामंत और राज्याधिकारी नियंत्रणहीन हो गए थे, वो कछुए की भांति अपने आप को समेटकर आगत घटनाओं की प्रतीक्षा करने लगे हैं। महामात्य अभी भी आश्वस्त नहीं है। महाराज की अनुपस्थिति और कुमार विक्रम की गतिविधियों की सूचना महामात्य ने महाराज भर्तहरि की बहन मैनावती को भेज दी है, जो पालवंशी बंग नरेश मानिक चंद्र की मृत्यु के पश्चात शासन सूत्र संभाले हुए हैं और अपने पुत्र गोविंद चंद्र का पोषण और शिक्षण कर रही हैं। गोरखनाथ की शिष्या मैनावती अपनी भ्रमरी विद्या के कारण सुचर्चित है। विवाह के बाद की कुछ परिस्थितियां ही ऐसी बनी कि वो 17 वर्षों तक मायके नहीं आ पाई। इनमें से 15 वर्ष उन्होंने परित्यक्ता की तरह बिताए हैं। 10 वर्ष पूर्व भर्तहरि उनसे भेंट करने बन गए हैं।
1: दीदी, यहां रहने से तो अच्छा है कि तुम उज्जैनी चलो।
2: भाग्य की बात है भ्राता, और कोई भी किसी के भाग्य का साझा नहीं कर सकता। आज मेरे पास मायके का मान तो है, और वहां रहकर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो फिर यहां लौटकर भी नहीं आ सकूंगी। दोनों द्वार मेरे लिए बंद हो जाएंगे।
1: तो फिर कुमार गोविंद को ही मेरे साथ भेज दो।
2: उसका यहां रहना आवश्यक है, उसके अपने भविष्य के लिए भी और राज्य के कल्याण के लिए भी।
1: राजा मानिक चंद्र ने तो मर्यादा की सभी सीमाएं तोड़ दी हैं। 4 रानियों के अतिरिक्त सुनते हैं कि उनकी 180 सामान्य भार्याएं भी हैं।
2: किंतु अपना गोपी चंद्र अभी तक युवराज है। गुरु ने कहा है कि उसके युवा होते ही सब ठीक हो जाएगा। पटरानियों रानियों के समूह किस राज्य के अंतःपुर में नहीं है? तुमने पिंगला को छोड़कर किसी अन्य को महादेवी का पद नहीं दिया, किंतु दासियां तो तुम्हारे रनिवास में भी हैं, और अभी तुम्हारी आयु ही कितनी है? अभी लंबा जीवन शेष है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक कोई एक पत्नी व्रती नरेश दिखता है तुम्हें भैया?
1: पर राजा मानिक चंद्र, तुम्हारे होते हुए भी तो कई विवाह रचा सकते थे, तुम्हें त्यागने की आवश्यकता ही क्या थी?
2: आवश्यकता? आवश्यकता भैया, हर पुरुष में जन्म से ही भ्रमरवती होती है। एक फूल से दूसरा, तीसरा, चौथा, मधुलोलुपता उसकी तृष्णा को संतुष्ट नहीं होने देती, फिर अधिकार की अहमन्यता, वह सर्वत्र अपना अधिकार मानता है। मुझे त्यागना इसी अधिकार की अभिव्यक्ति है। अधिकार की उच्चता पुरुष में संदेह का बीजवपन करती है।
1: संदेह तुम पर दीदी, तुम पर? सूर्य की भांति प्रखर, दुग्ध धवल, प्रतिहार वंश में जन्मी तुम्हारे चरित्र पर संदेह? मैं इसे सहन नहीं कर सकता।
2: कुकर मत हो भाई, शांत होकर सुनो। संदेह का कारण होता है स्वयं पर विश्वास का अभाव। मनुष्य अपनी दुर्बलता को छुपाने के लिए कोई ना कोई ओट खड़ी करता है। एक सीमा तक मैंने सहन किया, फिर अपने पति के हर विवाह का विरोध करने लगी। मैं अकेली ही नहीं, उनकी हर पत्नी दुखी थी। अपने अपने दुख लेकर वो मेरे सामने रोती थी।

0: कुछ तो ऐसी थी जिन्हें एक ही रात पत्नी बनने का अवसर मिला था। कुछ और सुनना चाहोगे भैया?
1: हाँ दीदी, सब कुछ सुनना चाहता हूं। राज्य को संकट में छोड़कर इतनी दूर आया हूं, वहां एक ओर से चोल और दूसरी ओर चालुक्य ताक लगाए बैठे हैं। परमार भी हमसे ईर्ष्या रखते हैं। अवंती में तो बस महामात्य पूर्ण रथ का ही भरोसा है। पत्नी की मृत्यु का शोक भुलाकर वो राज्य की सेवा में पूर्ण रूपेण समर्पित हैं।
0: भाग्यशाली है अवंती, यहां बंगदेश की परिषद तो चाटुकारों से भरी है। प्रजा की भलाई के उपाय और उपकरण नहीं खोजे जाते। राजन्य वर्ग में हर कोई देह का दास है, भोग के अधिकाधिक साधन जुटाने में संलिप्त। मुझे ही क्या, किसी को भी ज्ञात नहीं था कि आदिनाथ शिव के शाप से संतप्त गुरु हड़प्पा हमारे ही राज्य महल में तिरस्कार योग्य व्रत के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक रात अचानक मेरी नींद टूट गई और मैं अनमनस्क सी राजमहल की छत पर पहुंची। मैंने उन्हें ध्यान मग्न देखा और आश्चर्यचकित हो गई।

0: अलौकिक आभा मंडल बना हुआ था। मेरी उद्विग्नता जाने कब तिरोहित हो गई उस अनहद नाद की तरंगों में। मैं आत्मविस्मृत होकर डूबने उतरने लगी। आनंद के अनंद आकर्षण में खिंचती हुई मैं योगी के चरण में जा गिरी। उनकी आंखें खुली और वो बोले,
1: देवी आप इस राज की राज महिषी हैं और मैं एक नगण्य भृत्य। मैं तो अपना शाप और पाप भोग रहा हूं, नहीं चाहता कि आप किसी संकट में पड़े।
0: प्रभु आप जो भी हो, किंतु मैंने अभी जिस आनंद का दर्शन और अनुभव किया है वो अभूतपूर्व था। मैं सदैव के लिए आपके अनुग्रह की याचक हूं।
1: देवी हट और उतावली कठिनाइयों का कारण बनती हैं। तुम्हारा पति बंग नरेश मानिकचंद्र मद और विलास के उस बियाबान में पहुंच गया है जहां केवल विनाश है। उसे वहां से निकालना और लौटाना तुम्हारा दायित्व है।
0: कुछ दिनों बाद मैंने अपने पति को बताया कि यहां भ्रत कर्म कर रहे वह महान योगी हाड़िप्पा हैं, जो आदिनाथ के श्राप से यहां चाकरी कर रहे हैं। इतना सुनते ही राजा मानिकचंद आवेश में आ गए। उन्होंने अपनी लात से मुझ पर प्रहार किया। उन्होंने मेरा संबंध योगी राज से आरोपित किया और मुझे त्याग दिया।

बंगाल के सोमपुर राज्य के पर्वतीय प्रदेश में कृष्णपाद अथवा कान्पा योगी की साधना भूमि है। वो मैनावती के गुरु भाई हैं और काव्य तथा तंत्र के महान ज्ञाता माने जाते हैं। नखला और मेखला इन्हीं कान्पा योगी की शिष्याएं हैं जो

0: इंद्रजाल, जालंधरी, सांवरी विधाओं की प्रबल ज्ञाता हैं। मैनावती ने अपनी अवंती यात्रा में पुत्र गोविंद चंद्र को साथ नहीं लिया, अपितु नखला मेखला उनके साथ थीं। उज्जैनी में राजा भर्तहरि अपनी भगिनी की आतुर प्रतीक्षा कर रहे थे।
1: कब आएगी मेरी प्रिय भगिनी मैनावती? कब मैं अपनी प्रतीक्षा तुत नेत्रों से उनका दर्शन सुख प्राप्त करूंगा?
0: अवंती में यूं तो सब सामान्य है, किंतु महामात्य जानते हैं कि कुमार की दृष्टि वैसिका पर है। वो वैसिका की दास मुक्ति को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। वैसिका को पाने के लिए उसने महारानी पिंगला के समक्ष अपनी इच्छा भी प्रकट कर दी है, किंतु महारानी तो स्वयं इस समय अपने जीवन की गुत्थी सुलझा रही है।
2: वैसिका
3: जी,
2: तो तुम्हारे अनुसार महाराज जब से लौटे हैं उन्होंने एक भी रात रानी पिंगला के शयन कक्ष में नहीं बिताई? इसका कारण ज्ञात करने का प्रयत्न किया तुमने?
3: महाराज को भोजन तो महादेवी ही परोसती हैं, पास बैठकर व्यंजन भी डुलाती हैं, किंतु मैंने देखा है कि दूसरा प्रहर लगते ही महाराज निज कक्ष में चले जाते हैं।
2: और मध्यपान?
3: महादेवी के प्रस्तुत करने पर वो अनिच्छा दर्शाते हैं।
2: अच्छा, इस अवसर पर वहाँ और कौन कौन होता है?
3: चंपा रहती है।
2: और बालकुमार?
3: वो देवी के कक्ष में होते हैं।
2: कुमार के प्रति देव का व्यवहार कैसा है?
3: वो क्षण मात्र कुमार के गाल थपथपाकर गहरी दृष्टि फेंकते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यदा कदा महादेवी उन्हें नरेश की गोद में भी दे देती हैं, तो वो औपचारिक चुंबन लेकर पुनः महादेवी को वापस कर देते हैं।
2: वैसे के
3: जी,
2: तुम प्रतिदिन कुमार को देखती हो, महाराज और कुमार के रंग रूप में कितनी समानता लगती है तुम्हें?
3: देव, उतनी ही जितनी पिता और पुत्र में होती है। जितनी होनी चाहिए। कुमार महाराज का ही तो अंश है। एक बात पूछूं देव?
2: तुम कुछ भी पूछ सकती हो। तुम ना होती तो स्यात मैं इस कठिन समय का सामना ही न कर पाता। वैसे का तुम मेरा साहस हो, किंतु इस राजवंश के प्रति अकलुष निष्ठा मेरे देह में रुधिर बनकर दौड़ रही है। अवंती की निष्ठा का मूल्य अगर मेरे प्राण हो तो भी मैं स्वीकार करूंगा।
3: प्राण? आप प्राण देंगे तो इस वैसिका का क्या होगा देव? सोचिए, क्या फिर उसे किसी बाजार में बिक्री के लिए खड़ा नहीं कर दिया जाएगा?
2: ये बात मुंह से फिर कभी नहीं निकालना। मेरे जीवन की अब केवल दो अभिलाषाएं हैं, भर्तहरि के निष्कंटक राज्य में सुखी प्रजा और अपनी वैसिका की प्रसन्नता।
3: जानती हूं देव, यह भी जानती हूं कि मनुष्य का चाहा हुआ सदा नहीं होता, कभी होता है और कभी नहीं होता। मेरी माँ मुझे क्या बनाना चाहती थी, और समय की एक आकस्मिक लहर ने आकर मुझे मनुष्य से बिक्री की वस्तु बना दिया, दासों के बाजार में लाकर खड़ा कर दिया।
2: तो क्या मनुष्य सब कुछ काल के निर्णय पर छोड़ दे? मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम मनुष्य को बलि मान रही हो या समय को।
3: तृण की भांति लहरों के थपेड़ों से इस तट पर आ लगी हूं देव। ये जानने की बड़ी इच्छा है कि मनुष्य और काल में से घटनाओं का नियंत्रक कौन है।
2: तुम नहीं जानती वैसे का कि कुछ समय से मैं अपनी धारणाओं को लेकर शंकित होने लगा हूं। बार बार मन होता है कि किसी से पूछूं, चर्चा करूं उससे जो मुझे और मेरी स्थिति

0: समझे, जिसके साथ मैं अपनी अक्षमता और दुर्बलता बांट सकूं। मेरे बंधु बांधव, परिचित और परिजन, यहां तक कि पुत्र और पुत्री से भी मेरा पद बड़ा है। वैसे कहा, मैं केवल महामाती बनकर रह गया हूं, मनुष्य जैसे मैं हूं ही नहीं। महामाते पूर्ण रथ,
1: ये क्या आर्य, इस वैसिका को भूल गए? जो कहना है मुझसे कहें, मुझ पर विश्वास करें। मैं भले आपके प्रश्नों को सुलझा नहीं पाऊं, किंतु सुनूंगी, उन्हें मान दूंगी।
0: क्षमा करना वैसिका, मैं असावधान हो गया था।
1: नहीं देव, तन मन की आरोग्यता के लिए कभी कभी आंसुओं को भी मुक्त कर देना उचित होता है। आप तो जानते ही हैं कि मैंने आंसू बहाकर किसी भी स्थिति का सामना करने की सामर्थ्य अर्जित किया है। संभवतः द्वार के उस पार कोई है।
2: कौन हो तुम? यहां तक कैसे पहुंची? उत्तर दो।
3: कौन है? कक्ष में आओ।
2: क्षमा, क्षमा स्वामी, क्षमा।
4: ये अभिनय व्यर्थ है दासी, बताना ही होगा कि तू यहां तक पहुंची कैसे और क्यों आई, क्या सुना और क्या देखा। हाँ? और ये भी जान ले कि असत्य बोला तो तेरे प्रत्येक संबंधी की मृत्यु निश्चित है।
2: क्षमा, क्षमा देव, क्षमा।
4: नहीं बताएगी तो आधी घड़ी में मृदु भंगों के मध्य धकेल दी जाएगी। स्त्री को ऐसा कठोर दंड मैं नहीं देता, किंतु तेरा अपराध जघन्य है, तेरा अपराध क्षम में नहीं। बता कि तेरा ये कार्य किसके द्वारा प्रेषित संचालित है।
2: देव, मैं दासी हूँ। दासी की नियति ही होती है बार बार मृत्यु। देव, मृत्यु का मुझे कोई भय नहीं है। मैं तो स्वयं मृत्यु की कामना करती हूँ। मेरी माँ भी एक दासी है, एक भाई और एक बहन है। मैं नहीं चाहती कि वह दासता का अभिशप्त जीवन जिए। देवी वयसिका की गुप्तचर्या के बदले में माँ, भाई और बहन को दासत्व से मुक्त दिलाने का वचन दिया गया है।
4: किसने? कौन है वो? कोई राजन्य या राजपुरुष?
2: मैं राजपुरुष की सेवा में हूँ देव। कोई राजपुरुष ही मुझे यहाँ तक लाए हैं।
4: कौन है वो?
2: नहीं बता सकती देव, मेरे परिवार के प्राण संकट में पड़ जाएंगे।
4: सच बोलेगी तो स्याद बच भी जाए, चुप रहने पर तो सबकी दारुण मृत्यु निश्चित है स्त्री, और तू अपनी आंखों के सामने उन्हें मरते हुए देखेगी। संवारक।
5: जो आज्ञा महाराज।
4: इस स्त्री को गुप्तल्प से कूटागार ले जाकर जीवक को सौंप दो। कहना महामात्य वहीं पहुंचेंगे।
5: चलो।
2: नहीं, क्षमा देव।
5: चलो मेरे साथ।
2: क्षमा देव।
5: चलो। चलो। चलो।
1: कुछ कहूं देव? स्त्री को निर्वसन कर भ्रंग्रह में खड़ा कर देना अनैतिक क्रूरता नहीं है क्या?
0: राजधर्म बहुत कठोर और निर्दय होता है वैसिका, दंड व्यवस्था का अनिवार्य अंग है। दंड शास्ति प्रजा सर्वे, दंड एवा भिरक्षिता। शासन भी करता है दंड और रक्षा भी। कर्तव्य के प्रति सजगता में उसकी केंद्रीय भूमिका भी है।
1: दंड शक्तिशाली का साधन बनकर निर्बल पर प्रहार नहीं करता, स्वतंत्रता को नहीं छीनता। ये साधारण स्त्री राजद्रोह का दंड भोगेगी, क्यों? केवल इसलिए कि उसने अपने परिवार के लिए सामान्य मनुष्य की भांति जीने की कामना की है, और वो व्यक्ति सुरक्षित बने रहेंगे जिन्होंने उसे एक साधन की भांति प्रयुक्त किया।
0: मैं जानता हूं, किंतु राजधर्म।
1: फिर आपका ये राजधर्म केवल छलना है। ये मनुष्य के आंसुओं के प्रति अंधा

0: और विलाप के प्रति बधिर बना देता है।
1: वैसिका, तुम इस राज्य में दासी बनकर आई, अनादर और उपेक्षा सहन करती रही। आज भी अनेक आंखें तुम्हें ईर्ष्या और संदेह से देखती हैं। तब भी क्या तुम अपने किसी व्यक्तिगत सुख या प्रलोभन में महारानी पिंगला को कठिन परिस्थितियों में छोड़ सकती हो? अपने धर्म पिता भास्कराचार्य से मुंह मोड़ सकती हो? मैंने तो इस पवित्र भूमि पर जन्म लिया है, इसने मुझे राज्य के सर्वोच्च पद पर बिठाया है। इस राज्य के विरुद्ध किसी भी गतिविधि, किसी भी दोषी के प्रति मैं सदैव नहीं हो सकता। व्यक्तिगत स्तर पर दया स्वीकार की जा सकती है, किंतु राजधर्म उसकी अनुमति नहीं देता।
0: देव, मेरा एक निवेदन स्वीकार करेंगे?
1: कहो तो।
0: मैं उस भृंग गुहा को देखना चाहती हूँ जहाँ इस दासी को भेजा जाना है।
1: ना ही देखो तो अच्छा है।
0: क्यों?
1: तुम तो ये भी नहीं जानती कि ये भृंग गुफा इस पूर्ण रथ की कल्पना है। राज्य के हित में पूर्व कल्पनाएं करना राजनीति का अंग है वैसिका। उन कल्पनाओं में हमारी दृष्टि प्रजा पर नहीं होती, प्रजा हित को राजहित के तराजू पर तोला जाता है।
0: मैं आपकी क्रूर रचना को देखना चाहती हूँ।
1: सहन नहीं कर पाओगी, तुम्हारा हृदय इतना कठोर नहीं हो सकता है।
0: मैंने अपना संसार उजड़ते देखा है देव, इन आंखों ने अपनी माँ की हत्या भी देखी है।
1: तो फिर चलो।

0: ये गुप्त मार्ग राजा सहित केवल 5 व्यक्तियों की जानकारी में है। 15 भटकावों वाले इस मार्ग के भीतर पहुंचा व्यक्ति जीवित बाहर नहीं निकलता। मैं पहले प्रवेश करता हूं, तुम पीछे आकर मेरा हाथ पकड़ लेना। भीतर अंधेरे में दृष्टि नहीं, केवल ज्ञान और अनुमान ही साथ देता है। अरे तुम हंस रही हो वैसे का?
1: बहुत रो चुकी हूं महामात्य, अनेक के आगे और निपट एकांत में भी। इस अंधेरी की कृतज्ञ हूं कि यहां मैं मुक्त होकर हंस सकती हूं। जोखिम की उन घड़ियों में गुप्त और अंधेरे रास्ते पर, जहां कोई भी भूल या प्रमाद हमारा अंतिम आवरण बन सकती है, अंधेरे के ये क्षण बहुमूल्य हैं। अब आगे चलें, लाइए हाथ दीजिए।
0: मेरी और तुम्हारी वय में पूरी एक पीढ़ी का अंतर है वैसिका।
1: इस समय मैं ना आपको देख पा रही हूँ, ना आप मुझे। यहाँ ना कृष्ण केशों का अस्तित्व है और ना सिद्ध केश ही दिखते हैं। यहाँ कितना चमकीला प्रकाश है।
0: सामने भ्रमर गुहा है, राजभवन के ठीक नीचे वन उत्थान से लगी हुई।
1: तो क्या सिंह आदि हिंस्र पशु भी वहाँ हैं?
0: राज्य और राजा की सुरक्षा के लिए इन्हें पालना पड़ता है वैसिका। वो मधुभ्रंग हो या फिर सिंह अथवा सैनिक, उन शिलाओं के बीच उड़ते हुए भ्रंगों को देखो। बस एक पत्थर किसी छत्ते पर फेंकना होता है और वो आक्रमण कर देते हैं। मनुष्य के निर्वस्त्र शरीर पर सहस्त्रों सहस्त्र विषैले टंक, रोम रोम पर।
1: कल्पनातीत पीड़ा भोगता होगा वो, अनुमान से परे। तो आप उस दासी पर भी यही प्रयोग करेंगे?
0: यदि उसने सत्य नहीं बताया तो।
1: मैं सोच भी नहीं सकती कि आप ऐसा भी कर सकते हैं।
0: देवी, मैं कह चुका हूं कि अवंती राज्य के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, यहां तक कि अपने प्राण भी।
1: क्या मुझे भी त्याग देंगे? आपने उत्तर नहीं दिया देव।

अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो प्रस्तुति का 19वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित।

कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार सुभाष सक्सेना, भर्तृहरि अरविंद बिलगैया, मैनावती दिव्या पवार, हड़िप्पा सौलत सईद खां, वैसिका प्रमिला दिवाकर, दासी ममता चोपड़ा और महामात्य अरशद इकबाल।

परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ढौंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

आपको याद होगा कि राजा भर्तृहरि महालय छोड़ देते हैं। उन्हें चारुमित्रा वापस अवंती लेकर आती हैं। इधर उज्जैनी में भर्तृहरि की बहन बंग देश की राजमाता मैनावती आई हुई हैं। मैनावती रानी पिंगला से भर्तृहरि की चिंता का रहस्य जानने का प्रयास करती हैं। अगले भाग में हम भी उस रहस्य से भिज्ञ होंगे।

नमस्कार। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलो हर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

दतिया उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने अपने निकटतम प्रत्याशी भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों के अंतर से हरा दिया है। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की 2 दिवसीय बैठक कल हैदराबाद में शुरू होगी। राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और विवाद समाधान को सरल बनाना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसमें आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए दोपहिया रोड एम्बुलेंस शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के भारोत्तोलन पदक विजेताओं को आज सम्मानित किया। भारतीय एथलीटों ने भारोत्तोलन के 11 भार वर्गों में

0: स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते हैं। इंदौर में 11 और 12 सितंबर को यात्री परिवहन विजन समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। सावन माह का पहला सोमवार पूरे प्रदेश में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश के अधिकांश जिलों में अगले 2 दिनों तक कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुने युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा वाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

हमारी राह भले ही कठिन और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, पर उसका आना अनिवार्य है। सुभाष चंद्र बोस की इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में, जहाँ आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सान्या आचार्य। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया के बारे में और चर्चा करेंगे ग्रीन मोबिलिटी और पर्यावरण संरक्षण की। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया की। दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश में नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देना है, नए उद्यमियों यानी कि एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहन करना है और भारत को नौकरी देने वाला यानी कि जॉब क्रिएटर्स देश के रूप में बदलना है। यह अभियान देश के युवाओं की प्रतिभा, क्षमता और रचनात्मकता को एक नई दिशा देने में मील का पत्थर साबित हुआ है। स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, युवाओं को अपने आइडियाज को व्यवसाय में बदलने के लिए प्रेरित करना है। आगे भी जानेंगे स्टार्टअप इंडिया के बारे में। अभी आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत दावत इश्क से सुनिधि चौहान और जावेद अली की आवाजों में।

दोस्तों जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में अभी आपने गीत सुना दावत इश्क से, संगीतकार साजिद वाजिद और गीतकार कौसर मुनीर। आप सभी सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सान्या आचार्य। इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे स्टार्टअप इंडिया के बारे में। दोस्तों स्टार्टअप इंडिया के बारे में अगर बात करें तो इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में अब हम जानते हैं, जैसे कि टैक्स में छूट, आसान पंजीकरण, सेल्फ सर्टिफिकेशन, फंडिंग में सहायता, पेटेंट और बौद्धिक संपदा यानी कि IPR में छूट। इसका पूरा लाभ आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम के साथ उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, स्टार्टअप केवल व्यापार का माध्यम नहीं है बल्कि ये देश की समस्याओं का अभिनव समाधान खोजने का सशक्त जरिया भी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जहां 100 से अधिक कंपनियों ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है। ये क्रांति केवल मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है दोस्तों, अब ये और भी शहरों में एग्रोटेक, एडटेक और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में नए बदलाव ला रही है। इस योजना के तहत महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय में वृद्धि हुई है, जिससे सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिला है। स्टार्टअप इंडिया योजना ने भारत के युवा मानस की सोच में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। आज भारत का युवा जोखिम उठाने और अपनी पहचान बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सही मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता और वित्तीय प्रोत्साहन के बल पर ये योजना भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में केंद्रीय भूमिका निभा रही है। तो अगर आप भी अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्टअप इंडिया में जरूर पंजीकरण करें। अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का अगला गीत सुपर 30 से श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाजों में।

श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाजों में अभी आपने ये गीत सुना सुपर 30 से। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार अजय अतुल। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं ग्रीन मोबिलिटी और पर्यावरण संरक्षण की। दोस्तों आज के दौर में बढ़ता हुआ प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा पारंपरिक वाहनों जैसे पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले धुएं से आता है। इस समस्या से निपटने और प्रकृति को बचाने के लिए ग्रीन मोबिलिटी यानी हरित परिवहन की अवधारणा एक उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। ग्रीन मोबिलिटी क्या है? ग्रीन मोबिलिटी का सीधा मतलब ऐसे परिवहन साधनों के उपयोग से है जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे वाहन आते हैं जो पेट्रोल डीजल की बजाय रिन्यूएबल एनर्जी जैसे प्रदूषण रहित साधनों पर चलते हैं। ग्रीन मोबिलिटी के मुख्य रूप आप देखेंगे जैसे ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी या हाइड्रोजन वाहन। और अब जानते हैं कि कैसे आप ग्रीन मोबिलिटी इस्तेमाल करके पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। आप कभी कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पास में जाना है तो पैदल चल सकते हैं और साइकिल से भी चल सकते हैं। ये सारी चीज़ें करके हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं प्रदूषण को रोकने की। ग्रीन मोबिलिटी केवल एक आधुनिक तकनीक नहीं है बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनिवार्य आवश्यकता है। यदि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ सुंदर और हरा भरा ग्रह सौंपना चाहते हैं तो हमें अपनी परिवहन की आदतों को आज से ही बदलना होगा, क्योंकि अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि अगर हमने ये सब बातों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में दूषित हवा, दूषित पानी, दूषित पर्यावरण हम अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंपेंगे जो हमारे

भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ग्रीन मोबिलिटी को लेकर कई अवेयरनेस आजकल लोगों में कराई जा रही है और आने वाले समय में ये एक लाइफस्टाइल का हिस्सा भी बनेगी। तो दोस्तों, हरित अपनाइए। हरित परिवहन अपनाकर ही हम हरित और सुरक्षित भविष्य की नींव रख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप भी अपने आसपास ग्रीन मोबिलिटी और पर्यावरण संरक्षण में लोगों में जागरूकता लाएंगे। अब सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का अगला गीत केदारनाथ से।

केदारनाथ से अभी ये गीत आपने सुना रिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज़ों में, संगीतकार अमित त्रिवेदी और गीतकार अमित त्रिवेदी। अब आपको सुनवाते हैं आज की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना। IBPS क्लर्क कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। रिक्त पदों की संख्या है 11,403। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21 अगस्त। अधिक जानकारी के लिए आप IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ये IBPS क्लर्क ने कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। रिक्त पदों की संख्या 11,403 है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 है। अधिक जानकारी www.ibps पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। अब सुनवाते हैं अगला गीत जब हैरी मेट सेजल से।

दोस्तों, इसी खूबसूरत गीत के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मैं आपकी रेडियो दोस्त सान्या आचार्य लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। माफ कीजिएगा, थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत का।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म दिल चाहता है का प्यारा सा गीत, जावेद अख्तर के बोलते हैं और शंकर एहसान लॉय का संगीत। और अब आपको सुनवा रहे हैं दबंग फिल्म का गीत, सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाज़ में इरफान कामिल का ये गीत है और संगीत साजिद वाजिद का।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सुल्तान फिल्म का गीत राहत फतेह अली खान की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल हैं और संगीत विशाल शेखर का।

0: अंकित को तिवारी और अरिजीत सिंह की आवाज़ में आप सुन रहे थे। एयरलिफ्ट फिल्म का गीत कुमार का गीत था और अंकित तिवारी का संगीत। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: शादी और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है। एवरग्रीन भी है, कहानीज एवर बीन टोल्ड।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बैतूल में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान कल्याण वर्ष में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों के अंतर से हरा दिया है। राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और विवाद समाधान को सरल बनाना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसमें आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए दोपहिया रोड एम्बुलेंस शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज FIR को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। इंदौर में 11 और 12 सितंबर को यात्री परिवहन विजन समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। सावन माह का पहला सोमवार पूरे प्रदेश में श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश के अधिकांश जिलों में अगले दो दिनों तक कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6 बजे हैं, लीजिए सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है।
2: वो लिखते हैं, रेडियो उद्घोषक और श्रोता का रिश्ता आवाज से शुरू होकर विश्वास, आत्मीयता और दिलों के जुड़ाव तक पहुंचता है। इसी आत्मीयता को हम उमंग कार्यक्रम में देख सकते हैं। यही जुड़ाव बना रहे।
1: जी हाँ श्रोताओं, यही जुड़ाव बना रहे, हमारी भी यही इच्छा है। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी सुनवाई जाती है। इसी कड़ी में श्रोता संवाद में सर अजीत जी और प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी से मनोदर्पण विषय पर बातचीत सुनी और पसंद आई।
1: आगे आपने लिखा है, कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सराहनीय लगी। इस जानकारी को सुनकर विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। श्रोता संवाद में मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी सुनवाने के लिए हम प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी एवं सर अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
2: एक निवेदन भी करते हैं कि ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित करें। किसी कारणवश ये कार्यक्रम श्रोता सुनने से वंचित रह गए हों तो वो भी इस कार्यक्रम को सुन सकें और कार्यक्रम सुनकर लाभ भी उठा सकें। एक बार पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और आदित्य जंघेल के साथ साथ अंजलि जंघेल जी का। आप लिखते हैं कि रेडियो की पहचान उसकी आवाज नहीं बल्कि श्रोताओं के दिलों से उनका जुड़ाव है। और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव लिखते हैं,
1: नियत स्टेशन से अगर हम उमंग कार्यक्रम नहीं भी सुन पाते हैं तो किसी न किसी

0: स्टेशन से जरूर सुन लेते हैं
1: जी,
0: क्योंकि ये आसपास के किसी न किसी स्टेशन से अलग अलग समयों में प्रसारित होता रहता है।
1: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान क्या है?
1: इसका उत्तर है साथियों, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
0: अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, श्री महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। वे महान देशभक्त और गांधी जी के अनुयायी थे।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि बिजली बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे?
1: इसका उत्तर है लगभग 10,000 बार।
0: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। श्रोताओ, हमने आपसे पूछा था अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है?
1: अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा।
0: और श्रोताओ, अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था अपनी किस पुस्तक में APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है?
1: साथियों, पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके शिक्षक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
0: तो श्रोताओ, ये थे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करके सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर जैसा कि आप जानते हैं, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। श्रोताओ, संदेश जरूर भेजिएगा।
1: जी, आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है मेरी माँ।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है। ये पाठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जेल डायरी का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माता जी की भूमिका को सराहा है।
0: मेरी माँ।

0: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
1: राम प्रसाद बिस्मिल के मुख से निकली इन पंक्तियों से भला कौन परिचित नहीं होगा। ये वो गीत है जिसे लगभग पूरा भारत गाता था।
2: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
1: इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों की रग रग में क्रांति की ज्वाला भर दी थी। इस गीत को गाते गाते न जाने कितने स्वाधीनता से

0: उनका नाम था राम प्रसाद, लेकिन बिस्मिल के उपनाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी उपनाम से उन्होंने बहुत सी देशभक्ति की कविताएं और गजलें लिखी। बिस्मिल का अर्थ होता है बेचैन या घायल। राम प्रसाद बिस्मिल एक लेखक, कवि और क्रांतिकारी थे, जिनका जीवन हमेशा देश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: वो कहते थे,
2: मेरा रिश्ता क्रांति और कलम दोनों से है।
0: बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के यहां हुआ था। वो बचपन से ही बहुत नटखट प्रवृत्ति के थे। उनका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। उन्हें तैराकी, कुश्ती जैसे खेल बहुत पसंद थे।
1: अपने बचपन और शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरे निज दिनों की छटा में लिखा है।
2: जब मैं कोई 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया और फिर एक मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया गया। वहां से मैंने 4th जमात पास की।
0: समय का पहिया चलता गया। उनके पिताजी पर स्वाधीनता संग्राम का बहुत प्रभाव था और शायद इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन उनकी माता के हस्तक्षेप के कारण उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भेज दिया गया।
1: बिस्मिल के जीवन में यदि हम गहराई से झांकें, तो पता चलता है कि वो अपनी माता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में अपनी माता की भूमिका को बहुत अहम माना है। वो मानते हैं कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो लिखते हैं,
2: 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उनमें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो भी घर पर आया करती थी, उनमें जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों के बाद वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी।
0: साथियों, उन दिनों समाज द्वारा स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिस्मिल की माताजी आज भी सब महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और आदर्श हैं।
2: मां तो मां होती है बस। ऐसे मेरी माता मेरे धर्म कार्यों और शिक्षादि में बड़ी सहायता करती थी। वे प्रातः 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था और यहीं से मेरी रुचि अध्यात्म और सत्य निष्ठा के प्रति बढ़ी। सच कहता हूं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो शायद मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता और सत्य के प्रति मेरा इतना अधिक अनुराग ना होता।
1: अपनी सत्यनिष्ठा के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है।
2: एक बार पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं।

0: मैंने तुरंत उत्तर दिया, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मामला खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव ना हुआ और ना ही मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में मैं हमेशा सत्य का आचरण करता था और चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य बात कह देता था।
1: तो ऐसी थी सत्यवादिता राम प्रसाद बिस्मिल की, और इस शिक्षा की नींव डाली थी उनकी माता जी ने।
2: पराधीन भारत में अपनी पीढ़ी के कई युवाओं की तरह राम प्रसाद बिस्मिल भी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से परेशान थे। माता की शिक्षा, श्रेष्ठ गुरुजनों की प्रेरणा और अनेकानेक देश प्रेम और अध्यात्म से ओतप्रोत साहित्य के अध्ययन ने उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी।
1: उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना जीवन देश की आजादी की लड़ाई में समर्पित करने का फैसला कर लिया। आठवीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल बहुत कम उम्र में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे।
2: नौ अगस्त 1925 को हुए काकोरी रेल कांड में वो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से छिपकर उसके अंशों को जेल से बाहर भेजते रहे।
1: उनकी आत्मकथा का शीर्षक था मेरे निज जीवन की छटा। आत्मकथा को उनके मित्रों ने प्रकाशित करवा दिया।
2: गोरखपुर जेल में लिखी गई आत्मकथा में उन्होंने अपनी माता को बड़े ही मार्मिक शब्दों में संबोधित किया है।
0: जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला, इस जन्म में तो क्या, मैं अनेक जन्मों में भी प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मां, तुम्हारी ही दया से तो मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी मां, पर मुझे विश्वास है तुम ये सब समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और तुम्हारी कोख कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा तुम्हारा बेटा। मां, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसके किसी पन्ने पर

काकोरी रेल कांड में उन पर मुकदमा चला और उनके साथ 3 और क्रांतिकारी साथियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माँ, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम राग शंकरा।
1: इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध राग शंकरा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके स्वर विस्तार, आरोह अवरोह, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में भी बताया गया है।

राग शंकरा। राग शंकरा की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है। इसके आरोह में ऋषभ और मध्यम अर्थात रे और म तथा अवरोह में केवल मध्यम यानी म वर्जित स्वर है। परंतु राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऋषभ अर्थात रे का प्रयोग कर्ण स्वर के रूप में किया जाता है। आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व शाड़व है। इसका वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर निषाद अर्थात नी है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग शंकरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए

राग शंकरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग शंकरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, हम आशा का दीप जलाएं। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम राग शंकरा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: सौम्या मलिक,
1: जगबंधु और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में पड़ोसन फिल्म का गीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और संगीत आर डी बर्मन का।

महबूब की मेहंदी, आइए सुनते हैं फिल्म का गीत। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल, विषय है मन की बात, जनता से संवाद करने का प्रमुख माध्यम। आलेख डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, अध्यक्ष मध्य प्रदेश योग आयोग, वाचन स्वर दीपा सिंह।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जनता जनार्दन को संबोधित किए जाने वाला मन की बात कार्यक्रम भारतीय जनमानस के साथ संवाद स्थापित करने का एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक माध्यम बन चुका है। अब तक इस लोकप्रिय कार्यक्रम के 136 एपिसोड सफलतापूर्वक प्रसारित किए जा चुके हैं, जिन्होंने देश के करोड़ों नागरिकों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया है। ये केवल एक रेडियो कार्यक्रम में प्रशासनिक वक्तव्य नहीं है, बल्कि देश के कोने कोने में बसे आम नागरिकों के पुरुषार्थ, समर्पण और जिजीविषा को सम्मानित करने वाला एक ऐसा जीवंत मंच है जो सीधा मन से मन को जोड़ता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री देश की जनता जनार्दन के मन की बात करते हैं, उनके अनुभवों, उपलब्धियों, विचारों को संपूर्ण राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करते हैं। मन की बात की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें हर उस व्यक्ति का सहर्ष उल्लेख होता है जो किसी न किसी रूप में देश की प्रगति और समाज कल्याण में अपना मौन योगदान दे रहा है, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, श्रम प्रबंधन, समाज सेवा हो या फिर महान बलिदान। इन सभी विधाओं के माध्यम से निस्वार्थ भाव से समाज का भला करने वाली अनगिनत विभूतियां इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के पटल पर उभरकर सामने आई। प्रधानमंत्री के द्वारा जब ऐसे असाधारण कार्य करने वाले साधारण लोगों का उल्लेख किया जाता है तो वे देखते ही देखते उल्लेखित लोग आम से बेहद खास बन जाते हैं। ये कार्यक्रम उन दूर दराज के क्षेत्रों और लोगों तक भी पहुंचा है जहां संभवतः शासन और प्रशासन की सामान्य पहुंच कभी नहीं हो पाती थी। इसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री ने जिन कर्मचारियों के नाम उल्लेख किया उनमें से अनेक गुमनाम और निष्ठावान विभूतियों को बाद में महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से पद्म पुरस्कारों और अन्य राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रत्येक उद्बोधन में एक दूरदर्शी विजन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये विजन देश के समग्र विकास, उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता, सनातन संस्कृति और प्रत्येक नागरिक के दायित्व बोध से गहरे तक जुड़ा हुआ है। मन की बात प्रधानमंत्री को देश के अंतिम व्यक्ति से सीधे भावनात्मक रूप से कनेक्ट करती है। यही कारण है कि हर महीने के अंतिम रविवार को देश और दुनिया भर में करोड़ों लोग उत्सुकता, श्रद्धा और ध्यान से उनकी बातें सुनते हैं। अब दूर दराज के गाँवों से भी लोग अपने मन की बात सीधे प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं। उन्हें भरोसा रहता है कि प्रधान सेवक मन की बात के अगले एपिसोड में उसे शामिल करेंगे, और ऐसा होता भी है। जनता जनार्दन द्वारा भेजी गई छोटी से छोटी बात तब अवश्य उनके उद्बोधन का हिस्सा बनती है जब श्री मोदी को लगता है कि इससे व्यक्ति, समाज या देश का भला होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्र भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो परीक्षाओं के कठिन समय में बच्चों से अभिभावक की तरह संवाद करते हैं। परीक्षा पे चर्चा और मन की बात के माध्यम से वे विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रहने और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने की प्रेरणा देते हैं। मन की बात की लोकप्रियता और प्रभाव का एक अनूठा उदाहरण मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है, जहां इस कार्यक्रम ने कई नए वैश्विक रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। मध्य प्रदेश में मन की बात को केंद्र में रखकर लगातार 100 घंटे तक चलने वाला एक अभूतपूर्व विशाल कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। दिन रात अनवरत चले इस 100 घंटे के मोहा आयोजन में 100 अलग अलग विद्वान वक्ताओं ने 100 विभिन्न राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम की विशिष्टता ये भी रही कि इसके प्रत्येक सत्र में कम से कम 100 नए श्रोता अनिवार्य रूप से शामिल हुए, जबकि पूरे आयोजन के दौरान जुड़ने वाले कुल लोगों की संख्या लाखों में पहुंच गई। संक्षेप में कहा जाए तो मन की बात महज एक प्रसारण नहीं, बल्कि ये 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प, सामूहिक शक्ति, राष्ट्र चेतना और सकारात्मकता का एक महाउत्सव बन चुका है। ये कार्यक्रम हमें याद दिलाता है कि जब एक राष्ट्र के रूप में हम मिलकर सोचते हैं, एक दूसरे के श्रेष्ठ प्रयासों की सराहना करते हैं और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हैं तो भारत की प्रगति की राह में कोई भी बाधा आड़े नहीं आ सकती। कार्यक्रम आजकल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल, विषय था मन की बात, जनता से संवाद करने का प्रमुख माध्यम। आलेख डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, अध्यक्ष मध्य प्रदेश योग आयोग, और वाचन स्वर दीपा सिंह का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन का।
0: भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल, विषय है मन...

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं नवनीत चौबे। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। आज के इस अंक में हम जानेंगे कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में शासन की योजनाएं किस प्रकार आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली खबर है रतलाम जिले से, जहां डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए जीवन धारा शिविर आयोजित किया गया। पेश है रतलाम से हमारी संवाददाता अदिति मिश्रा की यह रिपोर्ट।
1: रतलाम के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए जीवन धारा उम्मीद और नई शुरुआत लाया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से आयोजित इस शिविर में रतलाम सहित लगभग 9 जिलों के 97 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे और 250 से अधिक परिजन पहुंचे। शिविर में बच्चों को एक ही स्थान पर समग्र सेवाएं उपलब्ध करवाई गयी। नोएडा और गुरुग्राम से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। आवश्यक रक्त जांचों के साथ ही उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गईं। फिजियोथेरेपी, पोषण संबंधित परामर्श, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और भविष्य में थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए प्रीनेटल स्क्रीनिंग की जानकारी भी दी गई। जिन बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, उनके लिए मौके पर ही यह प्रक्रिया भी पूरी की गई। शिविर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही थैलेसीमिया के स्थायी इलाज यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की दिशा में उठाया गया कदम। मेदांता अस्पताल गुरुग्राम के हिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सत्य प्रकाश यादव और उनकी टीम ने 53 बच्चों और परिवार सहित कुल 102 HLA सैंपल एकत्रित किए। ये भविष्य में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस दौरान बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद स्वस्थ जीवन जी रही नन्ही बच्ची मनस्वी राव ने भी बच्चों और अपने परिवारों के साथ में सारा अनुभव साझा किया। इलाज के साथ ही बच्चों के लिए ड्रॉइंग प्रतियोगिता, मूवी शो और मनोरंजन की गतिविधियों का आयोजन भी किया गया। मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर अनिता मूथा ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य

0: केवल इलाज उपलब्ध करवाना नहीं बल्कि थैलेसीमिया प्रभावित बच्चों और परिवारों को ये भरोसा दिलवाना है कि इस संघर्ष में वे अकेले नहीं हैं। भारत की सरकार और पूरा ही चिकित्सा विभाग और मंत्रालय इस दिशा में लगातार स्थायी इलाज की पहल कर रहा है। समाचार दर्शन के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा।
1: हमारी दूसरी खबर है शाजापुर से, जहां जिले के सभी थानों में साइबर पुलिस हेल्प यूनिट स्थापित की गई है। शाजापुर पुलिस ने नागरिकों को त्वरित और स्थानीय स्तर पर साइबर सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल की है। अधिक जानकारी दे रहे हैं शाजापुर संवाददाता अजीत पाराशर।
2: देश भर में साइबर अपराधों की चुनौती को देखते हुए शाजापुर पुलिस ने नागरिकों को त्वरित और स्थानीय स्तर पर साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रियंका शुक्ला के निर्देशन में जिले के सभी थानों में साइबर पुलिस हेल्प यूनिट स्थापित की गई है। इसके लिए साइबर प्रशिक्षण प्राप्त आरक्षकों की प्रत्येक थाने में तैनाती की गई है, जो ऑनलाइन ठगी और अन्य साइबर अपराधों से जुड़ी शिकायतों के प्रारंभिक निराकरण के साथ लोगों को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन और साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता भी प्रदान करेंगे। नई व्यवस्था के तहत अब राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के प्रारंभिक निराकरण के साथ साथ CEIR पोर्टल के माध्यम से खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक कराने की प्रक्रिया भी संबंधित थाने में ही पूरी की जा सकेगी। इससे नागरिकों को साइबर सेवाओं के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और शिकायतों के निराकरण में तेजी आएगी। पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रियंका शुक्ला ने कहा कि
3: अभी तक हमारा जिला मुख्यालय पर ही साइबर सेल होता था, SP ऑफिस में एक, जिसमें जब भी साइबर ठगी का मामला किसी के साथ प्रकरण होता था तो वो जिला मुख्यालय तक आते थे। लेकिन अब जो साइबर अपराध की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए कि लगभग हर किसी के साथ साइबर अपराध का प्रयास किया जा रहा है और बहुत लोग इसका शिकार भी हो रहे हैं, इस चीज को देखते हुए प्रत्येक थाना पर हमारे द्वारा एक साइबर सेल की शुरुआत की गई है, जिसमें एक प्रशिक्षित आरक्षक को शाजापुर जिले के सभी थानों में पोस्ट किया गया है। जब भी कोई भी विक्टिम जिसके साथ साइबर अपराध हुआ है वह जल्द से जल्द थाने पहुंचकर अपनी रिपोर्ट कर सकता है, क्योंकि साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें आप जितना जल्दी रिपोर्ट करें आपका जो फ्रॉड अमाउंट है वो ब्लॉक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जब भी आपके साथ साइबर अपराध जैसी घटना हो तो 1930 पर जल्द से जल्द रिपोर्ट करें और नजदीकी थाने में भी सूचना दें।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजीत पाराशर की रिपोर्ट।
1: हमारी अगली खबर है सतना जिले से, जहां पुलिस द्वारा जिले में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाकर समस्त थाना क्षेत्रों में नशा मुक्ति जन जागृति कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सतना से हमारे संवाददाता लाल बहादुर तिवारी।
4: सतना पुलिस द्वारा जिले भर में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाकर जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में नशा मुक्ति जन जागृति कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली कुलगावां सिविल लाइन महिला थाना यातायात पुलिस द्वारा जिले के विभिन्न विद्यालयों महाविद्यालय सार्वजनिक स्थलों ग्रामों बस स्टैंड रेलवे स्टेशन तथा नशा मुक्ति केंद्रों में जन जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने नागरिकों विद्यार्थियों एवं युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों कानूनी प्रावधानों तथा नशा मुक्त जीवन के महत्व के संबंध में जागरूक किया गया तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग देने की अपील भी की गई। उपस्थित जनों को स्वयं नशे से दूर रहने अपने परिवार तथा समाज को भी प्रति जागरूक करने तथा नशे के अवैध कारोबार से संबंधित किसी भी सूचना को तत्काल पुलिस को जानकारी देने की बात कही गई। उपस्थित जन समुदाय को यह भी बताया गया कि जन सहभागिता से ही नशा मुक्त और सुरक्षित समाज का निर्माण संभव है। विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने तथा समाज में भी जागरूकता फैलाने की शपथ दिलाई गई। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अब हम चलते हैं रीवा जिले की तरफ, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी को विश्व स्तरीय वन्य जीव संरक्षण और इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक बड़ी विस्तार योजना स्वीकृत की है। विस्तार से जानकारी दे रही हैं हमारी रीवा संवाददाता आरती श्रीवास्तव।
5: उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने समीक्षा बैठक कर मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी को राष्ट्रीय स्तर का उत्कृष्ट वन्य जीव संरक्षण एवं इको टूरिज्म केंद्र बनाए जाने हेतु निर्देशित किया है। बैठक में वर्ष 2026-27 से 2045-46 तक की अवधि के लिए तैयार मास्टर प्लान में वर्तमान 121.99 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ 119.87 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करते हुए कुल 241.86 हेक्टेयर में सफारी के विस्तार का प्रस्ताव है। वन्य जीवों पशु पक्षियों के संरक्षण और देखभाल के लिए अधिक प्राकृतिक और खुले बाड़े बनाए जा रहे हैं ताकि जानवरों को तनाव मुक्त और प्राकृतिक माहौल मिले। सफेद बाघों और अन्य दुर्लभ प्रजातियों के

0: वंश संवर्धन के लिए विशेष संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा घायल, बीमार या अनाथ वन्य जीवों के तत्काल उपचार और पुनर्वास के लिए आधुनिक रेस्क्यू सेंटर तैयार किया जा रहा है। महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी एवं जू में सफेद बाघों के अलावा बंगाल टाइगर, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा, चीतल, सांभर, नीलगाय, ब्लैक बग, चौसिंगा, विभिन्न प्रकार के देसी व प्रवासी पक्षी एवं घड़ियाल, मगरमच्छ मौजूद हैं। साथ ही रंग बिरंगी बटरफ्लाई पार्क लोगों के खास आकर्षण का केंद्र है। पर्यटन की दृष्टि से ये टाइगर सफारी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलने से विंध्य क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव।
1: हमारी अगली खबर है सीहोर जिले से, जहां किसानों ने खरीफ फसल की बुवाई पूरी कर ली है। अधिक जानकारी दे रहे हैं सीहोर से हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान।
2: प्रदेश के टॉप 5 सोयाबीन उत्पादक जिलों में शामिल सीहोर जिले में खरीफ सीजन की फसलों की बुवाई का लक्ष्य किसानों ने 100% पूर्ण कर लिया है। मध्य प्रदेश में काला सोना यानी सोयाबीन के प्रचुर उत्पादन के लिए विख्यात सीहोर जिले में इस बार अल नीनो के प्रभाव के चलते हुई कम बारिश ने खरीफ सीजन की मुख्य फसल सोयाबीन को खासा प्रभावित किया है। इस बार खरीफ के सीजन में सीहोर जिला किसान एवं कृषि कल्याण तथा विकास विभाग ने 4,08,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सोयाबीन उत्पादन का लक्ष्य रखा था। इसमें लगभग 3,30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सोयाबीन की बोगनी की गई है। सोयाबीन के कम होते उत्पादन के चलते किसानों ने खरीफ के सीजन में मक्का और धान की बुवाई का रकबा भी सीजन में बढ़ाया है। ऐसे में प्रत्येक फुटबड़े से हो रही हल्की बारिश के चलते जिले के किसानों ने अपनी बुवाई का लक्ष्य 100% पूर्ण कर लिया है। किसानों का मानना है कि अंतिम दौर में हुई बारिश के कारण फसल खराब होने से जरूर बच गई है। जिले का सामान्य औसत बारिश 44 इंच का है। इस बार बारिश के सीजन में अब तक 26 इंच बारिश दर्ज की गई है। इस बारे में जिला किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के संचालक अशोक उपाध्याय ने बताया कि
3: इस बार खरीफ के सीजन में जिले में लगभग बुवाई पूर्ण हो चुकी है। जिले में इस वर्ष खरीफ के मौसम में कुल 4,08,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें 3,32,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर सोयाबीन की बुवाई की गई है। इसके अलावा धान 40,000 हेक्टेयर, मक्का 32,000 हेक्टेयर एवं अन्य फसलें बोई गई हैं। इस बार अल नीनो के प्रभाव से बारिश कम होने से फसलों की बुवाई पर भी इसका असर देखने को मिला है।
2: सीहोर जिले से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं प्रदीप सिंह चौहान।
1: अब हम रुख करते हैं शहडोल जिले की तरफ, जहां पर्यटन गतिविधियों के विस्तार के साथ अब स्थानीय युवाओं के लिए होटल, रेस्तरां, कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर बनाने का अच्छा अवसर दिया जा रहा है। पेश है शहडोल से हमारे संवाददाता अरविंद पांडे की यह रिपोर्ट।
4: शहडोल जिले के फ्रूट क्रॉप इंस्टीट्यूट का नया शैक्षणिक सत्र आज 3 अगस्त से शुरू हो गया। पहले चरण में 60 युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं को होटल, रेस्तरां, इवेंट मैनेजमेंट, रेलवे और एयरलाइन कैटरिंग सहित कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्थापित और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित यह संस्थान राष्ट्रीय होटल प्रबंधन व कैटरिंग टेक्नोलॉजी संस्थान नोएडा से संबद्ध है। ऐसे में शहडोल व आसपास के जिलों के आदिवासी व अन्य युवाओं को हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए अपेक्षाकृत कम लागत में व्यावसायिक प्रशिक्षण हासिल करने का अवसर मिल रहा है। संस्थान में 12वीं पास युवाओं के लिए 1.5 वर्ष का डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें 30 सीटें हैं और कुल प्रशिक्षण शुल्क 29,250 रूपए है। वहीं 10वीं पास युवाओं के लिए 6 महीने का क्रॉटमैनशिप सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड एंड बेवरेज सर्विस संचालित होगा। इसमें भी 30 सीटें हैं और शुल्क 15,000 रूपए रखा गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे।
1: हमारी अगली खबर है राजगढ़ से, जहां जिले की 14 ग्राम पंचायतों में बच्चों और युवाओं को तकनीकी दक्षता सिखाने के उद्देश्य से स्मार्टपुर केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे राजगढ़ संवाददाता कमल खस।
5: ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों एवं युवाओं को डिजिटल शिक्षा, तकनीकी दक्षता और आधुनिक सिखाने के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजगढ़ जिले की 14 ग्राम पंचायतों में स्मार्टपुर केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर 5 लैपटॉप उपलब्ध कराकर बच्चों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा, डिजिटल साक्षरता एवं आधुनिक तरीके से जोड़ने का कार्य किया जाएगा तथा पंचायत स्तर पर एक कम्युनिटी फैसिलिटेटर जो ग्राम पंचायत में ऑनलाइन से संबंधित समस्त कार्य करने के लिए उपलब्ध रहेगा। स्मार्टपुर केंद्रों का संचालन जिले के जनपद पंचायत नरसिंहगढ़, राजगढ़, खिलचीपुर, जीरापुर में किया जाएगा। इनमें चयनित पंचायतों में यह सुविधा लागू की जाएगी। नरसिंहगढ़ विकास खंड के अंतर्गत बिहार जामुनिया जोर एवं पाडलिया बना, राजगढ़ विकास खंड के अंतर्गत महाबल, हिरणखेड़ा, फूलखेड़ी, फूंदिया, खिलचीपुर विकास खंड के अंतर्गत

0: पखेड़ी, बावड़ी खेड़ा एवं दलूपुरा, जीरापुर विकास खंड के अंतर्गत कवालसी खेड़ा, राजपुरा, लखोनी आदि पंचायतें शामिल हैं। समाचार दर्शन के लिए कमल खस, राजगढ़।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम की 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में था। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने लोगों को धन्यवाद दिया और कहा की जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट जीत ली है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और विवाद समाधान को सरल बनाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने, भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा से के मुद्दे पर, छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर, गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज FIR को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 554 अंक बढ़कर 78,639 पर, जबकि निफ्टी 391 अंक की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता कल से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत इस BWF सुपर 300 प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में यानी 7:21 पर हम प्रसारित करेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8:00 दिल्ली से संसद समीक्षा प्रसारित होगी। 8:15 पर सुनेगा कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं रात्रि 8:30 पर। 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 10:00 पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश और 10:30 पर कार्यक्रम राग रजनी के अंतर्गत सुनेगा भुवनेश कोमकली का ख्याल गायन, राग होगा मियाँ के मल्हार।

और अब एक नज़र कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल सुबह आकाशवाणी भोपाल से 7:21 पर प्रस्तुत करेंगे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा आप सुन सकेंगे सुबह 8:30 पर। 9:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे आशुतोष पाठक के गाए गीत और भजन। 9:30 पर प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम शब्द सागर। दस बजे समय रहेगा जिले की चिट्ठी का। 10:05 पर पेश करेंगे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुबह 10:30 पर सुनेगा चैताली शैवलीकर का वायलिन वादन, राग होगा अहिर भैरव। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में 11:00 सुनेगा

फोन इन कार्यक्रम बाद आपकी गीत हमारे आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिन में 12 बजे और 2:30 पर। 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत सुनेगा कामनी काय कांतारे का 20वां भाग। दिन में 1 बजे होगा महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम और 1:45 पर सुनेगा सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये तीनों कार्यक्रम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र का योगदान होगा। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा वाणी। ये कार्यक्रम भोपाल केंद्र की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:30 पर और रात्रि 8:30 पर। शाम 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। 7:25 पर बुंदेली समाचार प्रसारित किए जाएंगे और 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे भेंटवार्ता। विषय रहेगा सोयाबीन फसल में समन्वित कीट एवं व्यापी प्रबंधन। जानकारी देंगे डॉक्टर देवेंद्र पाटिल और आपसे बातचीत करेंगी पूनम सराफ की। रात्रि 8 बजे होगी संसद समीक्षा दिल्ली से। 8:15 पर कार्यक्रम सुर्खियों में उर्दू प्रोग्राम कहकशा में आप सुनेंगे कव्वालियों पर केंद्रित कार्यक्रम महफिल समा। समय रहेगा रात्रि 9:30 और रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: तीनों कॉलेज में
3: डोंट वरी,
4: फीस तो देखो।
5: क्या हाल है, क्या हुआ?
3: फीस की टेंशन,
5: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
6: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
7: RBI कहता है
8: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को हराया। प्रदेश में श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा सावन माह का पहला सोमवार और अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल और नर्मदापुरम सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज बैतूल में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान कल्याण वर्ष में समृद्ध प्रतिबद्ध है और उन्हें समृद्ध बनाने के लिए प्रगतिशील है।

0: इस दिशा में निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।
1: मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हर एक क्षेत्र के अंदर किसान कल्याण की जो बेहतर हो सकता हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो हमने अपने इसी क्षेत्र के अंदर कोदो कुटकी को भी खरीद करके पहली बार एमएसपी पे हमने दाम दिलाने का प्रयास किया और बोनस अलग दिया। गेहूं खरीदी के लिए भी 2585 का दाम था, उसपे 40 रूपए बोनस देके 2625 रूपया गेहूं अपनी सरकार ने खरीदा। धान का एमएसपी भी लगातार बढ़ाते जा रहे।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि जलगंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्रदेश भर में जल की प्रत्येक बूंद के संरक्षण और संचयन को सुनिश्चित करने के लिए कुओं, बावड़ियों, तालाबों और नहरों के निर्माण तथा जीर्णोद्धार के व्यापक कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पशुओं को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए विशेष पशु चिकित्सा एम्बुलेंस सेवा भी संचालित की जा रही है। प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह विजयी घोषित हुए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 6000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा ने आज सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 में और संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। ये संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि आज कई महत्वपूर्ण बिल पास किए गए हैं। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया गया है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया, जिसमें विपक्षी दलों का कोई भी सदस्य चर्चा में शामिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसी तरह राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित हुआ, विपक्ष ने इसमें भी भाग नहीं लिया। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद के बाहर विपक्षी सदस्यों ने कहा है कि उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा और जब उन्हें मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते। सुरक्षित सड़कें, स्मार्ट तकनीकी, डिजिटल सुविधाएं और हरित परिवहन के विजन के साथ 11 और 12 सितंबर को इंदौर में यात्री परिवहन विजन समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस समिट में देश भर के नीति निर्माता, परिवहन विशेषज्ञ, उद्योग जगत और निवेशक मिलकर भविष्य की मोबिलिटी का रोडमैप तैयार करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। सावन माह का पहला सोमवार पूरे प्रदेश में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही प्रमुख शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का शुरू हुआ सिलसिला जारी है। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की श्रावण भ्रातृत्व सवारी के तहत आज पहली सवारी निकाली जा रही है। वहीं रायसेन जिले के ऐतिहासिक भोजपुर शिवधाम, नर्मदापुरम, जबलपुर, खंडवा और आगरमालवा सहित प्रदेश भर के शिवालयों में श्रद्धालु सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं देवास जिले के महाकालेश्वर, जटाशंकर और कर्णेश्वर समेत विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखी गईं। गायक स्वर्गीय किशोर कुमार का जन्मदिवस कल 4 अगस्त को खंडवा में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। सुबह उनकी समाधि पर पुष्पांजलि और स्वरांजलि का कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं शाम 7:30 बजे पुरानी कृषि उपज मंडी प्रांगण में किशोर नाइट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ख्याति प्राप्त गायक पी गणेश और प्रीति जोशी किशोर कुमार के लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति देंगे। अब रुक करते हैं मौसम की खबर का। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल और नर्मदापुरम सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। वहीं ग्वालियर, दतिया और निवाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के भारोत्तोलन पदक विजेताओं को आज सम्मानित किया। भारतीय एथलीटों ने भारोत्तोलन के 11 भार वर्गों में 1 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते हैं। खेल मंत्री ने स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख रुपये, रजत पदक जीतने वालों को 20 लाख रुपये और कांस्य पदक जीतने वाले विजेताओं को 10 लाख रुपये के नगद पुरस्कार प्रदान किए। खेल मंत्री डॉक्टर मांडविया ने खिलाड़ियों से खेल के राजदूत बनने का आह्वान किया और उनसे स्कूलों तथा कॉलेजों का दौरा करने का भी आग्रह किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में स्ट्रीट वेंडर्स योजना का दायरा और असर बढ़ाने के लिए 15 अगस्त तक विशेष पीएम स्वनिधि पखवाड़ा चलाया जा रहा है। झाबुआ के शासकीय कन्या महाविद्यालय में 5 अगस्त को

सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना में शामिल मादा बाघिन T27 का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर उसे वन विहार भोपाल भेज दिया है। गुना के ग्राम उमरी में 200 दीदियों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया गया। शिवपुरी के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर सीधे डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष में 12 अगस्त तक प्रवेश दिया जा रहा है। खंडवा के शासकीय ITI परिसर में 6 अगस्त को रोजगार स्वरोजगार व अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को हराया। प्रदेश में श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा सावन माह का पहला सोमवार, और अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल और नर्मदापुरम सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: आई एम हियर
2: बीप तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना
1: दिमाग चार्ज कर अपना
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
1: देखा
2: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
3: अब क्या करोगे
2: फ्री वाईफाई है ना
1: बुद्धू सुधर जा
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
3: आरबीआई कहता है
4: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम चौपाल।

जय जवान जय किसान कार्यक्रम सुनने वाले अपने सभी भैया बहनों को स्वाति बहन की राम राम। देखो भैया हरो, कहते हैं ना कि हर मौसम जो है बहुत खास होता है, और खासकर अगर अपन खेती बाड़ी की बात करें तो जो बारिश का मौसम है, अपन जान ही रहे हैं कि अपनी खेती के लिए बारिश कितनी ज़रूरी है। लेकिन कई बार का होता है कि जो बारिश का पानी है बहुत अधिक मात्रा में ऐसे ही बह जाता है। तो अपन ने पहले भी अपन एक कार्यक्रम के माध्यम से कही, और अपने सभी भैया उन्होंने जो पानी है उसके को इकट्ठे करने की कोनो ना कोनो व्यवस्था जरूर करी हुई है, और अपन जो अपने खेत हैं उनकी मेड़ों को भी ऊपर बढ़ा के जो है पानी को जो भूमिगत करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही अपन देखते हैं कि अपने घर के आसपास अगर ऐसी कोई कच्ची ज़मीन है जहाँ पे ये जो पानी है अपनी छतों का वो इकट्ठा हो जाए और वो धीरे धीरे करके भूमिगत हो जाए, तो कहते हैं कि इस प्रकार से व्यवस्था करे से जो पानी है ज़्यादा मात्रा में भूमिगत हो जाता है और धीरे धीरे करके भूमि का जो जल स्तर है वो भी बढ़ने लगता है। और भैयरों, यही समय होता है कि जब अपन छोटे छोटे

पौधे रोपित करके अपने जो पर्यावरण है उसको बहुत बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जब छोटा पौधा हम लगाएंगे तभी तो आगे चल के वह पेड़ बनेगा और हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें भी देगा। और खेती में भी अपन देखते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आजकल बहुत से भैया बहन जो हैं जो पारंपरिक खेती है उसके अलावा भी जो है बगीचे हैं उनको भी लगा करके सह व्यवसाय की तरह काम कर रहे हैं। और तो और खेतों की मेड़ पे कुछ ऐसे पौधे भी लगा रखे हैं जो कि बहुत लाभप्रद होते हैं, और कई पेड़ भी ऐसे लगे होते हैं जिनसे खेती के साथ साथ हमें जो अतिरिक्त आय है उनका साधन हो जाते हैं, जैसे कि जामुन का पेड़ हुआ, आंवला का पेड़ हुआ, आम का पेड़ हुआ, मोरिंगा का पेड़ हुआ, कई प्रकार के ऐसे पेड़ होते हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ मिलता है और जो कि हमारी अतिरिक्त आमदनी का हिस्सा बन जाते हैं। अब भैया जब अपने जो पेड़ पौधे हैं उनको केवल अपन ऐसी ही जगह ना लगाएं जो हमारे आसपास है, अपने जो गांव हैं देहात हैं उनके बाहर भी अपन देखते हैं कि एक जो है लंबा जो है जंगल होते हैं थे बहुत ज़्यादा घने पेड़ होते थे, लेकिन अब अपन को देखने में आ रहे हैं कि जो पेड़ हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो गई है, जिसके कारण भी अपना जो पर्यावरण है प्रभावित हुआ है। जो पृथ्वी का तापमान है वो भी बढ़ा है, बारिश की भी संभावनाएं जो है धीरे धीरे करके कुछ क्षेत्रों में तो ना के बराबर हुई हैं, और कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। तो अपन को ये प्रयास करो चाहिए कि ऐसी कोई पहाड़ी है या फिर कोई ऐसे वन क्षेत्र हैं जहाँ पे अपन और पौधे लगा सकते हैं, तो पौधों को परिपक्व होने के बाद उनको वहाँ पे रोपित करने की व्यवस्था करें, जिससे कि अपने जंगल जो हैं हरे भरे हो जाएं, तभी जो है अपना पर्यावरण जो है स्वस्थ रहेगा। और जब अपने चारों तरफ हरियाली रहेगी तो अपना भी मन करता है कि अपन आसपास हरियाली जब देखते हैं तो लगता है कि खुशियाँ चारों तरफ फैल रही हो। और अगर सावन की बात करें तो सावन के महीना में तो चारों तरफ हरियाली छाई जाती है। और भैया आज जो है अपने भैया ने इंतज़ार कर रहे हुई हैं लोकमात्री कार्यक्रम को, कि हर सोमवार को जैसे कि अपन लोकमात्री कार्यक्रम में अपने जो भैया बहन हैं उनकी फरमाइश के लोकगीत सोई सुनवाओत हैं। तो कायना ले थे पहली फरमाइश, यह फरमाइश आई है दमोह से। लिखने वाले भैया बहन हैं सुशीला, मनीष और रघुवेंद्र रैकवार। इन्होंने फरमाइश करी है कि हमें ममता गोस्वामी के स्वर में लोकगीत सुनवाएं। तो आओ भैया रो सुनते हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: भैया देखो, जैसे जैसे अपन खेती किसानी में आगे बढ़ रहे हैं तो कई ऐसी वैज्ञानिक विधियां हैं जिनको अपन ने अपने खेती में लेकर के जो है बहुत अच्छी तरीके से खेती को बढ़ाया है, जिससे खेती की लागत भी कम भई है और अपन ने लाभ भी अधिक लो है। अब पहले के अपन टाइम समय में देखा थे कि जो है अपन बैल हैं या पशुओं के माध्यम से खेती करते थे, लेकिन जैसे जैसे विकास भाव खेती के बारे में अपन ने जानो तो अपन ने ट्रैक्टर को उपयोग करो, हार्वेस्टर को उपयोग करो, ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था करी, स्प्रिंकल, उन्नत बीजों का उपयोग करो, यहाँ तक कि जो जैविक उर्वरक वाली खादें हैं उनका भी उपयोग अपन ने करो। और आज के समय में अगर अपन बात करें तो ड्रोन है, सेंसर है और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अपने जो किसान भैया हैं बहुत सारी तकनीकों के बारे में सीख रहे हैं और उसको अपनी खेती में उपयोग में भी ला रहे हैं। इससे भैया समय की भी बचत होती है और हम कम श्रम करके अधिक मुनाफा

दे सकते हैं, और जो हमारा समय बचता है उसको हम किसी और कार्य में भी लगा सकते हैं। भैया, विभिन्न प्रकार की जो ये चीज़ें हैं या उपकरण हैं, इनके माध्यम से जो खेती है पहले के समय

कहते हैं ना कि खेती जो होती है पूरी तरीके से मौसम पर निर्भर करती है, तो अपन को ध्यान रखना है कि जो मौसम की जानकारी अपन को समय पे मिल जाए और अपन को कब कौन सी फसल बोने हैं, पूरी वैज्ञानिक भैया ने जो अपन को समय समय पे जानकारी भी देते हैं, या अपन मिट्टी परीक्षण करके भी मिट्टी को जो आधार है या फिर गुणवत्ता है उसके आधार पे अपन खेती की व्यवस्था करके चलते हैं तो अपन को लाभ अच्छो मिलते हैं। अब जैसे कि पहले के समय पे तो अपन जानते ही ना थे कि भैया मिट्टी परीक्षण करा के भी अपन जान सकते हैं तो अपन कौन से बीज लें, किस प्रकार की खेती करें, लेकिन आज के समय में वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से जो है मिट्टी की गुणवत्ता अपन पहले से जान सकते हैं। ये भी जान लेते हैं कि अपनी जो खेत की मिट्टी है उनमें कौन कौन से तत्वों की कमी है, जिसके माध्यम से ही अपन जो है उतने ही उर्वरक और खाद को उपयोग करके खेती को उन्नत बना सकते हैं। इससे अतिरिक्त खाद के खर्चे से भी अपन बच जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका उपयोग करके अपन खेती को आज उन्नत बना रहे हैं, वो सभी आधुनिक विधियाँ ही हैं। आज वैज्ञानिक हरे भी जो है बता रहे हैं कि भैया कि अगर अपने पास कम जगह है और अपन चाह रहे हैं एक के साथ साथ दो दो प्रकार की खेती करें, तो कई चौमासा खेती भी आज प्रचलन में बढ़ रही हैं जिनका उपयोग करके अपन बेहतर तरीके से उत्पादन ले सकते हैं। अब लेते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश आई है गोरेगांव से, लिखने वाले भैया बहन है सुरेश कुशवाहा, रज्जू कुशवाहा, बलराम और सरिता देवी। इनने फरमाइश करी है कि हमें उत्तम सिंह यादव के स्वर में झुमक वालों गीत सुनवावें। तो आओ भैया रो सुनते हैं।

भैरव देखो, कहते हैं ना कि जब अपने किसान भैया ने कोनो काम काज करबे की ठान लेते हैं तो पूरी मेहनत के संग जब अपने काम करते हैं तो सफलता जरूर मिलत है। ऐसे बहुत से भैया बहन हैं जो खेती के साथ साथ आज भी ऐसे व्यवसाय भी शुरू कर रहे हैं जो कि उनको उनके क्षेत्र में रहकर ही और बेहतर रोजगार दे रहे हैं, और वे अपने साथ साथ कई लोगों को भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने पहले प्रशिक्षण लो, पूरी जानकारी इकट्ठी करी और धीरे धीरे करके अपने कामकाज को आगे बढ़ाया। तो भैया आप उन्हें भी जो है, अगर चाह रहे हैं कि हम अपना खेती तो कर ही रहें, संग में कोई ऐसा काम भी करें जिससे हमें आर्थिक रूप से हम और ज़्यादा बेहतर सशक्त हो सकें, तो इसके लिए कई प्रकार की जो है शासन की योजनाएं भी चलती हैं जिनके माध्यम से अपन जो है प्रशिक्षण ले सकते हैं, उस व्यवसाय से जुड़ी भाई पूरी जानकारी लेकर के अपना काम शुरू कर सकते हैं। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके अंतर्गत जो है जो कई प्रकार के विभिन्न कौशल होते हैं उनकी जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि हम प्रशिक्षण ले लें, जो भैया ने काम काज करना शुरू चाहते हैं और प्रशिक्षण के बाद अगर काम शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पे जब उनके पास पूरी जानकारी होती है तो वो काम जो है बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और अब लेते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश आई है उटीला से। लिखने वाले भैया बहन हैं हरी, मोनिका, मंजू और सीता देवी। इनने फरमाइश करी है कि हमें फूलचंद अहिरवार के स्वर में लोकगीत सुनवाएं, तो आओ सुनते हैं।

भैया देखो, सावन की बात होए और भला झूलन की बात कैसे ना रह सकत है। अपन सावन में देखते हैं कि हरियाली चारों ओर होत है, ऐसो लगत है कि पूरी धरती में यानी हरी चुनर ओढ़ रखी होए। और सावन के झूला ही जो है सावन की एक खासियत होत है। सावन में कई प्रकार के जो है तीज त्यौहार भी मनाते हैं और अपनी बहनें भी जो हैं अपने मायके की ओर जाती हैं, और विभिन्न प्रकार की जो पौध हैं वे भी अपन देखते हैं। और यही समय होता है सबसे अच्छा कि हम जो है पेड़ पौधे लगाएं। अब भैया देखो, हर मौसम की बहुत खास बात होती है कि कछु न कछु अपन को देते हैं, खेती में भी और अपने जीवन के लाने भी। जो सावन को महीना है वह अपन को संदेश देता है कि हमें चारों ओर जो है खुशहाली फैलानी है, हरियाली लानी है और अपने आसपास को जो वातावरण है उसको साफ स्वच्छ रखने हैं। तो भैया देखो, यह जिम्मेदारी कोनो एक व्यक्ति की नहीं होती है। अपन सबको मिलके जो है ऐसे प्रयास करने हैं कि अपने घर के आसपास जौन जगह पे अपन जाते हैं उन सभी जगह पे अपन ना तो कोनो गंदगी फैलाएं और ना ही दूसरों को फैलाने दें। क्योंकि जब अपन सभी ये प्रयास करेंगे तभी साफ सफाई भी रहेगी, हरियाली भी रहेगी और धीरे धीरे अपने समाज में अपने देश में जागरूकता बढ़ेगी। और अब सुनते हैं अगला लोकगीत, स्वर है शिवरतन यादव का।

भैया देखो, जब बारिश होत है तो अपनों मन करत है कि बाय बारिश में भींगे, थोड़ी सोंधी सोंधी मिट्टी की खुशबू लें, और तो और बारिश में नए नए पकवान भी अपन खाएं। लेकिन का होत है कि जब बारिश को मौसम होत है तो इस समय अपन को थोड़ी सी ध्यान रखने होत है कि अपन जो है ना ऐसा खाना ना खाएं जो कि अपने लाने कई बार नुकसान भी करत है। मन तो अपनों बहुत करत है कि अपन चाट बनाए, भजिया बनाए।

बनाएं और भुट्टा खाएं और विभिन्न प्रकार के व्यंजन। लेकिन मौसम को देखत भए अपन को ज़्यादा तले भुने से बचो चाहिए। और भैया जब अपन खाना बना रहे हों तो या जहाँ से भी अपन खाना ले रहे हों तो अपन को ध्यान रखना कि वह जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। इस समय क्योंकि देखा थे मक्खी मच्छर हैं वे भी बहुत मात्रा में हो जाते हैं, तो अपन को खाना जो है साफ़ सफाई से बना उन्हें हैं और स्वच्छता को अपना कर ही अपन को चलने हैं। अब देखो अपने घर आंगन दरवाजे सभी जगह अपन साफ़ सफाई रखत हैं ताकि अपने आसपास जो है बीमारियां ना फैलें और स्वच्छता बनी रहे। तो यही प्रयास के संगे संगे अपन को जो है जैसे अपन कोनो जगह जा रहे हैं तो उधर भी अपन साफ सफाई को ध्यान रखें। भैया कहत भी है कि अपने से ही जो है अपने मोड़ा मोड़ी जो है हर चीज़ें सीखत हैं आगे बढ़त हैं। और कहो भी जाते हैं कि जो माँ होती है बच्चों की पहली गुरु होती है, घर से ही उनमें कई प्रकार के संस्कार सिखाती हैं, जो समाज है परिवार है परिवार के सदस्यों से अपन मिलते हैं और पूरा परिवार एक पाठशाला की तरह बच्चों को पालन पोषण करते हैं। और ऐसे में अच्छे संस्कार जब बच्चों को मिलते हैं और धीरे धीरे वे कई चीज़ों को अपने आदत में ले लेते हैं तो वे आदत उनकी जीवन भर काम आती हैं। अब जैसे छोटी सी बात होती है कि अपन एक कमरा से दूसरे कमरा में जा रहे हैं, अपने बड़े भी अगर जो लाइट हैं बिजली के खटका है उनको बंद करके जाएं तो धीरे धीरे करके अपने जो मोड़ा मोड़ी हैं वे भी इन चीज़ों को सीखते हैं और देख देख के हर चीज़ भी जो है पूरी करने लगते हैं। और एक समय ऐसा आउत है कि अपन को कछु कहने भी नहीं आउत है और मोड़ा मोड़ी स्वतः ही बेकाम काज करन लगत हैं। जब अपने मोड़ा मोड़ी ऐसा काम कर रहते तो अपने मन होते ना कि कितने अच्छे से उनमें नई चीज़ों को विकास हो रहा है। और अब सुना थे अगलो लोकगीत, स्वर है अनिल दंडोतिया का।

लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला विधेयक आज पारित किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही और दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:10 पर ही बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित किया। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधन को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को सदन में ये विधेयक पेश किया था। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी। उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को नया वैधानिक ढांचा प्रदान करने का

प्रावधान किया गया है। ये विधेयक वर्ष 1959 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा ताकि आधुनिक शैक्षणिक और शोध जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके तहत संस्थान को एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में स्थापित करने और उसके प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान है। विधेयक में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति संस्थान के विजिटर होंगे और इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए प्रावधान है जो इसका प्रमुख नीतिगत कार्यकारी निकाय होगा। पिछले बजट सत्र के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने संसद को सूचित किया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI को एक निगमित निकाय के रूप में शामिल करने और इसके प्रभावी संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा की आज सुबह बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उद्देश्य उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद जब उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, कृपया प्रश्नकाल चलने दें। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही और कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 11वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद MSME क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर दिया। सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। सभापति ने उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी आगे भी अपनी मेधा से देश को गौरवान्वित करेंगे। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू करते हुए मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों के नाम पुकारे। इसी दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाईं, जिस पर आपत्ति जताते हुए सभापति ने कहा कि सदन में तख्तियां नहीं दिखाई जा सकती। इसके बाद हंगामे के बीच सभापति की अनुमति से भाजपा की दर्शना सिंह ने स्वीप एपनिया का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 90 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इसके खतरों से अनजान हैं। उन्होंने कहा कि स्लीप एपनिया नींद से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, जिसमें सोते समय बार बार सांस रुकती और शुरू होती है। भाजपा सदस्य ने इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने की मांग की। इसी पार्टी की अलका गुर्जर ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद के पास स्थित भगवान देव नारायण की पवित्र जन्म और प्राकाट्य स्थली मालासिरी डोंगरी के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्थान देश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई सुझाव दिए। मनोनीत सदस्य उज्ज्वल निकम ने अदालतों में

लंबित मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मामलों की सुनवाई में विलंब का एक कारण उनकी अधिक संख्या भी है। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर उप सभापति हरिवंश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने फिर से नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति की अनुमति से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलते हुए राम मंदिर अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी आसन से अनुरोध किया कि विधेयक पर चर्चा शुरू हो चुकी है तथा किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाए। इसके बाद उपसभापति ने कांग्रेस के अजय माकन से अपनी बात रखने के लिए कहा, किंतु माकन विधेयक के बजाय अन्य विषयों पर बोलने लगे। सदन में मौजूद संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आसन की ओर से बार बार विधेयक पर बोलने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्षी सदस्य विषय को भटकाते हैं। उन्होंने माकन के संबोधन को कार्यवाही से निकालने की मांग की। हंगामे के बीच एमएसएमई विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और ये विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी है। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने कहा कि एमएसएमई की मदद से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। बीजेपी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने कहा कि जीडीपी में एमएसएमई का 35% योगदान रहता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मूल विधेयक 2026 में आया था और 20 साल बाद इसका संशोधन आया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एमएसएमई क्षेत्र में बहुत बदलाव हो चुका है। विधेयक में बड़ी चुनौतियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने कहा कि विधेयक में मध्यस्थता और फैसलों के त्वरित निपटारे के लिए नए नियम तय किए गए हैं, जो सराहनीय कदम है, लेकिन इन नियमों का पालन भी ज़रूरी है, अन्यथा न्याय मिलने में देरी होगी। अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरई ने कहा कि देश के विकास के लिए एमएसएमई ज़रूरी है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि वह तमिलनाडु में एमएसएमई कार्यक्रम को सहयोग दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये विधेयक उसे शक्ति प्रदान करेगा। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव वीड़ा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके प्रावधान दर्शाते हैं कि लघु कंपनियों के लिए सुचारू व्यावसायिक संचालन को बढ़ाने पर सरकार निरंतर ध्यान दे रही है। बीआरएस के रविचंद्र बद्दी राजू ने कहा कि विधेयक मध्यस्थता और मध्यस्थता कार्यवाही को ऑनलाइन माध्यमों से संचालित करने की अनुमति देता है, जिससे विवादों का समाधान तेजी से, अधिक सुलभ और कुशल तरीके से हो सकेगा। बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने कहा कि विधेयक में उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने पर विचार करे। चर्चा में यूपीएलएल के प्रमोद बोरो, भाजपा के संजय सेठ, कांग्रेस के नीरज डांगी, प्रवीण चक्रवर्ती और बीजू जनता दल की सुलता देव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाला ऋण वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान में सुधार करना और नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। श्री मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 39% हो गई है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा एवं नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। सरकार ने लोकसभा में कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए।
शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में

कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता, किफ़ायती शिक्षा और समावेशन पर विशेष बल देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सभी विद्यार्थियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनका क्रियान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। इनका प्रशासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित अभिभावकीय आय सीमा तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार SC, ST और OBC वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन PM USP योजना का संचालन करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जैसा कि योजना के दिशा निर्देशों में निर्धारित है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन और बढ़ती वैश्विक पहचान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
3: जी राजा रमन, आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: थैंक यू सो मच, हमेशा अच्छा लगता है आकाशवाणी में।
3: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पदक तालिका में चौथे नंबर पर अपना कैंपेन खत्म किया है। 122 खिलाड़ी गए थे और 39 मेडल लेकर घर लौटे हैं, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज शामिल हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में आप कैसे रेट करेंगे?
4: उम्मीद के अनुसार ये बहुत शानदार परफॉर्मेंस था। गेम से पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं 30 मेडल का शायद टारगेट लगा था भारतीय टीम के लिए, लेकिन 39 मेडल से वापस आना, ये दिस इज़ अबाउ माई एक्सपेक्टेशन। और मैं सराहना करूँगा पूरी टीम की, चाहे वो एथलेटिक्स की टीम हो या फिर वेट लिफ्टिंग हो या फिर बॉक्सिंग हो या जूडो हो, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। और ये देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा काम करेगा ये कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रदर्शन।
3: राजा, आपने कहा कि खेलों से पहले आप 30 का टारगेट देते, लेकिन अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पिछले प्रदर्शन की बात करें तो 2002 से अब तक ज्यादातर 50 से ज्यादा मेडल्स लाए। बर्मिंघम की बात करें तो 61 मेडल थे। तो जब हम खेलों की बात करते हैं, ये सब आंकड़ों की बातें होती हैं और स्टेटिस्टिक्स के बाद, जैसे मैंने भी कहा कि 2002 के बाद ये पहली बार है कि 50 से कम मेडल लेकर आए हैं, पर इसके साथ ये बात भी है कि अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स के जो पिछला इतिहास या हाल का भी जो रीसेंट हिस्ट्री है उसको देखें तो ये पहली बार है कि जो खेल हैं काफी कम हो गए। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, शूटिंग, ये ऐसे खेल हैं जहां पारंपरिक तौर पर भारत जो है काफी अच्छा प्रदर्शन करता रहा है और ये खेल इस बार नहीं थे। तो क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि भारतीय एथलीट्स की जो परफॉर्मेंस है उनको सिर्फ नंबरों से, आंकड़ों से आंकना सही नहीं है इस परिप्रेक्ष्य में?
4: नहीं, ये नंबर तो हमेशा नंबर का खेल है। और मेडल तालिका में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के भी मेडल कम हो गए क्योंकि खेल कम हो गए थे। इधर शूटिंग, रेसलिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ऐसे खेल में हमारे लिए हमेशा बहुत ज्यादा मेडल मिलते थे, लेकिन ऐसा खेल का ना होना दुख वाली बात है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ये गेम्स विक्टोरिया में होने थे ऑस्ट्रेलिया में, और फिर उन्होंने मना कर दिया था और लास्ट मिनट में ग्लासगो आगे आए और फिर वो आयोजन किए हैं, तो तारीफ के काबिल है ग्लासगो। लेकिन क्योंकि सिर्फ 10 डिसिप्लिन थे यहाँ पर जहाँ हम हिस्सा लिए थे, ये मेडल नंबर कम दिखेंगे लेकिन ओवरऑल परसेंटेज मेरे को लगता है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के मेडल कम हुए, कनाडा के मेडल कम हुए, इंग्लैंड के मेडल कम हुए,

0: हमारा भी कम है, और मैं नहीं इसको खराब प्रदर्शन नहीं मानूंगा। अगर आप 60 और 70 मेडल देखते हैं और फिर वहां से 39 देखेंगे तो खराब लगेगा, लेकिन हम सबको समझना चाहिए कि यहाँ पे खेल कम थे, फ्यूअर डिसिप्लिन, इसीलिए शायद नंबर्स कम है।
1: जी, अब हम अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करें तो बॉक्सिंग भारत के कैंपेन का स्टार रहा, हमने रिकॉर्ड 10 मेडल जीते हैं जिसमें से 7 गोल्ड भी हैं। ये किसी भी देश द्वारा किसी एक कॉमनवेल्थ में बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा मेडल है, तो ये कामयाबी बेशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बॉक्सिंग की बढ़ती ताकत को दिखाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे और कौन से वो बॉक्सर्स हैं जो आपको लगता है जो इसमें उभर कर आए हैं इन गेम्स में?
0: टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, जिस तरीके का कंपटीशन का स्तर रहा उस हिसाब से भारतीय टीम ने अपने 10 मेडल लाए, वहाँ पे 7 गोल्ड मेडल और फिर 3 सिल्वर मेडल है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम सबको ये मानना पड़ेगा कि एशियन गेम्स जो महीने दो महीने में होना है, वहां पे अगर ऐसा प्रदर्शन होता तो बहुत ज्यादा उत्साह का जगह बन जाता है। कॉमनवेल्थ में बॉक्सिंग और फिर वेट लिफ्टिंग, इनके स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा नहीं है, और इसीलिए शायद आपको समझना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि 10 मेडल खराब मेडल है, 10 बहुत बेहतरीन मेडल है, जो कॉम्पिटिशन है उसमें हम बेहतरीन प्रदर्शन करके आए हैं, ये हमारी गलती नहीं है कि कॉम्पिटिशन कमजोर रहा
1: जी, क्योंकि ये भी एक बात हो रही थी कि जी बॉक्सिंग में हमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं मिला है इन गेम्स में।
0: हकीकत तो यही है, सच ये है कि कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन आपको फिर भी जाना पड़ेगा, रिंग में उतरना पड़ेगा और बाउट जीतने पड़ेंगे, और वो जीत के आए हैं तो दे डिजर्व प्रेस, तारीफ तो जरूर करनी चाहिए। लेकिन हम सबको समझना चाहिए कि कुछ खेल ऐसे हैं जहाँ पे एशियाई खेल में हमको मेडल्स कम मिलते हैं। वेटलिफ्टिंग में वहां पे गोल्ड आ गया था, उसमें भी आपका प्रदर्शन आप देखेंगे तो 190 में गोल्ड मेडल लेकर आइए, सिल्वर मेडल जिसके पास था उनसे 20 किलो ज्यादा उठाइए, तो दिखाता है कि कॉम्पिटिशन कमजोर ही रहा है, लेकिन आपको मैदान में फिर भी उतरना है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मेडल्स बॉक्सिंग में और वेटलिफ्टिंग में आए मैं उनको कम नहीं आंकूंगा, लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, ऐसा ही प्रदर्शन एशियन गेम में जब करेंगे तो बहुत खुशी वाली बात हो जाएगी।
1: जी, आप क्योंकि वेटलिफ्टिंग की बात कर रहे हो, जैसे भी आपने कहा कि जब वेटलिफ्टिंग की बात हो और मीराबाई चानू उनकी बात ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता है। उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो भारत की सबसे महान एथलीट्स में क्यों शुमार है, और उन्होंने इनफैक्ट कॉमनवेल्थ गेम्स की जो हैट्रिक है टाइटल्स की वो पूरी की है। तो इसके अलावा उनकी तो ऑफकोर्स हमने भी बात की, पर बाकी और कौन से वो वेटलिफ्टर्स हैं जिन्होंने इन खेलों में, ग्लासगो खेलों में, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है वेटलिफ्टिंग की बात करें?
0: विद्या रानी देवी का प्रदर्शन सही रहा है, मुझे लगता है मुत्तु पांडी राजा जो मेन सेक्शन में मेडल जीते हैं, बहुत अच्छे लिफ्टर्स हैं, लेकिन एशियन स्टैंडर्ड अभी शायद नहीं आया इनका, लेकिन क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही है वहां पे अच्छा प्रदर्शन किया है कईयों ने, अगर वहां पे हमें इतने सारे मेडल्स मिलते हैं, 8 मेडल लेकर आए हैं, अफसोस वाली बात है कि 1 या 2 हम यहाँ पे घर पे रखना पड़ा उनको, हमारे लिफ्टर्स जा नहीं पाए, अफसोस वाली बात है, लेकिन 8 मेडल के साथ वापस आना कॉमनवेल्थ गेम्स से ये अच्छी बात है, इट इज अ पॉजिटिव साइन। जो वेटलिफ्टिंग फेडरेशन है उनके सामने एक चैलेंज है कि जो खिलाड़ी वहां गए उनको और उठाए उनका स्टैंडर्ड और फिर एशियन गेम्स में कुछ अच्छा कर दिखाए।
1: एथलेटिक्स की बात करें तो ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें भारत की मेडल्स की गिनती में कई बड़े अचीवमेंट्स हमको मिले हैं, बेशक ऑफकोर्स स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने तो जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीत कर जो देश को उन पर भरोसा था एक बार उसको फिर से पूरा किया है, पर उनके अलावा अगर हम बात करें कई ऐसी अचीवमेंट्स है, कई ऐसी सफलताएं मिली जिनके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, तो वो मैं आपसे वो सक्सेस स्टोरीज जानना चाहूंगी कि एथलेटिक्स में वो कौन सी ऐसी सफलताएं थी जो इन खेलों में उभर कर आई है जिनके बारे में जैसे मैंने भी कहा कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमें यहाँ पर मेडल्स मिलेंगे।
0: सच बताऊं तो मेरी उम्मीद सिर्फ 3 मेडल की थी, नीरज चोपड़ा जैवलिन में, मुरली श्री शंकर लॉन्ग जंप में और फिर तेजस्विन शंकर डिकैथलॉन में, ये 3 मेडल की उम्मीद थी, तीनों मेडल लाए वहां से। बट मुझे लगता है कि तेजस्विन शंकर वाला डिकैथलॉन मेडल बहुत ही अहम मेडल है, क्योंकि 4 दिन पहले ही वो हाई जंप कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए थे, चोट लग गया था उन्हें, उनके नी में प्रॉब्लम था और फिर वो खेल नहीं पाए थे हाई जंप, लेकिन वहां से आना और फिर डिकैथलॉन में ब्रॉन्ज मेडल जीतना, और पहली बार कोई भारतीय खिलाड़ी डिकैथलॉन में मेडल जीत रहा था, तो मेरे लिए बहुत बड़ा मेडल है। और फिर सर्वेश कुशारे हाई जंप में, और कैसे हम बोले गुलवीर सिंह को,
1: बिल्कुल,
0: जिनके पास 10,000 मीटर में सिल्वर और 5,000 मीटर में ब्रॉन्ज, 2 मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने एथलेटिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर कहे तो ही इज द फर्स्ट एथलीट जो जिनको 2 मेडल मिले। और फिर सीमा जो PhD की स्टूडेंट भी है और डिस्कस थ्रो चैंपियन भी रही है, तो उनका ब्रॉन्ज मेडल भी बहुत बड़ा मेडल है हमारे लिए। 10 मेडल ٹریک اینڈ فیلڈ سے آنا, ایتھلیٹکس سے آنا, اور پھر 6 میڈل پیرا ایتھلیٹس کے پاس سے آنا, 16 میڈل ایتھلیٹکس اور پیرا ایتھلیٹکس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, اٹ از میسو. اور مجھے لگتا ہے کہ ویٹ لفٹنگ اور پھر

0: बॉक्सिंग से ज्यादा अगर मैं इम्प्रेस होता हूँ तो एथलेटिक्स से होता हूँ।
1: आपने पैरा एथलीट्स की बात की, तो पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि जो भारत के पैरा एथलीट्स हैं वो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, इवेंट्स में भारत का नाम लगातार रोशन कर रहे हैं, और ग्लासगो में भी उन्होंने देश को निराश नहीं किया। तो उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए आप ओवरऑल भारत में पैरा स्पोर्ट्स की प्रोग्रेस को कैसे देखते हैं, और अभी भी कौन से वो खेल हैं पैरा स्पोर्ट्स में जिसमें है तो भारत की काफी अच्छी सफलता मिली और हम उसमें और बेहतर कर सकते हैं?
0: बहुत सारे खेल है, पैरा स्विमिंग में अच्छा कर सकते हैं, हालांकि हम स्विमिंग में भी अच्छा कर सकते हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग में हमारे मेडल्स कम है, वहाँ और मेडल्स आ सकते हैं। पैरा एथलेटिक्स में हम लगातार अच्छा करते आए हैं, पैरा साइकिलिंग में बेहतरी हो सकती है, तो बहुत सारे खेल है। व्हील चेयर बास्केटबॉल हुआ है, उसमें भी अच्छा प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन एक मुहिम चला है पैरा स्पोर्ट को सपोर्ट करने का जो भारत सरकार करता है, नॉट ओनली फॉर पैरा स्पोर्ट, एबल बॉडीड स्पोर्ट के लिए भी। अगर आज ओलंपिक स्पोर्ट अच्छे स्तर पर है, भारतीय सरकार को क्रेडिट जाता है, क्योंकि वो जितना पैसा वो लगाते हैं मार्केट से उतना बनता नहीं है, प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी नहीं लगा पाते, तो भारत सरकार का बहुत बड़ा रोल रहा है इन प्रमोटिंग पैरा स्पोर्ट, और मुझे लगता है कि उसी के नतीजे, उसी के अंजाम हमको देखने मिल रहे हैं कि अच्छे अच्छे मेडल्स आए हैं। और सबको ये बताना भी होगा कि हमारा जो स्ट्रेंथ है पैरा एथलेटिक्स का, चाहे वो जैवलिन हो या फिर हाई जंप हो, जहां हम लगातार मेडल जीते हैं, वैसे इवेंट नहीं थे इधर ग्लासगो में। विमेन शॉटपुट में शर्मिला मेडल लेकर आई, गोल्ड लेकर आई, ऐसे मेडल्स हमारे लिए संकेत देते हैं कि पैरा स्पोर्ट सही दिशा में चल रहे हैं।
1: एक और स्पोर्ट्स जहां से हमें बहुत अच्छी सफलता मिली है वो है जूडो। जूडो में ऑफकोर्स एक बार फिर हमारे जूडो का जो है उन्होंने इतिहास रचा है, हर्ष सिंह और अस्मिता डे ने भारत के पहले कॉमनवेल्थ गेम्स जूडो गोल्ड मेडलिस्ट वो दोनों बने, जबकि यामिनी मौर्य ने सिल्वर जीता और उन्नति शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण कदम है जूडो जैसे एक खेल में, जो एक गैर पारंपरिक खेल हम कहेंगे भारत की दृष्टि से, कि इस तरह मेडल्स जीतना कितना महत्वपूर्ण है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि अगर हम ओवरऑल बात करें, देश की जो हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज हैं वो युवा खिलाड़ियों को किस तरह प्रोत्साहित कर सकती हैं कि वो हॉकी, शूटिंग और ट्रैक एंड फील्ड जैसे खेलों से बाहर निकलकर इन गैर पारंपरिक खेलों में ज्यादा ज्यादा पार्टिसिपेट करें।
0: जूडो के चार मेडल बहुत अहम है, क्योंकि आप देखें तो जूडो में हमारे मेडल्स एशियन गेम्स में भी कम मिलते हैं, उससे एक लेवल नीचे है कॉमनवेल्थ कॉम्पिटिशन, वहां पे गोल्ड लाना पहली बार आ रहा था गोल्ड भारत को, विच इज गुड, अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम हो रहा है जूडो को लेके। और हम सबको ये समझना चाहिए कि हम बहुत पैसा कोई ऐसे खेल में लगाते हैं जहाँ पे ज्यादा मेडल्स हैं, जैसे एथलेटिक्स में 40 इवेंट है और फिर 120 मेडल तक आपको एथलेटिक्स में आप जीत सकते हैं, कोई भी देश जीत सकता है, वैसे ही जूडो में आपके अगर 10 इवेंट मेन के और 10 इवेंट विमेन के हैं तो 20 मेडल आप जीत सकते हैं। तो ऐसे खेल को बढ़ावा देना शायद एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन रहा भारतीय खेल में कि जूडो को आगे बढ़ाया गया, और फिर कुछ प्राइवेट स्पॉन्सर्स आए हैं जो जूडो को अपनाए हैं और फिर वहां पे बेलारी में ट्रेनिंग करके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। भोपाल में एक बेहतरीन एकेडमी है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वहां से भी बहुत बड़ा योगदान रहा।
1: आपकी नजर में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से वो ऐसे खिलाड़ी थे, भारतीय खिलाड़ी थे, जिन्होंने सबको चौंकाते हुए प्रदर्शन किया, जिसको हम एक कहते हैं ना ब्रेकआउट स्टार्स, जिन पर सबकी नजर आने वाले भविष्य पर रहेगी?
0: डिस्कस थ्रो सीमा जरूर मैं कहूंगा कि शी विल बी अ सुपरस्टार। कुछ साल पहले वो माँ बनी, कुछ साल पहले वो खेलना भी बंद कर दी थी, और फिर वहां से आना और अपना पढ़ाई करते हुए खेलना और फिर राष्ट्रमंडल खेल में मेडल जीतना, और फिर गुलवीर का आगे बढ़ना, वर्ल्ड क्लास रेसिंग करके दो मेडल हासिल करना, विच इज वेरी पॉजिटिव साइन। लेकिन अगर आप मुझसे एक मेडल की बात करें तो वो तेजस्वी शंकर वाला मेडल होगा, क्योंकि मुश्किल काम होता है, हमारी सबकी नजर 100 मीटर धावक पे हो जाती है या जैवलिन थ्रोअर पे होती है। ये खेलते हैं 10 अलग अलग इवेंट और हमें पता भी नहीं चलता कि लीड कौन है, कौन सेकंड चल रहा है, कौन थर्ड चल रहा है, सबसे बड़ा मेडल मैं मानता हूँ।
1: पूरे कैंपेन को देखते हुए आप क्या कहेंगे कि इस ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारत की जो पारंपरिक ताकतें थी उससे आगे बढ़कर जो हमने गहराई दिखाई है, जहां सिर्फ कुछ खेलों पर निर्भर रहने के बजाय हमारी टीम्स ने कई अन्य खेलों में जो मेडल जीते हैं, इससे देश में बढ़ते हुए स्पोर्टिंग इकोसिस्टम के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: पॉजिटिविटी फैलता है। हम सबको पता था कि बॉक्सिंग में कुछ अच्छे अंजाम आएंगे, कुछ अच्छे रिजल्ट्स वेटलिफ्टिंग से आएंगे, हमेशा ये पीछे रह जाते थे क्योंकि हम शूटिंग के 15-20 मेडल देख लेते थे या फिर कुश्ती में 10 मेडल या 12 मेडल आ जाते थे, तो वो हमेशा पीछे हो जाते थे, उनके मेडल्स यही रहते थे, 7 या 8 मेडल होते थे उनके, लेकिन बाकी खेल आगे हो जाते थे। अब की बार फोकस उन पे रहा, सारा ध्यान उन पे रहा, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव साइन यह है कि पिछले 10-12 साल में भारत सरकार बहुत पैसा लगाई है खेलों में, और उन्हें प्रोत्साहित करेगा और ज्यादा पैसा लगा।

0: आने में। 3 या 4 दिन पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है खेलो इंडिया मिशन को लेके, बहुत पैसे लगेंगे स्पोर्ट में, और मुझे लगता है कि हर बच्चा इस देश में स्पोर्ट खेलने लायक हो जाएगा क्योंकि उनके अंदर एक उम्मीद रहेगी कि हम खेलेंगे तो कुछ पैसा बना सकते हैं।
1: आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि एशियन गेम्स अब सिर्फ 1.5 महीना दूर है, जहां पर चीन, जापान, साउथ कोरिया, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं वहां के बड़े बड़े नाम होंगे, और इन बड़े बड़े नामों के साथ भारतीय एथलीट्स का मुकाबला होगा, तो ग्लासगो में जो हमारे एथलीट्स की परफॉर्मेंस है उन्हें देश और खेलों की संख्या के हिसाब से इस बड़े स्टेज के लिए तैयारी में कितनी मदद मिली है?
0: मदद तो बहुत मिलनी चाहिए, लेकिन आप एथलेटिक्स में देखेंगे कम से कम 30 मेडल आएंगे आपको एशियन गेम में, और शूटिंग जब वापस आ गया है और हमारे कुछ पहलवान मेडल लाएंगे तो मुझे लगता है फिर एक बार हम 100 मेडल के आसपास आएंगे, 100 भी पार करेंगे, पिछले बार 100 पार कर गए थे हैंगजो में, और जापान में जब जाएंगे मुझे लगता है कि 100 मेडल के आसपास हम उम्मीद कर सकते हैं भारतीय टीम से। तैयारियां सही रही है, कुछ अच्छे एथलीट्स विदेश में ट्रेन कर रहे हैं, कुछ को अपने ही घर में अच्छी शिक्षा मिल रही है, ओवरऑल पॉजिटिव है, और मुझे लगता है एशियन गेम्स में भी बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और 2 महीने बाद हम शायद सेलिब्रेट करेंगे कि एशियन गेम में अच्छा प्रदर्शन रहा।
1: जी राजारमन, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ इस विषय पर अपनी जानकारी साझा की, अपने विचार साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
2: अभी आप सुन रहे थे कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन और बढ़ती वैश्विक पहचान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजारमन। कार्यक्रम संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में

आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं साजन का घर फिल्म का गीत, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में, समीर के बोल हैं और नदीम श्रवण का संगीत।

सुनिधि चौहान की आवाज़ में आप सुन रहे थे परिणीता फिल्म का गीत, स्वानंद किरकिरे के बोल थे और शांतु मोहिश्त्रा का संगीत। और इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को मौका दिया
4: जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो

0: हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
1: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
2: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
1: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
4: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
5: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी

0: छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
2: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
2: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
3: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha passes bill to increase the strength of Supreme Court judges from 33 to 37. Rajya Sabha clears legislation to simplify dispute resolution and address payment delays faced by MSMEs. In assembly by-polls, Jan Suraj leader Prashant Kishore wins Bankipur seat in Bihar, BJP retains Manjalpur in Gujarat, Congress keeps Datia in Madhya Pradesh. Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar expands cabinet, inducting 19 new ministers. Red alert issued for very heavy rainfall in Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In POJK, situation worsens overnight as security forces open fire on protesters refusing to disperse. Young cyclist Harshita Jhakar becomes first Indian woman to feature at Tour de France Fama in Switzerland. And now the news in detail. The Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times today amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla expressed concern over the deliberate disruptions by some opposition members. Minister of Statistics and Programme Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. The Rajya Sabha today passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill amid ruckus. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. It aims to address payment delays and simplify dispute resolution. Our correspondent has more details.
5: Both the Houses of Parliament once again faced disruptions following opposition uproar over several issues, including alleged police action during a student's protest over the NEET issue. Lok Sabha was adjourned thrice, while the Rajya Sabha was adjourned twice. Due to the ruckus, question hour in both the Houses could not be taken up. However, amidst uproar, the Lok Sabha passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Chief Justice of India. The Raj Sabha passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026. It will amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 to address payment delays and simplify dispute resolution. Besides, the Indian Statistical Institute Bill 2026 and the Bank

0: 011-237-171-17, 011-237-171-06. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 928-909-4044. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha passes bill to increase the strength of Supreme Court judges from 33 to 37. Rajya Sabha clears legislation to simplify dispute resolution and address payment delays faced by MSMEs. In assembly by-polls, Jan Suraj leader Prashant Kishore wins Bankipur seat in Bihar. BJP retains Manjalpur in Vadodara, Gujarat. Congress keeps Dathia in Madhya Pradesh. Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar expands cabinet, inducting 19 new ministers. Red alert issued for very heavy rainfall in Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In POJK, situation worsens overnight as security forces open fire on protesters refusing to disperse. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, यह आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फुरकान खान। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने के बिल को मंजूरी दे दी है। बहुत छोटी और दरमियाना दर्जे की सदनों की तरक्की के तरमीमी बिल को लोकसभा ने पास कर दिया है। असेंबली इंतखाबात में जन सुराज के लीडर प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने गुजरात के वडोदरा की मुंजलपुर सीट पर अपनी जीत बरकरार रखी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दातिया सीट पर फिर जीत हासिल की। कर्नाटक के वजीर डी के शिवकुमार ने उन वजरा शामिल करके काबीना में तौसी की है। आसाम में कल तक बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पीओजेके में रात में सूरत हाल बदतर हो गई क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की जिन्होंने तितर बितर होने से इनकार कर दिया था। नौजवान साइक्लिस्ट हर्षिता झाकर स्विट्जरलैंड में टू डी फ्रांस फेम्स का हिस्सा बनकर पहली भारतीय खातून बन गई हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने आज सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट में जजों की मौजूदा तादाद 33 बढ़ाकर 37 करना है। इन 37 जजों में भारत के चीफ जस्टिस शामिल नहीं हैं। इस साल मई महीने में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस बारे में ऑर्डिनेंस जारी किया था। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेशी क्यादत में रिफॉर्म यानी इस्लाह, परफॉर्म यानी कारकर्दगी और ट्रांसफॉर्म यानी बदलाव का मंत्र मौसर तरीके से नाफिज किया जा रहा है। जनाब मेघवाल ने कहा कि अदालती शोबे में जारी इस्लाही अमल में ये बिल अहम कदम है।
2: आज संसदीय विधेयक भी न्याय क्षेत्र उसी सुधार संस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या, न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से अमेंडमेंट बिल में सहित अन्य न्याय संख्या 34 बढ़ाकर 38 किए जाने प्रदान किया गया।
1: इससे पहले अपोजिशन पार्टियों की जानिब से मुख्तलिफ मामलों पर एहतजाज के दौरान लोकसभा की कार्रवाई कई मरतबा मुलतवी की गई। लोकसभा की कार्रवाई जब सुबह 11 बजे शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने ग्लासगो में 23वें दौलत मुश्तरक खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। इसके बाद बिरला ने सवाल चलाने की कोशिश की, तहम अपोजिशन अरकान ने तलबा के एहतजाज के दौरान की गई मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया। जनाब बिरला ने अपोजिशन को अराकन की जानिब से जानबूझ कर रखना अंदाजी करने पर तशवीश का इजहार किया। पेश रिपोर्ट।
3: पार्लियामेंट के दोनों एवानों की कार्रवाई में अपोजिशन की जानिब से न्यू मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर हंगामा आरई की वजह से आज एक बार फिर पड़ा। लोकसभा को 3 मरतबा जबकि राज्यसभा को 2 मरतबा मुलतवी करना पड़ा। हंगामा आरई की वजह से दोनों एवानों में सवाल नहीं चल सका। तमाम शोरों और हंगामे के दौरान लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। न्यूज डेस्क से उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: इस दौरान शुमारियात और پروگرام نفاذ کے وزیر راؤ اندرجیت سنگھ نے بھارتی شماریاتی ادارہ

0: 2026 में किया। वहीं वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बैंकर भी खाता शवाहिद 2026 पेश किया। दूसरी जानब राज्यसभा ने हंगामा रही दौरान माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। इस बिल का मकसद माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट कानून 2006 में मजीद तरमीम करना है। वहीं इस बिल का मकसद अदायगियों में ताखीर और तनाज़ों के इजाले के तरीक़ेकार को बनाना है। जमहूरिया उज़्बेकिस्तान के उमूर खारजा के वज़ीर साइदोव बख्तियोर ओदिलोविच राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। जनाब ओदिलोविच और उनके वफ्द का राष्ट्रपति भवन में खैर मकदम करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान गहरे तारीखी, सकाफती और तहजीबी तअल्लुक़ात हैं जो कदीम तजारती रूट से वाबस्ता हैं। उन्होंने उजागर किया कि फन तामीर, जुबान, रवायती पकवान, मौसीकी और मजहबी रवायात में मुश्तरक सकाफत ने बाहमी शराकतदारी को मजीद इस्तेहकाम बख्शा है। जमहूरिया ने यह उजागर करते हुए इस बारे में मुस्तद किया कि उज़्बेकिस्तान के 3,000 से ज्यादा हुक्काम, पेशावर अफराद और तालिब इल्मों ने भारत के तकनीकी और इकतसादी तआवुन ITEC प्रोग्राम के तरबियती कोर्सेज और दीगर स्कॉलरशिप प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल किया है। सदर मुर्मू ने मजीद कहा कि 16,000 से ज्यादा भारतीय तालिब इल्म उज़्बेकिस्तान में आला तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि ये तालिब इल्म दोनों मुल्कों के दरमियान एक पुल के तौर पर काम करते हैं और बाहमी मफाहमत और मजबूत आवाम से आवाम के रबतों को बेहतर करते हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज उजागर किया कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में पिछले बरसों में तरक्की हुई है और आज बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शोबों में मुतनव्वो हैसियत रखते हैं। इनमें तामीर, तवानाई, सेहत और तालीम के शोबे शामिल हैं। दिल्ली में उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियोर साइदोव के साथ मीटिंग के दौरान अपने इफ्तिताही कलमात में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन $1 अरब की बाहमी तजारत है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क बैन अल-अक़वामी और इलाकाई मामलों पर, खासतौर पर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मुनशियात की नाजायज तजारत के ज़िम्न में एक जैसे नजरियात रखते हैं। असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी ने गुजरात के वडोदरा में मंजलपुर नशिस्त पर अपनी जीत बरकरार रखी है। यहाँ उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के उम्मीदवार भीखा भाई राबड़ी को 30,000 से ज्यादा वोटों की औसत से शिकस्त दी। ये सीट सीनियर बीजेपी एमएलए और गुजरात के सबक वजीर अखिलेश पटेल के इंतकाल के बाद खाली हो गई थी, जहां इंतबात जरूरी हो गया था। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वोटों की गिनती के तमाम दौर मुकम्मल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने, जो सतीश पटेल के नाम से भी मारूफ हैं, 55,481 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 24,851 वोट मिले। इस सीट के लिए मैदान में सिर्फ उम्मीदवार ही थे, जिसे बीजेपी का मजबूत गढ़ समझा जाता है। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साबिक काउंसलर सतीश पटेल ने कहा कि अब हमने एक बार फिर बीजेपी में अपना भरोसा जाहिर किया है। जुमे को 260 पोलिंग स्टेशन पर तकरीबन 37.5% वोट डाले गए थे। बीजेपी कानून साज असेंबली योगेश पटेल के इंतकाल के बाद इंतखाब जरूरी हो गया था। आकाशवाणी न्यूज अहमदाबाद से अपना खुद रिपोर्ट के साथ मैं तौहीद हक्कानी।
0: जन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने बिहार के बांकीपुर असेंबली हलके में जीत हासिल की है। ये सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है, जहां 1995 के बाद से बीजेपी को शिकस्त का सामना नहीं हुआ था। किशोर ने अपने करीब तरीन बीजेपी के हरीफ नीरज कुमार को 19,000 से ज्यादा वोटों के औसत से दी। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन के राज्यसभा में उनके इंतखाब के बाद यह सीट खाली गई थी, जहां जिमनी इंतखाबात जरूरी हो गया था। पेश है एक रिपोर्ट।
2: प्रशांत किशोर ने वोटों की गिनती के पहले ही दौर से बकत बरकरार रखी, जो तमाम 31 राउंड तक जारी रही। उन्हें मजमूई तौर पर डाले गए वोटों में से 49.23% वोट हासिल किए। बीजेपी के नीरज कुमार 34.40% वोट हासिल करके दूसरे मकाम पर रहे, जबकि आरजेडी की रेखा कुमारी को 10.45% वोट मिले। इस सीट से बीजेपी के सबक नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद जिम्मे इंतखाब हुआ है। बीजेपी को 35 की में पहली मरतबा हार का सामना करना पड़ा। जिमनी इंतखाब में मजमूई तौर पर 34.31% वोट डाले गए थे, जो साल 2010 में इस हलके के बनने के बाद से सबसे कम औसत रहा। निधि श्री की रिपोर्ट।

0: से आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने आधी रात में एहतजाजियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया, जिसमें रावलकोट में गोली चलने की खबर दी गई है। नौ उम्र भारतीय साइकिलिस्ट हर्षिता झाकड़ ने स्विट्जरलैंड के टूर डी फ्रांस फेम्स का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय खातून बनकर तारीख रकम की। 19 साल हर्षिता ने कल दूसरे मरहले के रस्मी आगाज के दौरान सब आजमा रेस में अफगानिस्तान, नाइजीरिया, चिली, इथियोपिया के दो साइकिलिस्ट, नामीबिया और युगांडा के खिलाड़ियों समेत 8 होनहार खिलाड़ियों में जगह बनाई। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दे दी है। बहुत छोटी छोटी और दरमियाना दर्जे की सनत तरक्की के तरमीमी बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया है। असेंबली जिले इंतखाबात में जनसराज के लीडर किशोर ने बिहार पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने गुजरात में वडोदरा की मंजिलपुर सीट पर अपनी जीत बरकरार रखती है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दातिया सीट पर जीत हासिल की। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। पवन जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मुकेश, बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम पर आकर।
0: जी दोस्तों, आज फोन हर हाथ में है। UPI, ऑनलाइन शॉपिंग, सरकारी योजनाएं, सब डिजिटल हो गया है। सुविधा के साथ खतरा भी बढ़ गया है। फर्जी कॉल, नकली लिंक, OTP का झांसा, डीप फेक वीडियो, ठग नए नए तरीके अपनाकर हर दिन ला रहे हैं। लेकिन डरिए मत, जागरूक रहिए। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे साइबर फ्रॉड कैसे होता है, उससे बचें कैसे, और धोखा हो जाए तो सहायता कहाँ मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे आज भारत में सबसे आम तीन तरह की साइबर धोखाधड़ी कौन सी हैं? डिजिटल अरेस्ट, OTP फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट स्कैम, इनमें नया ट्रेंड क्या है?
1: आज जो नया ट्रेंड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तड़का लगा कर आता है।
0: जी
1: आजकल आप जो भी कार्यक्रम या जो भी आप ये साइबर फेंसेस देख रहे हैं
0: जी,
1: उन सब में कहीं ना कहीं मिश्रण हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उदाहरण के तौर पर आजकल डिजिटल अरेस्ट जो होता है, उसमें भी जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो डिजिटल अरेस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। जिस व्यक्ति को आप ऑनलाइन वीडियो पर देखते हैं वो रियल नहीं होता, वो AI द्वारा जनरेटेड होता है। जो आवाज़ होती है वो AI द्वारा जनरेटेड होती है। अल्टीमेट उद्देश्य बहुत क्लियर है कि आपने लोगों को ठगना है, और अब जो ठगाई करनी है वो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तरीके से करनी है कि अगर पुलिस तफ्तीश भी करना चाहेगी
0: तो
1: आप तक पहुंच नहीं पाएगी, और साइबर क्राइम मजे से अपना साइबर क्राइम भी करेगा, पैसे भी उड़ाएगा और तमाशा देखेगा। तो ये आजकल नया ट्रेंड नजर आ रहा है। इसी की रेप्लिकेशन मुझे और प्रकार के जो फ्रॉड्स हैं उसमें नजर आती है।
0: जी बिल्कुल। तो एक आम आदमी को कैसे पता चले कि उसके साथ साइबर फ्रॉड होने वाला है, उसके लिए तीन रेड फ्लैग क्या हो सकते हैं?
1: तीन रेड फ्लैग। पहला, अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी निर्णय लेने के लिए विवश कर रहा है तो ये पहला इंडिकेशन है कि साहब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दूसरा, अगर कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सेकंड रेड फ्लैग है।

0: अधिकांश लोग, चाहे आप बहुत प्रशिक्षित हो, चाहे आप पढ़े लिखे ना भी हो, लेकिन आप डिजिटल रिस्क के और अन्य और प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड्स के शिकार होते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से, महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से।
2: आमंत्रित विशेषज्ञ आदरणीय, नमस्कार।
0: नमस्कार
2: महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई फ्रॉड हम पर कॉल करता है कि आपकी ओटीपी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो इनकी शिकायत कहाँ दर्ज की जाए, इनका नंबर क्या है?
0: देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। आजकल कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से आपको टारगेट करने का प्रयास करता है। तो द मोमेंट आपको लगे कि आप साइबर क्राइम के शिकार होने वाले हैं या कोई आपको शिकार बनाने वाला है, तो आपके पास दो विकल्प हैं जो केंद्रीय सरकार ने आपको दिए हैं। पहला, कुछ हो या ना हो, अपने फोन नंबर से एक नंबर घुमाइए। नंबर है 1930
1: जी,
0: 1930। ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप फोन करते हैं और फोन उठता है, तो फोन कोई नॉर्मल टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं उठाता, फोन उठाते हैं पुलिस अधिकारी। अब इन लोगों का डायरेक्ट टाई अप आपके बैंक्स के साथ है, ताकि अगर आपके यहाँ कोई फ्रॉड हुआ है, कुछ हुआ है, आप तुरंत कॉल करेंगे, ये तुरंत ही अपने फोन के नेटवर्क पर, अपने कंप्यूटर के नेटवर्क पर देख लेंगे कि साहब आपके जो बैंक का जो चैनल है उसके अंदर पैसा है या नहीं है
1: जी।
0: अगर पैसा है तो उसको ब्लॉक करेंगे, और ब्लॉक करने का मतलब है कि 2-3 हफ्ते में पैसा खुद ब खुद आपके अकाउंट में आ जाएगा
1: जी।
0: और अगर उन्हें कुछ और पता लगेगा तो आपको भी बताएंगे। लेकिन दूसरा जो आपको और बहुत इफेक्टिव रेमेडी सरकार ने दी है, वो ये है कि आप एक वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसका नाम है cybercrime.gov.in, यानी कि ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। अपने घर बैठे हुए, बिना थाने जाए हुए, आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से, और आपकी रिपोर्ट दर्ज होते ही आपको ऑनलाइन ही एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है जो गृह मंत्रालय आपको प्रदान करता है। ये नंबर आपके लिए एक परमानेंट नंबर बन जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से आप कॉन्स्टेंटली अपने केस की जो प्रगति है, प्रोग्रेस है,
1: उसके बारे में
0: आप लगातार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ हो या ना हो, ये दो चीज़ें आप याद रखिए, 1930 1930 और cybercrime.gov.in। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में मैं मानता हूं कि दो प्रकार के लोग दुनिया में हैं। एक वो जिन्हें मालूम है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं
1: जी,
0: और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। तो चाहे आप को मालूम हो या ना हो, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर मुझे अटैक हुआ है, या जब मुझे होश आया कि साहब मैं टारगेट बन गया हूँ, विक्टिम बन गया हूँ साइबर क्राइम का, तो ये दो विकल्पों को तुरंत इस्तेमाल करिए। बहुत इफेक्टिव हैं, और मोर इम्पॉर्टेंट, सरकार द्वारा नागरिकों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का एक नया अप्रोच है जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, विपिन। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछें क्या सवाल है आपका?
3: जी नमस्कार सर, मैं विपिन बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश सागर से
1: जी।
3: सर मेरा सवाल ये था कि सोशल मीडिया पे आजकल देखा जाता है बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें बहुत इजी लोन मिल सकता है, ऐसा दावा करते हैं, तो सर ये हम कैसे समझें कि फ्रॉड है जो ऐप्स हैं, या फिर इसमें सच में लोन मिल सकता है, या फिर धोखाधड़ी भी हो सकती है?
0: विपिन जी, आज एक चीज समझनी है, वो ये कि दुनिया में ना फ्री लंच नाम की चीज नहीं होती, कुछ चीज मुफ्त नहीं मिलती। दूसरी चीज ये समझनी है कि अगर आपको कुछ ऐसा मन लुभावना ऑफर ऑनलाइन आ रहा है, तो और वो बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी खतरे की घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि जो टू गुड टू बी ट्रू ऑफर होता है, वो एक्चुअली वास्तविक तौर में कहीं ना कहीं झोल लेकर आता है। तो आजकल ये जितने भी ये तुरंत लोन ऐप्स वाली कहानियाँ हैं, कोशिश करें कि इनसे आप मीलों दूर रहें तो अच्छी बात है। क्यों? अगर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें
1: जी,
0: इनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें, ये स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि साहब आपका मैं पूरा डेटा लूंगा, उस डेटा का दुरुपयोग करूंगा, आपकी निजता के अधिकार का हनन होगा, और आप चुपचाप बैठेंगे, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, उनके फाइन प्रिंट में कहा जाता है, बोलते कुछ और हैं, जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं तो वो बहुत ही तगड़े और बहुत ही मोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वीक लगाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो पर डे लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पर मंथ लगाते हैं। अब आज आपको जब FD 7% देती है, और वो अगर आपसे 3% प्रति माह या 2% प्रति वीक लेना शुरू कर दें, तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो जल्दबाजी में मत करिए। एक तो जल्दबाजी में कोई लोन लेना नहीं, दूसरा लोन लेना है तो आप अधिकृत बैंक के पास जाइए, नेशनलाइज्ड बैंक के पास जाइए, उनसे लोन लीजिए। ये ऑनलाइन लोन कहीं ना कहीं फ्रॉड के नए स्वरूप हैं, और जितनी जल्दी आप समझ लीजिए कि वो मछुआरे हैं जिन्होंने आपको जाल

0: फेंक रखा है
1: पकड़ने के लिए।
0: अगर आपको पकड़ने के लिए अगर आप केयरफुल ना हुए तो आप इस जाल में फंस जाएंगे। एक बार आप फंस गए तो फिर आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरे पास केस आया जहां पर एक क्लाइंट ने केवल 15,000 रुपए लोन लिए
1: जी,
0: क्योंकि उसको एक हफ्ते के लिए चाहिए थे। अब उन्होंने लोन तो तुरंत अप्रूव कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि जब पैसे आए तो पैसे आए कर 12,300 तो भैया
1: पहले ही काट लिया।
0: पहले उन्होंने कहा जी मैंने प्रोसेसिंग फी भी काट ली, मैंने ये भी काट ली, और फिर उन्होंने कहा कि साहब हम पर वीक जो है 3% इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि आप समझ लीजिए महीने में 12% इंटरेस्ट। तो जितना आपने लिया नहीं उससे लगातार आपका इंटरेस्ट आता रहा, और उसके बाद आप नहीं दे पाए तो गुंडों का आपको धमकी आने लग गई, आपको प्रताड़ित करना लग गया, आपकी फैमिली को टारगेट करने लग गए। तो बॉटम लाइन ये है, छोटे लालच में नहीं पड़ना। अगर किसी से पैसा मांगना है अधिकृत बैंक से मांगिए, किसी अधिकृत एजेंसी से मांगिए। ऑनलाइन तो सारे झोल हैं, सारे साइबर क्राइम के नए स्वरूप हैं। प्लीज़ अपने आप को केयरफुल रखिए।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से, रवि। रवि आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
2: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
2: और सभी विशेषज्ञों को नमस्कार, और आने वाले स्वतंत्रता दिवस तथा सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
1: जी सवाल पूछिए।
2: हाँ जी सर, मैं जानना चाहता हूँ साइबर क्राइम जब हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, और इसे आम इंसान कैसे समझे कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है।
0: मुझे लगता है ये सवाल हर आज भारतवासी के हृदय में है कि कैसे पता लगे कि साइबर क्राइम होने वाला है।
1: जी
0: मुझे लगता है कि आप समझ लीजिए कि आप डिजिटल कुरुक्षेत्र के मैदान के केंद्र बिंदु पर आकर पकड़े हो गए, और आपको चारों दिशाओं से अटैक किया जा सकता है। अटैक करने वाले कौन है? साइबर क्रिमिनल्स हैं। अलग अलग पैंतरे अपनाते हैं, अलग अलग तरीकों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कुछ करें या ना करें, अपने रोजमर्रा के जीवन में दो आदतें जरूर आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। पहली आदत शकी हो जाइए, दूसरी आदत कंजूस हो जाइए। शकी, हर प्रकार की जानकारी जो आपके सामने आ रही है, जिसको आप सुन देख रहे हैं, उस पर शक दृष्टिकोण से देखें जब तक कि आप उसकी पुष्टि स्वयं ना कर पाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप कंजूस हो जाइए अपने डेटा के संदर्भ में। आज हो क्या रहा है कि भारतवर्ष में एक नई क्रांति चल रही है, मैं से बोलता हूं भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहां पर सारे भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो इंटरनेट पर हो, सोशल मीडिया पर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो। कृपया अपने डेटा की उल्टी ना करें, अपने डेटा को किसी भी व्यक्ति के साथ अनावश्यक तरीके पर शेयर ना करें, बिकॉज ये डेटा आधार बन जाता है आपको टारगेट बनाने के लिए। फिर अब ये दो चीजें अब आपने दिमाग में रख ली, अब सवाल उठता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप साइबर क्राइम के शिकार हुए। अगर कोई ना कोई बंदा आपको ऑनलाइन मिलता है और वो पैसे की दिशा में आपको लेके जाता है कि आपने पैसे देने हैं, या आपको डराता है, धमकाता है, और या कहता है कि साहब आपकी नग्न तस्वीरें हम भेज देंगे, आपकी प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे, जहां जहां जो जो व्यक्ति आपको डराता है, धमकाता है, आपको पैनिक के मोड पे लाता है, वो तमाम सारे इंडिकेशंस होते हैं कि साहब ये साइबर क्राइम फ्रॉड में आप फंसने वाले हैं। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग होने की जरूरत नहीं है, आज वो यकीन वाला जमाना चला गया है,
1: हो चुका है
0: ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन पता ही नहीं कि आप राम श्याम जदू से बात कर रहे हैं या किसी और व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जागरूकता और सावधानी एकमात्र आपके मूल मंत्र हैं, आपकी सुरक्षा कवच हैं, जो आपको बचाते हैं इस तरह के साइबर क्राइम के शिकार होने से।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से, अमित उपाध्याय। अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
3: जी नमस्कार विशेषज्ञ जो भी हमारा टीम है। मैं ये सवाल है अभी कि अभी हाल ही फिलहाल में सरकार इजी जो पीएफ का जो पैसा है उसको इजी लूप में उसको सर्कुलेट करके बना दिया था, निकालने का प्रावधान कर दिया है। इसमें तो अभी मामला आया था कि ओटीपी के माध्यम से कुछ पैसा का हेर फेर उसमें भी हो जा रहा है, जिसको लेकर हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि मान के चलिए वो जमा पूंजी जिंदगी भर का रहता है, हम लोग को पीएफ कटता है और वो पैसा इनसिक्योर हो जाए, तो उसको लेकर थोड़ा सा।
0: देखिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्योंकि देखिए पीएफ के साथ कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई, आपकी मेहनत और उस मेहनत का पसीना जुड़ा हुआ है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पीएफ कट रहे हैं तो ऑफिशियल सोर्सेज या ऑफिशियल कंपनी या ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही देखें। आजकल ना गवर्नमेंट ने पीएफ की विभिन्न वेबसाइट्स दे रखी हैं, तो अच्छी बात रहती है कि ऑलवेज इन गवर्नमेंटल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए कि आपकी पीएफ की कंट्रीब्यूशन जमा हुई हैं नहीं हुई हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर ने नहीं जमा कराई हैं तो उन्हें निवेदन करिए कि जमा कराएं। आपकी कितना टोटल अमाउंट तो आया है, कितना आगे बढ़ने वाला है, थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। देखिए अगर आप सो जाएंगे तो बिल्ली तो

0: आपके सिराने पे जो दूध है आके पी जाएगी,
1: पी जाएगी जी।
0: तो इसलिए आपको तो सतर्क रहना ही पड़ेगा। अगर ना सतर्क रहे तब संभावित तौर पर साइबर क्रिमिनल्स इसको हड़प सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ये मैं केसेस देख रहा हूँ कि लोग अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, छुपा देते हैं, दूसरे व्यक्ति की आइडेंटिटी को इम्पर्सोनेट कर लेते हैं और उसके माध्यम से ऑफिशियल अकाउंट से पैसा निकालने की प्रयास भी करते हैं। तो कुछ हो या ना हो, अपने पीएफ डिपार्टमेंट में लिख के दे दीजिए कि साहब मेरे अकाउंट से कोई पैसा ना निकाला जाए जब तक कि मेरे हस्ताक्षर ना हो और तब तक मैं हाजिर ना हूँ। इसके अलावा सावधानी, सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मूलमंत्र रहेगा।
1: बिल्कुल। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। तो पवन जी, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, संजय। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए, क्या सवाल है आपका हमारे विशेषज्ञ से?
2: नमस्कार मुकेश सर, एक्सपर्ट सर, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार
1: जी। नमस्कार जी।
2: और सर, मेरा सवाल ये है कि हम क्यों हमेशा डायरेक्ट बातें ही समझने की कोशिश करते हैं, इनडायरेक्ट बातें नहीं समझते, जबकि डायरेक्ट खतरे बहुत कम ही होते हैं इनडायरेक्ट की अपेक्षा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम छोटे मोटे जब ऐसी घटनाएं होती हैं, हम राजनयिक संबंध तोड़ने लगते हैं दूसरे देशों से या और भी व्यापारिक वो गतिविधियां करने लग जाते हैं, है ना, रोक टोक की। तो ये साइबर अपराध तो हर देश की समस्या बनती जा रही, केवल भारत की या एक देश की तो है नहीं, क्यों नहीं सभी देश मिल करके इसके लिए कड़ाई से जो है नियम कायदे बनाते हैं और इसके लिए बड़े दंडात्मक व्यवस्था करते हैं ताकि किसी भी देश में कोई भी हो, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए हर साल नुकसान होते, कितने मौतें हो रही है इसकी वजह से, क्या कर रहे हैं ये लोग ये अपराधी, तो इसके लिए क्या कोई किसी युद्ध से कम है क्या ये?
0: देखिए, बहुत ही महीन और महत्वपूर्ण सवाल है आपका। आज देखिए, इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है। तो आप एक राष्ट्र में बैठे हुए इंटरनेट के माध्यम से किसी और राष्ट्र में विद्यमान नागरिकों को टारगेट कर सकते हैं, साइबर फ्रॉड का शिकार बना सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय कानून एक तौर पर अपने आप ही सफिशिएंट नहीं होते इस प्रकार के साइबर फ्रॉड्स को डील करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपको सूझबूझ और कोऑपरेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में भी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून आज साइबर लॉ का नहीं है जो मौजूद है। 2015 में जब मैं संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहा था, तब मैंने प्रस्ताव दिया था कि आज आवश्यकता है दुनिया को एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की ऑन साइबर लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी। लेकिन वो सन था 2015 और शायद वो समय से बहुत एडवांस वाला आइडिया आया था, तो राष्ट्र उसको बाइट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब देखिए, ठीक उसी दिशा में अब संयुक्त राष्ट्र ने अब एक नई संधि को ओपन किया है। इट्स कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस आईसीटी कन्वेंशन टू प्रिवेंट द मिसयूज फॉर क्रिमिनल और इलीगल पर्पसेस। अब एक नई प्रकार की संधि आ गई है, उसके लिए हस्ताक्षर के लिए, रेटिफिकेशन के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। बाय द टाइम कंट्रीज उसको अडॉप्ट करेंगी, थोड़ा समय लग जाएगा, बट शायद ये दुनिया की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी हो जाएगी जो एक साइबर लॉ इंटरनेशनल लॉ का काम कर सके। इससे पहले केवल बुदापेस्ट कन्वेंशन रही थी 2001 में, लेकिन वो केवल एक स्थानीय ट्रीटी थी और यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी थी, बहुत से राष्ट्र इसका हिस्सा नहीं थे, भारत भी उसका हिस्सा नहीं था। तो आवश्यकता तो ये है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आजकल राष्ट्र और उनकी सरकारें इतनी ज़रा संकीर्णता से देश सोचती हैं कि उन्हें ब्रॉडर पिक्चर अक्सर नजर नहीं आता। हर सरकार कहती है, हर राष्ट्र कहता है कि भैया मुझे आज की अपनी वर्तमान स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को देखना है, मुझे ग्लोबल कोऑपरेशन को नहीं देखना। यही कारणवश है कि हम अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून इस पर बनाकर नहीं लेकर आ पाए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है और समय की तुलना में और ज्यादा आवश्यकता हो गई है इस प्रकार के कानून को लाने की,
1: और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह का कानून बन जाएगा
0: जी।
1: और श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से, विजय कुमार। विजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: मुकेश कुमार जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार जी, पूछिए क्या सवाल है?
3: नमस्कार
1: जी।
0: जी नमस्कार,
3: मैं विजय कुमार स्वामी गांव बस्तवा तहसील जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
1: जी
3: जी सर, मैं ब्लाइंड हूँ 100%।
1: जी,
3: मेरा बटन का फोन है।
1: वेरी गुड।
3: और ये बटन के फोन में धोखाधड़ी हो सकती है, ये सवाल मेरा है।
0: देखिए धोखाधड़ी तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ नहीं हो सकती।
1: बिल्कुल,
0: तो धोखाधड़ी तो हर जगह हो सकती है, लेकिन आपका बटन वाला फोन है तो संभावित तौर पर स्मार्टफोन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वो वही काम कर रहा है जिसको जिसका उद्देश्य बनाया गया है इसको काम करने के लिए। तो आप सुरक्षित तो हैं, लेकिन कोशिश करें अपना फोन किसी के हाथ में ना दें, क्योंकि अगर वो उसका दुरुपयोग कर पाएगा

0: तो हो सकता है आप फ्रॉड के शिकार हो पाए। बॉटम लाइन आज ये है कि हमें जो कुछ करना है खुद करना है, अपना हाथ जगन्नाथ, किसी पर विश्वास, किसी पर आश्रित रहना नहीं है। और ये स्मार्टफोन्स तो इसलिए आजकल सरदर्दी का सबब बन गए हैं क्योंकि स्मार्टफोन्स केवल आपसे फ़ोन नहीं करते, कैमरे नहीं हैं, ये ना सिटिंग टाइम बॉम्ब्स हैं, लगातार हमारी हर प्रकार की जानकारी को सुनते रहते हैं और फिर डेटा आपकी इजाज़त के बगैर आपके सिस्टम से बाहर निकाल के बाहर भेजते हैं, बेचते हैं। और फिर यही कारण वर्षे, देखिए मैं आज स्टूडियो में बैठ के मुकेश जी से बात कर रहा हूँ, उन्हें कह रहा हूँ कल सुबह मुझे बॉम्बे जाना है, मेरा फ़ोन सुन रहा है, अगले 5 मिनट बाद मेरे फ़ोन पर ये एडवर्टीजमेंट आनी शुरू हो जाएगी कि साहब बॉम्बे की चीप फ्लाइट्स ले लीजिए या ये यहाँ पर चीप होटल मिल जाएंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बातें हमारी कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं। तो अब जब आप बटन वाला फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तब वो फीचर फ़ोन होता है। फीचर फ़ोन आज की तारीख में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि वो केवल फोन का काम करता है, कोई और नहीं करता। फिर भी जागरूकता सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मंत्र रहता है।
1: पवन जी, अगर पैसे चले गए हैं तो सबसे पहले 3 काम क्या करने होते हैं? 1930 पे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करते हैं, cybercrime.gov.in पर हम दर्ज कराते हैं, और बैंक को कब कॉल करें?
0: देखिए, जब सबसे पहले जब आपको पता लगे कि आपके पैसे गए
1: जी,
0: तो पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है, हताश नहीं होना, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आपका कर्म प्रधान जीवन है, तो इस संदर्भ में आपको तुरंत सबसे पहले 1930 कॉल करना है। कॉल करना इसलिए है क्योंकि द मोमेंट आपके पैसे गए हैं, आपके पैसे अभी भी शायद बैंकिंग चैनल में होंगे, तो अगर आपने उन्हें कॉल कर दिया और फोन उन्होंने उठा लिया और उन्होंने देखा कि उनके सिस्टम में नजर आ रहा है कि आपके पैसे बैंकिंग चैनल में हैं, तो आपके बैंक के पैसों को फ्रीज कर देंगे और 2-3 हफ्ते में पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो कुछ करें या ना करें, द मोमेंट पता लगे फ्रॉड हो, पानी भी नहीं पीना है, आपने तुरंत 1930 कॉल करना है। अगर वहाँ फोन नहीं लग रहा है तो दूसरा विकल्प है, आप तुरंत cybercrime.gov.in पर जाना है। अक्सर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि चलो भैया बैंक से पैसा निकला है, बैंक जाते
1: बैंक में जाना चाहिए।
0: भाई बैंक जाते जाते आधा पौना घंटा लग जाएगा, तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी हो जाती है। आज की तारीख में ना, पहले हम कहते थे गोल्डन आवर होता है 60 मिनट, जब आपको पता लगता है कि आप क्या फ्रॉड हुआ है। अब हम कहते हैं कि गोल्डन आवर श्रिंक हो गया है 10 मिनट में। अगर आपने पहले 10 मिनट में शिकायत कर दी, एक्शन ले लिया, तो हो सकता है आपका पैसा बच जाए, क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल्स 10 मिनटों में ही आपके पैसे को आपके अकाउंट से बाहर ले जाते हैं, सलामी ट्रांजैक्शंस करते हैं और फिर म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से कैश विड्रॉल कर लेते हैं। और एक बार आपके अकाउंट से कैश विड्रॉल हो गया फिर तो फिर पैसा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: एक और श्रोता जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है।
2: जी, मैं आपका और उपस्थित विशेषज्ञ का बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ।
1: जी नमस्कार।
2: और मेरा सवाल ये है, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुजुर्ग रहते हैं और महिलाएं होती हैं, यदि किसी कारणवश उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो कहाँ पर अपना बयान दें और कहाँ पर अपनी शिकायत लेकर जाए, थोड़ा सा बताइएगा।
0: देखिए, अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, महिलाएं हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज केंद्रीय सरकार आपको कहती है कि साहब कुछ ना करिए, अपने घर बैठे अपने ही फोन से तुरंत नंबर कॉल करिए 1930। कहीं धक्के खाने की आवश्यकता नहीं, वहां आपका केस दर्ज भी हो जाएगा ऑनलाइन, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगी। ना करना चाहें और वो फोन ना उठे तो आप cybercrime.gov.in पे जा सकते हैं और वहां पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि साहब हमें कहीं ना कहीं थाने जाना है
1: जी,
0: और भाई थाने जाने में करीबन आधा पौना घंटा घंटा लग जाएगा, तब तक जितने पैसे हैं सब निकल चुके होंगे। तो थाने जाने की जल्दबाजी ना करें, अपना बयान देने की जल्दबाजी ना करें। भाई जब आग लगी है तो सबसे पहले आग को बुझाना है। आज जब पैसे गए हैं तो सबसे पहले दायित्व बनता है कि हम कैप्चर करें क्या वो बैंकिंग चैनल में है। अगर कहीं पर भी है तो उस बैंकिंग चैनल में उस पैसे को फ्रीज कराना है। एक बार फ्रीज हो जाएगा अपने वापस आ जाएगा। हाँ, एक बार आपने 1930 पर या cybercrime.gov.in पर शिकायत कर दी, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके बाद आप बैंक जाइए, लिखित में शिकायत कर दीजिए और ये जो आपने ऑनलाइन शिकायत करी है उसका रेफरेंस नंबर भी आप जरूर दे दीजिए, सो दैट बैंक को पता लग जाए कि साहब आप हवाबाजी नहीं कर रहे। अक्सर क्या करते हैं, बैंक आपको डरा देते हैं, धमका देते हैं, दौड़ा देते हैं, भाग जाओ कि तुम्हारी गलती है, तुमने गलत काम किया था। भाई आज आपका पैसा आपकी गाड़ी कमाई है, अगर वो आपके अकाउंट से आपकी इजाज़त के बगैर निकला है तो साइबर क्राइम है, 3 साल की सज़ा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, धारा 66 भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। साथ ही साथ ये बैंक जो है, ये इंटरमीडियरीज हैं, उनका दायित्व बनता है कि जब

0: मिनट आप बताएं कि साहब मेरा ये अनऑथराइज ट्रांजैक्शन गया है, तब दायित्व उनके ऊपर होता है कि वो देखें कि साहब ये ट्रांजैक्शन कैसे हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: और वो ये नहीं कह सकते कि साहब आपने यूजर आईडी पासवर्ड इस्तेमाल किया है, ओटीपी इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि वो ओटीपी का दुरुपयोग हुआ है। बहुत सारे बैंक आपको जलेबी की तरह घुमाते हैं, लेकिन आपको घूमने की आवश्यकता नहीं, वहां जाइए, बैठ जाइए कि साहब आपका दायित्व बनता है, आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप ये पैसे दिलाइए, वरना इस पैसे की आपकी जो क्लेम होता है आप बैंक से मांग सकते हैं। क्योंकि देखिए बैंक की आवश्यकता कानून में होती है कि वो ड्यू डिलीजेंस सावधानी करे जब वो अपनी ऑब्लिगेशंस या ड्यूटियों का निर्वाह कर रहा है। यह है सेक्शन 79 भारत के आईटी एक्ट के तहत। और अगर वो नहीं करता है तो कानून कहता है जिम्मेवारी पैसा वापस दिलाने की बैंक की है। तो आप हताश ना होइए अगर बैंक आपको दाएं बाएं करे, आपको बैंक को कहना है कि साहब मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है या अनावश्यक तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ये मेरी ऑनलाइन कंप्लेंट है, आप मुझे पैसा दीजिए, अगर मेरा पैसा चला गया तो मेरे पैसे की भरपाई करने की जिम्मेवारी भी आपकी है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राम जी। राम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछें क्या सवाल है।
2: जी, नमस्कार सर जी, बहुत अच्छा विशेषज्ञ लोग जानकारी दे रहे हैं। अभी कह रहे थे कि अगर आप सो गए तो बिल्ली दूध पी जाएगी, तो बहुत अच्छा लग रहा था।
1: जी जी, सवाल पूछिए।
2: जी प्रश्न कुछ इस तरह से है कि हमारा यूज करने वाला मोबाइल और सिम गुम हो गया है और उसके साथ साथ वो बैंक से जुड़ा हुआ है
0: जी,
2: तो उसमें भी ना पैसा निकल जाने की व्यवस्था हो सकती है, तो हम क्या करें क्या ना करें? अगर मोबाइल हमारा गुम गया तो कितना जल्दी हम क्या करें ना करें, यही जानकारी हम लेना चाह रहे हैं सर जी।
0: जिस वक्त पर आपको पता लगे कि आपका मोबाइल फोन गुम हुआ है या अवेलेबल नहीं है, तुरंत सबसे पहले आपने अपने मोबाइल कंपनी को कॉल करना है और उन्हें कहना है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा है, मेरा सिम को ब्लॉक करिए, क्योंकि आपकी सिम के साथ आपके बैंक अकाउंट जुड़े हैं, ट्रांजैक्शंस जुड़े हुए हैं। तो द मोमेंट आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा उसका सीधा असर ये होगा कि कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आपके साथ नहीं हो सकती। आजकल ना बहुत ये सिम स्वैप फ्रॉड्स होते हैं, आपका फ़ोन चुराते हैं, फिर आपकी नाम पर आपकी झूठी आईडी बनाकर वो डुप्लीकेट सिम ले लेते हैं। और फिर डुप्लीकेट सिम का मतलब ये होता है कि जितने सारे ओटीपीज आपके अकाउंट में जाने हैं, आपके फ़ोन पे आने हैं, वो उनके पास आने शुरू हो जाते हैं और आपका बैंक धीरे धीरे अकाउंट खाली हो जाता है। तो एक्शन तुरंत लेना है, एक बार आपने इन्फॉर्म कर दिया इस टेलीकॉम कंपनी को, उसके बाद तुरंत आप कॉल करिए 1930 पर, क्योंकि ये जो फ़ोन का चोरी करना ये भी एक दंडनीय अपराध है धारा 66 बी भारत के आईटी एक्ट में, और ऑफ कोर्स भारतीय न्याय संहिता के अंदर तो ये चोरी के अंदर आता ही है। तो आप इसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ब्लॉक करवाना ज़रूरी है और डुप्लीकेट सिम बाद में इंश्योर का ले लीजिए, इशू करा लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि जो कुछ करना है जल्दी करें।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश। राकेश जी क्या सवाल है आपका?
3: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई शिमला
1: जी।
3: और मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि दिव्यांग व्यक्ति है, अगर उनसे अगर साइबर क्राइम में अगर आप गए हैं किसी कारणवश, तो वो किस तरह से जो है बच सकते हैं?
0: देखिए अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो बचने का तो एकमात्र तरीका यह है कि आपको सावधानी जो है ना अपने रोज़मर्रा के जीवन में हिस्सा बनानी पड़ेगी। दूसरा, हम लोगों की मानसिकता ऐसे होती है कि साहब मैं अपने फ़ोन पर कुछ भी करूं, कुछ गड़बड़ होगी तो सरकार की जिम्मेवारी होगी। भाई सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन अब हमको नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं आवश्यकता होगी कि हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। बेसिकली सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ये एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन फ्रॉड्स और विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। तो दोस्तों आज हमने जाना कि डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना कितना आवश्यक है। याद रखिए तीन बातें। पहला, कोई भी ओटीपी सीवीवी पिन फोन पर मत बताइए। दूसरा, कभी भी किसी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक मत कीजिए। और तीसरा, धोखा हो जाए तो तुरंत डायल कीजिए 1930 साइबर हेल्पलाइन। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि डिजिटल नागरिक सुरक्षित नागरिक है। आज के पब्लिक स्पीक में इतना ही। हम अपने सभी श्रोताओं का जिन हमसे आज जुड़े हैं और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी का आभार व्यक्त करते हैं। पवन जी आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत सारी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और नए

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में मैं अनुराधा अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं मिलन फिल्म का गीत, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी की रचना है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं गौरीनगर इंदौर से ख्वाहिशमंद लोग, आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले, और इसी गीत को पसंद किया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज ने। तो आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये प्यारा सा नगमा।
1: Mm-hmm.

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
1: पवन करे शोर।
0: हाँ

नारायणपुर बाबा पट्टी बलियासी ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार राय हैप्पी राय दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय श्रीमती रोशनी राय प्रांजल राय और आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी शर्मा सौरभ शर्मा और शाइनी शर्मा हमारे ये सभी श्रोता सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। परदेश फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज़ में आनंद बख्शी की रचना है और संगीत से सजाया है नदीम शर्मा ने।

शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, सजदा खान रानी, हिना करा। और एक और पत्र हमारे हाथ में है, कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनू राज शिमाली। और नेपाल पैलेस सागर से हमें पत्र लिखा है तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं साजन फिल्म का गीत अलका याग्निक की आवाज़ में, समीर के बोल हैं और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

अलका याग्निक की आवाज़ में आइए सुनते हैं साजन फिल्म का गीत, समीर के बोल हैं और नदीम श्रवण का संगीत। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं औरंगाबाद से राजेश सापले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश और हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब सावे राही, महराज जहां, ज़िला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीतल धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड भानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। और एक और पत्र मेरे हाथ में है जो आया है गौतम नगर ज़िला नांदेड़ से प्रभाकर जोतले, आरती जोतले और उनके साथियों का। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

ये बोलते हैं और नदीम श्रवण का संगीत। इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में भुवनेश कोमकली का ख्याल गायन, राग है मियाँ की मल्हार।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे भुवनेश कोमकली का ख्याल गायन, राग था मियां मल्हार। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसके बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करिए।

0: लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu.